107.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के एफएम रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज दिन बुधवार है, शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026 प्रातः के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना। कार्यक्रम पुष्पांजलि।

सुमंगल सुप्रभात श्रोताओं, 100.7 मेगाहर्ट्ज पर मैं विनय आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइए प्रतिदिन की भांति दिन का शुभारंभ करते हैं भक्ति भाव से सुशोभित कार्यक्रम

पुष्पांजलि से। गजाननन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बु फल सार भक्षितम उमासुतम शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। जिनका मुख हाथी जैसा है, जो भूत गणों द्वारा सेवित है, जो कैथा और जामुन के फलों का सार खाते हैं, जो माता उमा के पुत्र हैं और जो सभी दुखों का नाश करने वाले हैं, उन विघ्नेश्वर के चरण कमलों में मेरा नमन है।

श्रोताओ, आज है विभुवन संकटी चतुर्थी। विभुवन संकटी चतुर्थी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केवल अधिक मास में ही आती है। चूंकि अधिक मास हर 3 वर्ष के अंतराल पर आता है, इसीलिए ये विशिष्ट चतुर्थी भी 3 वर्ष में सिर्फ एक बार ही आती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित है, और इस पवित्र महीने में विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा अर्चना करने से साधक को सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है।

श्रोताओं, विभुवन संकटी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना में सदा ही 21 दूर्वा चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है। इसके लिए साफ सुथरे स्थान से तोड़ी गई कोमल दूर्वा की पत्तियों को आपस में जोड़कर 11 या 21 जोड़े तैयार कर लीजिए। जब आप गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर रहे हो तो मन को पूरी तरह शांत रखें और इस चमत्कारी मंत्र का जाप करें। श्री गणेशाय नमः, दूर्वाम कुरान समर्पयानी।

सर्वज्ञे सर्वदे सर्वदुष्टे भंकरी सर्वेदुहु खरहे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। हे माँ सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाली, सभी को मनचाहा वर देने वाली और समस्त दुष्टों का भय दूर करने वाली, हे देवी माँ सभी दुखों को हरने वाली माँ लक्ष्मी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है।

जय अंबे जय अंबे मैया जय श्यामा गौरी, जय अंबे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी।

यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनार मूर्तिमोक्षीय मार्तताद। हम तीन नेत्रों वाले भगवान शिव की उपासना करते हैं जो जीवन में सुख शांति और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। वे हमें सभी दुखों और भय से मुक्त कर अमृत समान जीवन प्रदान करें। ओम नमः शिवाय।

श्रोताओं, वर्षा का परिणाम शरीर पर और उसके द्वारा व्यक्ति के मन पर होता है। जबकि ईश्वर के लिए की गई जाने वाली प्रार्थना का परिणाम हृदय के माध्यम से आत्मा पर हो जाता है। आप सुन रहे हैं पुष्पांजलि आज विनय के साथ।

श्रोताओं, सुख समृद्धि एवं शांति से परिपूर्ण जीवन के लिए सचरित्र और सदाचारी होना पहली शर्त होती है, जो उत्कृष्ट विचारों के बिना संभव ही नहीं है। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो, इन्हीं वचनों के साथ कार्यक्रम पुष्पांजलि से अनुमति दीजिए। विनय को सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिसमें अगला प्रोग्राम है सदाभार गीत।

यू आर लिसनिंग 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुबह की ताजी हवा के साथ कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और न्यूज़पेपर की सुर्खियों के साथ अतीत के आईने से लेकर देश और दुनिया की ताजा खबरें अब नहीं रहेंगी आपसे दूर, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। आज गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ आरजे आशीष।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। आइए अब आपको बताते चलें आज हमारे केंद्र से दिन भर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी। सुबह 8:30 पर सुनिएगा कुछ पुराने नगमे, प्रोग्राम होगा सुरों की पुरानी महफिल। रसबहार प्रोग्राम लेकर आएंगे सुबह 9 बजे से, और सुबह 9:45 पर विविधा के अंतर्गत सुनिएगा कुछ भक्ति गीत, कार्यक्रम होगा अर्चना। सुबह 11 बजे से हम लेकर हाजिर होंगे आपका पसंदीदा प्रोग्राम हम नवा, जिसे आज आप सुनेंगे निधि और आशीष के साथ। दिन में 3 बजे से होगा प्रोग्राम म्यूजिक आवर, और शाम 4 बजे से सुनना ना भूलिएगा प्रोग्राम आपकी पसंद। अभी आप सुन रहे थे आज हमारे केंद्र से दिन भर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

दोस्तों, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव ही होता है, और आपकी पॉजिटिविटी को डबल करने के लिए हम रोज लाते हैं मॉर्निंग मंत्रा। आज के मॉर्निंग मंत्रा में हम लाए हैं आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के विचार। जग्गी वासुदेव का कहना है कि कोई भी काम

तनावपूर्ण नहीं होता। ये आपके शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित करने में आपकी नाकामी है जो इसे तनावपूर्ण बनाती है। ध्यान या फिर योग आपके अस्तित्व की सुंदरता को महसूस करने का एक साधन है जो तनाव को कम करता है। फिलहाल अभी आपके तनाव को कम करने आ रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम का ये अगला गाना।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। दोस्तों, फिल्मकार शेखर कपूर ने सोशल मीडिया पर बहुत ही अच्छा मैसेज शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि हमारा देश भारत एआई के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए नहीं कि हमारे पास उन्नत उपकरण है, बल्कि इसलिए कि हमें आगे बढ़ने की भूख, कल्पना शक्ति और व्यापकता है। एआई मानवता की अब तक की सबसे लोकतांत्रिक टेक्नोलॉजी है। रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

दोस्तों, अतीत के आईने में नजर डालें तो आज की तारीख है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज की तारीख यानी 3 जून 1915 को ब्रिटिश सरकार ने महान कवि और साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 3 जून 1962 में एयर इंडिया ने अपना पहला बोइंग 707-320 विमान शामिल किया, जिससे ये एशिया की पूर्ण जेट विमानन कंपनी बन गई। 3 जून 1966 में देश में पहली बार एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की शुरुआत हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 जून 2018 को विश्व साइकिल दिवस की शुरुआत हुई। फिलहाल अतीत के आईने से निकलकर हम आ जाते हैं वर्तमान में, और वर्तमान में इस समय प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

0: पहला खुमार।
1: हाय, दिस इज उदित नारायण, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर, मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष। टाइम हुआ है सुबह के 7:31:42। आज है 3 जून 2026, दिन है बुधवार का, और जो लोग अभी अभी सोकर उठे हैं उनको भी गुड मॉर्निंग है जी।

गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में अब बढ़ते हैं देश और दुनिया की खबरों की तरफ। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान के लिए तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। भारत ने अफ्रीकी संघ के अनुरोध पर अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को इबोला वायरस से निपटने के लिए मेडिकल हेल्प प्रदान की। FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में अब बढ़ते हैं अपने कानपुर महानगर से जुड़ी कुछ खास खबरों की तरफ। CSJMU यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में संचालित विभिन्न स्नातक, परास्नातक और प्रोफेशनल कोर्स में दाखिले के लिए छात्र छात्राएं 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि छात्र हित में आवेदन की तिथि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और अगर आप AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो सुनहरा मौका है। प्रदेश सरकार कौशल विकास मिशन से ऑनलाइन निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही है, यानी कि आप AI की फ्री में ट्रेनिंग कर सकते हैं और 3 घंटे की ट्रेनिंग के बाद ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा। और ट्रेनिंग के लिए आपको आवेदन कहां पर करना है वो भी हम आपको बता दें। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है और वेबसाइट है www.upsdm.gov.in। और अगर आपको बिजली विभाग से संबंधित कोई शिकायत है तो कैस्को का कैंप बुधवार यानी आज और कल यानी गुरुवार को दहली सुजानपुर हेल्प डेस्क में मेगा कैंप लगेगा। टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक। यहां उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। और ट्रैफिक से जुड़ी अपडेट्स आपको बताते चलें तो रामा देवी होकर लखनऊ जाने वाले वाहन 10 दिनों तक फ्लाईओवर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। रामा देवी से फ्लाईओवर पर चढ़ने के लिए बने रैंप में जर्जर एक्सपेंशन ज्वाइंट बदलने और सड़क बनाने का काम NHAI ने मंगलवार से शुरू कर दिया है। इसके तहत 10 दिनों तक यानी 12 जून तक लखनऊ की तरफ जाने वालों को फ्लाईओवर के नीचे सर्विस लेन का इस्तेमाल करना होगा। हरजिंदर नगर जाजमऊ होते हुए वो नए गंगा पुल होकर लखनऊ उन्नाव की तरफ जा सकेंगे।

दोस्तों गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में खेल जगत से जुड़ी खबरों की बात करें तो तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है और इंग्लैंड ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। इसके साथ ही 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु कल यानी मंगलवार को इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में पहुंच गईं, लेकिन किदांबी श्रीकांत और लक्ष्य सेन बाहर हो गए हैं। FM 102.2 कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

और दोस्तों गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में अब आपको बताते चलें मौसम से जुड़ी अपडेट्स। तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं भारत मौसम विभाग के अनुसार कल का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो था 39 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर था 23.6 डिग्री सेल्सियस। और आगामी 5 दिनों में मध्यम से घने बादल छाए रहने के कारण आज यानी 3 जून से 5 जून 2026 के बीच तेज हवाओं, गरज चमक एवं ओलावृष्टि के साथ स्थानीय स्तर पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

दोस्तों घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम को अब यहीं पर वाइंड अप करना चाहिए। फिलहाल मुझे यानी अजय आशीष को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि थोड़ी देर में आप सुनेंगे देश और दुनिया की ताजा खबरें समाचारों के साथ। तो बने रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

0: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
4: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नहार, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
3: प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
3: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्चस्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है।

0: संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल, अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के

0: 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Venezuela's acting president Delcy Rodriguez to be on a five-day visit.

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। सुबह के 8:31 हो चुके हैं और हम लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल। आज सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष, और प्रोग्राम का ये पहला गाना आ रहा है शिकार फिल्म से। आवाज है आशा भोसले की, गीतकार हैं हसरत जयपुरी और ये संगीत है शंकर जयकिशन का।

और अब आपके लिए आ रहा है द ट्रेन फिल्म का गाना। आवाज है मोहम्मद रफी की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: आपके दिल की धड़कन, आपका अपना हेलो कानपुर प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं हर रविवार और सोमवार को
2: शाम 4 बजे से 5 बजे तक। सुनिएगा जरूर ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्ट बीट।
1: तो उठाइए फोन और लगाइए कॉल हर बुधवार और गुरुवार को
3: सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच।
1: आपकी आवाज़ बनेगी रेनबो कानपुर की आवाज़।
2: अपनी आवाज को हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल नोट कीजिए हमारा फोन नंबर। हमारा फोन नंबर है 0512-254-1818
1: यानी 0512-254-1818। तो हमें रहेगा
2: आपके फोन कॉल्स का इंतजार।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल और अब आ रहा है यादों की बारात फिल्म का गाना। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल। मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष।

सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम का अगला गाना आ रहा है परवरिश फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह और अमित कुमार के। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस गाने के साथ ही आज का शुरू की पुरानी महफिल प्रोग्राम अब यहीं पर समाप्त होता है। फिलहाल मैं यानी अजय आशीष आपसे मिलूंगा बस थोड़ी देर में रसबहार प्रोग्राम के साथ। बने रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

यू आर लिसनिंग 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। एक बार फिर शुरू हो गया एक नया दिन, नई उम्मीद और नए उत्साह के साथ। और एक बार फिर मैं यानी आज आशीष लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम रसबहार। दोस्तों आज है विश्व साइकिल दिवस और आज रसबहार प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं साइकिल से जुड़ी कुछ खट्टी मीठी यादें और साथ में आपको सुनवाएंगे उन फिल्मों के गाने जिनमें हमारे बॉलीवुड के कलाकार साइकिल चलाते हुए नजर आए हैं।

0: सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे?
1: अजी कह के तो देखो।
0: जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम हो,

जी हाँ दोस्तों, जरा याद कीजिए वो बचपन की साइकिलें जिसकी घंटी बजाते हुए हम पूरी गली ना पाते थे। कभी दोस्तों के साथ रेस लगती थी तो कभी साइकिल चलाते चलाते बहुत दूर निकल आते थे। साइकिल सिर्फ दो पहियों का साधन नहीं बल्कि यादों का एक खूबसूरत सफर है। और जब बात यादों की हो तो बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता है। हिंदी फिल्मों ने साइकिल को कई बार अपनी कहानियों का हिस्सा बनाया है। कभी दोस्ती की राहें साइकिल पर चली तो कभी संघर्ष और सपनों की कहानी इसी के सहारे आगे बढ़ी और कई बार प्यार की शुरुआत भी साइकिल से ही तो हुई।

1942 लव स्टोरी मूवी के इस सॉन्ग को सुनते ही हमें याद आ जाता है एक्टर अनिल कपूर का वो चेहरा जिसमें वो साइकिल चलाते हुए नजर आए हैं। लेकिन दोस्तों 90s के दौर में एक मूवी ऐसी भी आई जिसकी पूरी कहानी साइकिल कंपटीशन पर ही आधारित थी। जी हाँ दोस्तों, वो मूवी थी जो जीता वही सिकंदर। और इस मूवी में एक्टर आमिर खान ने ऐसी साइकिल चलाई जिसका जादू आज तक कायम है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
2: 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है रस बहार, और दोस्तों आज है विश्व साइकिल दिवस और रस बहार

प्रोग्राम में हम आज बात कर रहे हैं साइकिल से जुड़ी कुछ यादों की और आपको सुनवा रहे हैं कुछ वो गाने जिनमें बॉलीवुड कलाकार साइकिल चलाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, साइकिल शरीर को फिट रखने के साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी सबसे बेहतरीन साधन है और इसीलिए हमारी फिल्मों में भी कलाकार साइकिल चलाते हुए नजर आ ही जाते हैं। अब जरा याद कीजिए शान मूवी का वो सॉन्ग जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर साइकिल चलाते हुए कुछ इस तरह से कहते हैं।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: आपके दिल की धड़कन, आपका अपना हेलो कानपुर प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं हर रविवार और सोमवार को
2: शाम 4 बजे से 5 बजे तक। सुनिएगा जरूर ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्ट बीट।
1: तो उठाइए फोन और लगाइए कॉल हर बुधवार और गुरुवार को
2: सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच।
1: आपकी आवाज़ बनेगी रेनबो कानपुर की आवाज़।
2: अपनी आवाज को हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल नोट कीजिए हमारा फोन नंबर। हमारा फोन नंबर है 0512-254-1818
1: यानी 0512-254-1818। तो हमें रहेगा
2: आपके फोन कॉल्स का इंतजार।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है रस बहार। मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष और आज विश्व साइकिल दिवस पर रस बहार प्रोग्राम में बातें हो रही हैं साइकिल से जुड़ी कुछ खट्टी मीठी यादों की और आपको सुनवा रहे हैं वो गाने जिनमें हमारे बॉलीवुड कलाकार साइकिल चलाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, विश्व साइकिल दिवस पर क्यों ना कुछ पल पुरानी यादों के नाम किए जाएं, क्यों ना फिर से साइकिल की सवारी की जाए और उस बेफिक्र बचपन को एक बार फिर से महसूस किया जाए।

कहो ना प्यार है मूवी का ये सॉन्ग आप सुन रहे थे। और इस मूवी में एक्टर ऋतिक रोशन साइकिल की सवारी करते हुए नजर आए थे। और दिलचस्प बात ये है कि एक्टर ऋतिक रोशन की ये पहली फिल्म थी। दोस्तों, सिने जगत की नायिकाओं की बात करें तो बॉलीवुड की नायिकाओं ने भी बड़े पर्दे पर खूब साइकिल चलाई। धूल का फूल फिल्म में माला सिन्हा साइकिल चलाती हुई दिखाई दी, तो पड़ोसन फिल्म में सायरा बानो साइकिल चलाते हुए कुछ इस तरह से कहती हुई नजर आईं।

जी हाँ दोस्तों, पुरानी फिल्मों से लेकर आज तक साइकिल ने बड़े पर्दे पर मासूमियत, सादगी और आम आदमी के जीवन को खूबसूरती से दिखाया है। और यही वजह है कि जब भी किसी फिल्मी सीन में साइकिल दिखाई देती है तो दर्शकों के चेहरे पर अचानक ही मुस्कान आ जाती है। फिलहाल अभी आपके चेहरे पर मुस्कान लाने जा रहा है बर्फी मूवी का ये गाना, जिसमें रणवीर कपूर साइकिल चलाते हुए नजर आए हैं।

दोस्तों आज तेज रफ्तार गाड़ियां हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं, लेकिन ऊर्जा संकट के इस दौर में साइकिल का आकर्षण और जरूरत आज भी बरकरार है। इन्हीं शब्दों के साथ रसबहार प्रोग्राम से फिलहाल मैं यानी आजय आशीष इजाजत लेता हूं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि थोड़ी देर में मैं फिर हाजिर होऊंगा विविधा प्रोग्राम के साथ। बने रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। सुबह के 9:46 हो चुके हैं और विविधा के अंतर्गत हम लेकर हाजिर हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम अर्चना।

अर्चना कार्यक्रम के अंत में आ रहा है अनूप जलोटा की आवाज में ये भजन। आप इस भजन का आनंद उठाइए और मुझे यानी आशीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, सुबह के 10 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में गीडा के सेक्टर 13 में 42.50 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रदेश के दूसरे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे।

इस अवसर पर वो गीडा के विभिन्न सेक्टर्स के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 4 और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित होने जा रही है। G20 बैठकों की सफल मेजबानी के बाद एक बार फिर वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बनेगा। बैठक में देश विदेश के वरिष्ठ राजनयिक, नीति निर्माता, सांस्कृतिक विशेषज्ञ और विशिष्ट प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने मंगलवार को 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण अभियान के अंतर्गत 5 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। श्री राजभर ने कहा कि अभियान के माध्यम से श्रमिकों, असंगठित कर्मकारों और युवाओं तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता और योग को बढ़ावा दिया जाए। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल award.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो रही है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: है, आशिके जगा।
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: मैं समय हूँ और मैं हरीश विमानी हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

सभी श्रोता पंचन के राम राम राम जुहार नमस्कार सादर प्रणाम और छुटकन का बहुत प्यार प्यार बहुत स्नेह और यू मीठी मीठी धुन के साथ हमारे कार्यक्रम सुगंध

माटी की माँ, आप सभी सुनने वाले सोता पंचल का बहुत बहुत स्वागत है। और हम का बात कही कब, हमार देशवा ना किसी गुलदस्ते से कम नहीं बा। हर राज्य के अलग अलग फूल और अलग भाषा की अनोखी बात है, कुछ यू कार्यक्रम होते हैं हम करत हैं। और माटी के जादू और संस्कृति के खुले खेत खलिहान माँ, दादी नानी के आंगन माँ और त्योहारन की रौनक माँ यू लोकगीत उपजत हैं। आप सभी जाना तो आप सभी गुनगुना तो कैसे कि खेत खलियानों जब हम कोनो काम करते हैं, कोनो बदकही करते हैं, कोनो काज से आवा जावत हैं, तब यू लोकगीत बहुत साथ देते हैं हमारा। तो इन सब बातन के साथ सबसे पहले चलो आओ वंदन किया जब प्रभु के, ओके बाद बहुत नीक नीक गवनई तुम तक पहुँचाई। तो रत्ना शुक्ला कहते हैं कहूँ ना जइयो, 107.7 FM रेनबो के साथ बने रहियो, कार्यक्रम सुगंध माटी की माँ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

बहुत ही यूनिक ने गवने बजा दिया आप सभी लोगों के लिए। और यू गीत जो मधुर धुन पर आधारित है पहाड़ों की ठंडी ठंडी संस्कृति, वहां की पहाड़ी के ठंडी ठंडी बयार, ये उत्तराखंड के पहाड़ों में पनपने वाली मीठे प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य और मायके की यादों को दर्शाती है। या कह लें कि इस गीत पर आप डांस भी कर सकते हैं, पहाड़ों की जो खूबसूरती होती है उसको सोच के आप थोड़ा मटक भी सकते हैं, ठुमके भी लगा सकते हैं। अगर आप कहीं पहाड़ों पर रहते हैं तो फिर क्या कहने, बस इस गीत को एंजॉय करिए।

भाई हमका तो बहुत नीक नीक गौनई लगी यू और अति खूबसूरत वादियाँ अति खूबसूरत गीत के साथ अब आगे बढ़ते कार्यक्रम सुगंध माटी की माँ। अब आपकी हम सफर आपकी दोस्त आपकी साथी का कहे जा रही है कि अब अगले गीत की ओर बढ़त हैं तो यू गीत कुछ ऐसे है कि का बताई ठुमक ठुमक के झूम झूम के यू गा रही हैं और कह रही हैं का रेशम का रुमाल गले में डाल के दिल्ली का सुरमा लगाए के खड़ी हैं ठाड़ी हैं और ना जाने कत्ती कत्ती देर तक इंतजार कर रही हैं। तो चलो सुना जाए यू गीत का उसके बाद हम तोहरे लोगों से कछु पूछब का पूछब आप मेल करके हमको पठे सका तो वो हम अब बताएं। बस सुनते रहो कार्यक्रम सुगंध माटी की 107.7 FM रेनबो पर।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: और तनुक, देर पहले हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आज हम कोनो बात आपसे पूछा, आप मेल करके जरिए, मेल के जरिए हम बताऊ भाई, तो जब आप हमको का बताऊ वो हम पहले आपसे बताए तो दे। आप मेल करियो तो कौने बात पे मेल करियो, वही बात हम आपसे शेयर करे जा रही हैं। यू बात है कि कौनो हमका यहाँ आकाशवाणी में बताइन, आकाशवाणी में हमसे कहीं कि जाना तो भाई नहीं, आज विश्व साइकिल दिवस बाटे। हम कहीं अच्छा, तबे हम जब देखा रहा सुबेरे कि सड़क पर बहुते लोग साइकिल चला के, चाहे वो मनई रहे चाहे वो लड़के में बेटे में रहे, सब जावत रहे, तो पता नहीं का बात रहा, झुंड के झुंड निकलत रहा। तो आप लोग यू बतावा कि विश्व साइकिल दिवस का त्योहार सबसे कैसा नाता बनत है, कैसे नाता बनत है आपके साइकिल दिवस से अगर बात करी तो? कब साइकिल की सवारी करे हो, केहू के संग करे हो कि काही संग करे हो कि अकेले अकेले करे हो साइकिल की सवारी, या खुद खेत मा, पगडंडी बाजार, हाट खरीदारी, स्कूल, कहूं साइकिल चलावे का अनुभव भवा तो हके कि नाही, यू आप हमको बता सको तो fmakashwani@gmail.com पर मेल करके आप हमको बता सको तो। आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, जिनके नाम है सुगंध माटी की। नीक लागत है कि नहीं कार्यक्रम का, है कि यू कार्यक्रम की जो नाम है ना, यही में अति खुशबू आवत है भारत के विभिन्न विभिन्न जगह की, जो विभिन्न विभिन्न भाषा के, पानी के कोस कोस के बदलत है ना पानी और मोहल्ला टोला, तो अति नीक नीक कार्यक्रम का नाम है कि कैसे नहीं नीक लगे हमको, तो बहुत नाम से बहुत ज्यादा खुशी होवत है। तो चलो यू सब बात हम करब, लेकिन हम कहते हैं कि पहले आप लोगों का एक गीत सुनवाए दें। तो गीत सुनवाए खातिर का करे के चाहिए, बस आप लोगों के गीत सुनवाए के खातिर हम यू गीत बजाए दी थे।

0: आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
4: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
5: शत्रुपा से माँ जी।
6: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
5: शत्रुपा से।
7: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
5: शत्रुपा से।
8: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: करियर पर है ध्यान,
5: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
3: पॉजिटिव है फैशन,
5: क्रिएटिव है पैशन,
3: टेक्नोलॉजी में रुचि,
5: बने पर्सनालिटी ऊंची,
3: फॉलो करें ट्रेंड्स,
5: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
3: ओनली ऑन यूथ वेव,
5: यूथ की बात यूथ के साथ,
3: शाम 4 बजे 100.7 एफएम रेनबो पर,
5: धड़कन लखनऊ की।
9: आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और हम तोहरे सबसे पूछल रहे कि का आप हमको बताओ कि कबो साइकिल की सवारी करे हो, केहू के संग करे हो, या खुद खेत खलियान मा, पगडंडी मा, खरीदारी करे मा, स्कूल जाए मा, साइकिल चलावे के तोहर का अनुभव भवा, तो यू हम जानना चाह रही। तो कौन कौन हमको मेल कर दी है? देखो, सबसे पहले हमका लगा थे कि मानसी मलोडे मेल कर दी है, लेकिन यू तो लिखी है कि हमका गीत सुनवाए थे, तो गीत गम नहीं थे तुमका तो का सुनावा जाइब दोपहरिया में, ठीक है? तो मानसी जी और मेल करो, जब हम ये बात सुनत हुई हो तो इसे संबंधित मेल करो हमका। और का लिखी है, यू गीत सुनवाए खातिर लिख दी है झग्गा राम साहू जी, तो इके भी अगले कार्यक्रम में मेल पढ़ा जाई। भैया मनु सेठ कछु लिखिन है, सादर नमस्ते आपका मनु सेठ भैया, कैसे हम बहुत नीक नीक है, कार्यक्रम सुगम माटी के कार्यक्रम प्रोग्राम के बहुत इंतजार सभी का बहुत रहत है, हमने नानी जी भी प्रोग्राम जरूर सुना थे, आप सबके बतकही और अवधि भाषा के साथ गवनई बहुत नीक लागत है, गवनई तो बहुत नीक नीक हम का लागत है। और यू हम जाने के चाह रही ना साइकिल वाली बात, तो आज कहा लिखियो नानी जी का हमारा प्रणाम पठे हो कि नहीं? हमको कहे की जरूरत है, नानी अम्मा आप तनिक मुस्काए दे और स्वस्थ रहो, निक निक खायत पीवत रहो, कहे से कि स्वास्थ्य ही सब कुछ बड़ी पूंजी होते है। तो नानी के गोर लागे के साथ हम आगे आपका मेल पढ़ते हैं, अवधि भाषा के साथ गवनी बहुत नीक लगा थे, और आज आप साइकिल की बात करे हो, तब जाए रहन है आज नाना जी वाली साइकिल आज बनवाई और वही का फिर चलावे आस पास में जरूर साइकिल से जा, तो यू आप अच्छा काम करे जा रहे हो मनु से भैया, कैसे कि नाना जी साइकिल दीन रहे, अब वो नीक नीक तोहफा है नाना जी के, तो तोहफा के ऐसे संभाल के रखे हो यू बहुत अच्छी बात है, लेकिन की बात आप बनवाए जा रहे हो यू बहुत ऊपर से ऊपर अच्छी बात है, बनवाए कि आज जरूर साइकिल दिवस तुम मनाइयो, तो बहुत शुभकामनाएं, जल्दी से साइकिल बना के शाम थोड़ी ठंडी ठंडी हो जाए, दोपहरिया बीत जाए, उसके बाद साइकिल से तनिक घूम घाम आए वो है। उसके बाद का कौन लिखी है हमका क्या मेल करीन है, ये लिख दिन है मोहम्मद आसिफ जी, का लिखिन है यू लिखिन है, तेलंगाना से सुन रहा हूँ FM रेनबो लखनऊ प्रदेश में, दोस्त के साथ रहता हूँ, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, खासकर सुगंध माटी की किसको तो सुनकर मुझे अपना गांव याद आ जाता है, रत्ना शुक्ला मैम कुछ नाम है जो ले लो, साहिबा अंसारी, सादिया अंसारी, नेहा अंसारी, गुलफ शाह अप्पी और राज कटरा बारामंकी का रहने वाला हूँ, तो आप हमारा बतकही ना सुने हो, है ना मोहम्मद आसिफ जी, कैसे कि बतकही सुन के उससे संबंधित मेल करो, तो कार्यक्रम में चार चांद लगी है ना, आप सब लोगों के लिए ये कार्यक्रम सजा के लावत हैं। उसके बाद मोहम्मद आसिफ फिर एक मेल कर दी है, तो ओमस यही यही बात लिखी है, किसका का कहते सेम सेम बात लिखे, सेम सेम बात लिखी और नानी जी कबो साइकिल चलाए हो, अच्छा मोनू सर भैया लेकिन नानी कबो साइकिल चलाए हो, नानी कहीं नाती हम साइकिल से बहुत डराते हैं हम कहे हम कहीं कहे, तो कहीं हम अपने बप्पा जी के साथ बचपन में साइकिल से मिला जात रहे और हमार पैर चक्का में फंसगात रहे, तब से हम साइकिल से बहुत डरे थे, तो अच्छा चक्का में पैर फंसगवा रहा नानी के, तब भैया अगर डराते हैं तो ठीक रहे दो, बैठे दो और बूढ़ मने ही ओके खाए पीवे दो और सभी लोगों के स्वस्थ रहें और उनके साथ नीक नीक गवने के आनंद उठावे नानी जी, ऐसे ही करो ठीक है। कुलदीप गुप्ता का लिखे ने, कुलदीप गुप्ता लिखे ने कि कार्यक्रम सुन रहा हूँ बहुत पसंद आ रहा है, विश्व साइकिल दिवस की सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं, हमारे लगे तो बाइक है लेकिन जो दूर कहीं जाना होता है तो बाइक से जाता हूँ, वरना काम के लिए रोज हम साइकिल से जाते हैं, खेत जाना है या शॉप पर जाना है, खरीदारी करने जाना है, वैसे भी एक दिन में करीब 6 किलोमीटर साइकिल चला लेता हूँ। कुलदीप गुप्ता उधौली बाराबंकी से लिखिन है, यो तो हार विचार हमका बहुत नीक लगा, कहे से कि दूर जावे के है तो बाइक निकाल लेते हैं, ये क्या कहते हैं फटफटिया है ना, और फटफटिया से जल्दी पहुंच जाते हैं और चलावे में भी कम मेहनत लगाते हैं, वही के बाद अगर नजदीके जाग हो तो नजदीके जाग के बखत कुलदीप भैया कहा निकाल लेते हैं साइकिल और 6-6 किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं, ये स्वास्थ्यवर्धक भी है और ईंधन के बचत भी है, तो कुलदीप भैया यू तो हार जो बात है सबके लिए एक संदेश बन के आई गई, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मोहम्मद आसिफ जी कछु लिखे हैं, यू तो का लिखे हैं ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन हाँ पढ़े की कोशिश करते हैं, का लिखे हैं का लिख दी भैया, यू लिखे हैं कि हैदराबाद तेलंगाना से लिख रहा हूँ, माटी की सुगंध कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, साइकिल की बात करत हो तो

मैम, हम बचपन में साइकिल बहुत चलावा है और गिरे भी हैं, और पापा की साइकिल बड़ी होती थी तो हम उसको कैंची चलाते थे और गाड़ी पर नहीं बैठ पाते थे, तो बाद में पापा हमको छोटी साइकिल लेके दीं, और गांव जाते समय तो छोटे बच्चों को साइकिल चलाते देख उनकी साइकिल चलाने का मन करता था, तो हमको छोटा साइकिल मिल गई। तो यू आप अच्छी बात बताई दे मोहम्मद आसिफ जी। और जितने छोट छोट बच्चन लड़कन बच्चन आज सुनत हुई है ना ये कार्यक्रम, तो आज शाम के ऊह फेरी लगई है साइकिल, तो अपने नीक नीक छोटी छोटी साइकिल से।

कई के पास बहुत सारे मेल और दिखात हैं रोशनी रावत वकील अहमद इंद्रपाल विजयपाल जी, तो हम पढ़ब तो के सबके लगे आओ, लेकिन उनके पहले ये गाना सुन लियो तनिक।

और आप लोगों को मेल शामिल करे से पहले चलो हम तनिक बात कर ले सत्तू के खाव और पीवत रहो कैसे कि जौन मौसम चल रहा है ना बतावन रहे कि दो दिन तीन दिन और तनिक गर्मी पड़ब वो के बाद तनिक राहत मिली मौसम में बादल छाए रहे वो के बाद तनिक छुटुक पुटुक बारिश होए के संभावना है ना। तो गर्मी में सत्तू सबे के पिए के चाहिए जहाँ यहाँ अभिषेक मीठा शक्कर डालिए ला मीठा शक्कर डाल के चाहे नमक दे गर्मी के असर उसे खाए के से खत्म हो थे। सत्तू के विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने थे जैसे शरबत की बात कर लें शरबत लगे सभी को खास लोग पीवत हैं गर्मी में ठंडक लगे खाते और यही कहते अच्छा शरबत लगे सभी को खास गर्मी में ठंडक लगे यही रहे अब आस हम कई आदा गवा और यू जो सत्तू को पेय पदार्थ है वो ही पिए के चाहिए। अब जैसे सत्तू की बात करब तो सत्तू बहुत चीज के बनत है जैसे सात अनाज के बनत है जानत हो कि नहीं। अगर सात अनाज के नाम लेवे के चाहिए तो हमको जहाँ तक तनिक याद आवत है जौ चना अरहर मटर खेसरी कुलता मक्का इन सातों का सत्तू बना सकते हो आप। और चीनी नमक खांड धनिया पुदीना की पाती स्वादानुसार शरबत पी सकते हो और चाहे आप उसका घोट के खा लो जौ तुहार मर्जी हो इसे सत्तू का सेवन करते रहो तब है गर्मी के मौसम अपन बचाव कर सकते हो। यू हमारा सुझाव है और बाकी तो जैसा तुहार सुहाद कहे वही जैसा तुहार मन कहे वैसा करे हो

चलो हम सत्तू की बात कर लिया तुम सबसे, वही के बाद अब आगे बढ़ाते हैं और आगे क्या लिखा है, किसने क्या लिखा है। अभी ये तो जो आपके बीच में गीत आया ना, ये महाराष्ट्र की संस्कृति को झलकाता हुआ ये गीत था, वहाँ की मराठी भाषा में लावणी गीत था ये। और इस गीत के साथ बहुत लोगों को ठुमकने का मन कर रहा होगा, भले वो किचन में काम कर रही हूँ लेकिन वो दिन या अपनी संस्कृति या अपनी माटी की सुगंध से जब वो जुड़ती हैं तो ज़रूर उनका मन कर रहा होगा थोड़ा सा ढिंचक ढिंचक ढिंचक ढिंचक वाले थोड़ा सा डांस वांस करने का। रोशनी रावा जी की बात कही हम करे जा रहे हैं, का लिखिन है यू मेल की पाती में का लिखिन है। और जल्दी जल्दी मैं दुई मेल कर दी है। प्यारी प्यारी दीदी कैसे हैं, बहुत उम्दा प्रस्तुति, बहुत मन प्रसन्न हुई गवा, प्रोग्राम बहुत शानदार धमाकेदार लाजवाब बिंदास लागत। अरे वाह रोशनी रावत जी, का भाषा लिखे हो आप। और ग्राम व पोस्ट बमहना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से लिखी है, चंडीगढ़ से यू बखत ये कार्यक्रम सुनते हैं। और मेरी माता श्री भौजी बबीता राव नीलू शर्मा दीदी गुलपसा सिद्दीकी दीदी के सभी लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं, हम लोग फोन पे बतियाईन है और बहुत झूम कर नाच कर रहे थे हम कायसी की यू कार्यक्रम में मस्ती लेके झूमे के बिल्कुल बेरिया होते और ऐसे ही खुश रहे के चाहिए जिंदगी में। और साइकिल बचपन से ही साइकिल चलाना सीख लेहिन था हम, बहुत मजा आवत रहा बाग जाए जब करत हम और करत रहे वही के बाद साइकिल से और सबको बिठा कर ले जावत रही हम। हमारे घर में 3 साइकिल वही वक्त में थी, एक पापा की होत रही, एक हमारे भैया की रही और एक ऐसी रही जैसे हम स्कूल जावत रही और रास्ते में रेस लगावत रही। अरे दद्दा रेस में ज़्यादा, हाँ अगर भीड़ भाड़ नहीं है तो यू कभी मनमौजी के लिए कर सका तो, लेकिन रेस लगावे में कहूँ कौन नुकसान ना हो जाए, है ना, यू ध्यान रखे के चाहिए। रोशनी रावत जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेल करे खाते ना। उसके बाद कौन आ गए हैं, वकील अहमद जी आ गए का लिखे ने, नमस्ते आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, सुगंध माटी की कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, गाने अच्छे बज रहे हैं। इस समय चाचा अनीश अहमद की बाग में है, विश्व साइकिल दिवस की सभी को हम हैं बाग में और साइकिल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वकील अहमद मंसूरी कटका हतोरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी शाजी अंसारी शमा परवीन रिंकी बिंकी महक अंसारी गुलफशा सिद्दीकी जी अहमद नवाब जी, इन सब के नाम इन्होंने इसमें शामिल करे हैं तो सभी का नाम हम ले लीन हैं। वकील अहमद जी बहुत बहुत धन्यवाद मेल करे खाते, इन कार्यक्रम सुने सुनत रहो और बने रहो 100.7 यानी कि 100.7 FM रेनबो के साथ। ठीक है तो का करिए, मेल पढ़ी कि गवनी सुनवाई दी, चलो मेल शामिल कर लेते, कैसे बहुत मेल

रहें, सब बने रहें और सब मुस्कुरात रहे, हम यू चाहते हैं। इंद्रपाल मिश्रा जी का लिखिन है कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य को देता है आराम, मांसपेशियों को का सभी हो जाता है व्यायाम। अच्छा, साइकिल से बहुत फायदा होता है, कोई खर्चा नहीं लगाता है, चालान नहीं होते। यू बहुत खास बात लिखिन ने कि कोई खर्चा नहीं लगाते, चालान नहीं होते, डीजल पेट्रोल नहीं लगाते, 40 किलोमीटर तक हम साइकिल चला सकते हैं। अच्छा, साइकिल से ही आवत हैं यू इंद्रपाल मिश्रा जी। ग्राम अमृता माहौली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा जी लिखे। अच्छा, 40 किलोमीटर साइकिल चलाओ तो आप तो भाई बहुत मेहनत लागत हुई, और साइकिल से स्वस्थ रहो आप, और यू बिना कौनो खर्चा की यू सवारी चलावत रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। विजयपाल यादव जी का लिखे हैं, गोर लागत है नहीं नहीं, नमस्कार और सादर प्रणाम। विजयपाल जी, साइकिल दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, इस कार्यक्रम में बहुत इंतजार रहता है। दीदी आज भी 3 किलोमीटर साइकिल रोज चलाते हैं, और 3 किलोमीटर चलाते हैं, बहुत अच्छा। कई लोग तो साइकिल छोड़ के नहीं चाहते, लेकिन आज के दिन लोगों के फिर से एक बार मेल जोल बढ़ाए के साइकिल दिवस मनाए के और साइकिल के द्वारा सवारी करे के खातिन हम जागरूक कर रहे हैं। विजयपाल यादव लिखे ने ग्राम पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से। अरुण कुमार जी का लिख दिन है FM आकाशवाणी में का लिखे ने, अरुण कुमार कुशवाहा घमोइया से, और मॉर्निंग मंत्र बहुत प्रेरक रहा, और अवधि भाषा में ईमेल लिखाई की कोशिश कीन है, कोनो गलती हो तो माफ कर दे, कार्यक्रम बहुत नीक जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कार्यक्रम सुगंध माटी बहुत नीक लग रहा है, पुरान याद सब ताजा हुई गई। बहुत अच्छा अच्छा मेल करे हो आप अरुण कुमार जी, और अवधि भाषा जो में जौन तुम मेल भेजे हो ना, वो हमका मिल गवा है जो पठे हो आप, और बहुत नीक मेल करे हो। तो अरुण कुमार ऐसे ही बने रहो यू चैनल के साथ। गुलफसा जी लिखिन है कि नमस्ते रत्ना मैम, गुलफसा सिद्दीकी संडीला से प्रोग्राम नीक लागत है और बहुत मजा आ रहा है, और सुबह से साइकिल साइकिल हो रहा है, मुझे भी साइकिल चलाने का मन कर रहा है, लेकिन हम साइकिल तो नहीं चलाते हैं, लेकिन जो उसमें घंटी लगी होती ना वो बहुत बजती थी, जिसकी साइकिल में भी घंटी लगी होती थी मैं तुरंत बजाने लगती थी, मुझे बहुत मजा आता था। अच्छा, वही एक बात करा था जो बोला थे ट्रिन ट्रिन ट्रिन ट्रिन, ऐसा कछु बहुत याद आवा है का तुमका बचपन की याद, तो चलो नहीं चला पावे तो का हुआ, साइकिल चलाए से थोड़ी ना साइकिल दिवस मनावा जाता है, साइकिल दिवस के बारे में जागरूक कर रहे हैं, साइकिल बहुत नीक हो तो स्वास्थ्य के लिए ईंधन बचावे खातिर, तो यू सब बात करके सभी श्रोता पंचन से हम बत कही कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं, तो उसके बाद अब हमका साइकिल से बहुत से काम हो जाते हैं जान, तो जो बहुत से काम होते उनमें एक यू काम भी होते, कैसे ई गवनई में सुना हूँ।

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
2: शत्रुपा से माँ जी।
3: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है।

0: कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
1: शत्रुपा से।
2: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
1: शत्रुपा से।
3: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की। कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की खामोशी।

0: गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। सुबह के 11 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम हम नवा, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ आरजे आशीष और मेरे साथ मेरी हम नवा है निधि। निधि, वैसे आपका हम नवा प्रोग्राम में बहुत दिनों बाद आना हुआ और अभी आप बाहर से आ रही, मैं तो सुबह से स्टूडियो में, तो क्या बाहर के हाल चाल है, मौसम का क्या हाल है, कुछ बताएंगी जरा?
1: बिल्कुल आशीष जी, सबसे पहली बात तो मैं बहुत बहुत नमस्कार करूंगी और गुड मॉर्निंग बोलूंगी अपने सारे ही लिसनर्स का, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि वो आज फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिन के 11 बजे। और जैसा आपने बोला कि स्वागत है, तो स्वागत आपका भी है और ये बात सही है कि काफ़ी दिनों बाद आज हम नवा में मेरी आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन अच्छी बात है।

0: बट आज के जैसे आपने दिन की बात करी है तो आज का दिन थोड़ा सा ह्यूमिड है और उमस भरा है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है. और अगर आप रोड्स का हाल देखेंगे तो डेफिनेटली जिस समय मैं आ रही थी तो ऑफिस टाइम होता है, तो नेचुरल सी बात है बहुत भीड़ भाड़ भी थी और रोड्स कई जगह थोड़ी खुदी हुई हैं, तो उस वजह से भी थोड़ी परेशानी थी. लेकिन हाँ, आज मैं एक चीज़ और भी नोटिस कर रही थी कि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ियों से जा रहे होते हैं और मोटरसाइकिल से जा रहे होते हैं, तो थोड़े बहुत लोग मुझे साइकिल वाले भी दिख रहे थे और कुछ लोगों की थोड़ी सी एक कहा सुनी सी हो गई थी रास्ते में साइकिल वाले को लेकर के. लेकिन उस टॉपिक पे हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट ओवरऑल बहुत अच्छा लगा आज वापस यहाँ आकर के. हम नवा प्रोग्राम थोड़े दिन हो गए मुझे करे हुए, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है मुझे हमेशा की तरह. बहुत
1: जी हाँ, बातें बहुत सारी अभी आगे होती ही रहेंगी. फिलहाल हम अभी शेयर कर लेते हैं वो टॉपिक्स जो आज हमनवा प्रोग्राम में हम अपने श्रोताओं के साथ चर्चा करेंगे, शेयर करेंगे. तो आज जी हाँ, जैसा आपने बताया साइकिल से जुड़ी बात आपने करी, आज है वर्ल्ड बाइसिकल डे, तो विश्व साइकिल दिवस पर हम लोग चर्चा करेंगे साथ ही साथ.
0: हाँ, और आकाशवाणी के आप सभी जानते हैं कि 90 सालों का जश्न हम मना रहे हैं, तो आज इसके अंतर्गत बात होगी आपदा प्रबंधन में रेडियो की भूमिका के बारे में.
1: और गर्मी की जो छुट्टियां जो है स्टार्ट हो गई हैं, तो गर्मी की छुट्टियों में पर्यटन और सैर सपाटा किस तरह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस पर भी हम लोग बहुत सारी चर्चा करेंगे.
0: हाँ, यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग आज के टॉपिक्स हैं. साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय छुट्टियां चल रही हैं और बहुत सारे बच्चे भी घर पर हैं और जो लेडीज हैं वो तो यूजुअली अक्सर रहती हैं, लेकिन जो घर का काम है वो हमेशा चलता रहता है. तो उसमें आज हम ये भी बात करेंगे कि भाई घरेलू कचरे का उचित निपटारा कैसे करें, क्योंकि छुट्टियों के दिनों में घरेलू कचरा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बच्चे घर पर होते हैं तो, है ना.
1: और साथ ही ज्ञान विज्ञान सेगमेंट होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस जो साबुन है वो गंदगी कैसे साफ करता है, और सबसे आखिरी में होगी एक खट्टी मीठी रेसिपी, और वो रेसिपी क्या होगी इसको थोड़ा सा सस्पेंस में रखते हैं. फिलहाल जुड़े रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ. और एक बात जो है कहना चाहूंगा कि आज वर्ल्ड बाइसिकल डे है, तो साइकिल से जुड़ी आपकी बचपन की कोई खट्टी मीठी याद हो तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है
0: AIRKANSOMEDIA@gmail.com.
1: जी हाँ, एक बार ईमेल आईडी फिर से आप नोट कर सकते हैं AIRKANSOMEDIA@gmail.com.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: जी हाँ दोस्तों, 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, और इस समय प्रोग्राम चल रहा है हम नवा आशीष और निधि के साथ। निधि, आज है 3 जून और आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है वर्ल्ड बाइसिकल डे, और हमने अपने श्रोताओं से भी ये क्वेश्चन पूछा है। और ये कुछ भी अगर उनकी साइकिल से जुड़ी बचपन की कोई या कोई भी खट्टी मीठी याद हो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है
1: AIRKANSOMEDIA@gmail.com।
0: और निधि, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आपने साइकिल चलाई है?
1: अरे आपने क्या सवाल पूछ लिया ऐसा कौन होगा, मुझे लगता है कि शायद ही किसी ने साइकिल ना चलानी सीखी हो। मुझे

0: लगता है बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, उन्होंने भी ज़रूर ही साइकिल चलाई है और साइकिल से जुड़े हुए बड़े ही अच्छे अच्छे अनुभव, हम कहेंगे कि अगर चोट भी लगी है ना तो वो भी एक बड़ा ही अच्छा सा अनुभव,
1: यादगार अनुभव साइकिल का हो जाता है। और साइकिल दुनिया की सबसे सरल, सुलभ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधनों में से एक है। ये लोगों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है और आगे भी निभा रही है। चाहे स्कूल जाना हो, काम पर जाना हो या छोटी दूरी की यात्रा करनी हो, साइकिल एक भरोसेमंद साथी के रूप में लोगों के जीवन का हिस्सा लगातार बनी रही है।
0: बिल्कुल, और भरोसेमंद के साथ साथ आज की अगर हम संदर्भ में देखें आशीष, तो बहुत ही ज्यादा ये इको फ्रेंडली है ना?
1: जी बिल्कुल,
0: कि देखिए पोल्यूशन नहीं फैलाती है और हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छी है। लेकिन आशीष, हम बताते चलें कि भाई आज का जो दिवस हम मना रहे हैं, विश्व बाईसाइकिल दिवस, वो उसकी औपचारिक जो आधिकारिक शुरुआत हुई थी वो 2018 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अप्रैल 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया था और उसमें ये बोला था कि भाई 3 जून से अब हम हर बार विश्व साइकिल दिवस मनाएंगे।
1: जी, और साइकिल का नाम सुनते ही निधि हम बचपन में खो जाते हैं कि किस तरह से हम मतलब साइकिल चलाना जब सीखते हैं तो कितनी जिज्ञासा होती है। और मैं अगर अपने अनुभव शेयर करूं तो मैंने पहले कैची साइकिल चलाना सीखा। अब ये भी बता दें, हालांकि जिन श्रोताओं ने, जिन लिसनर्स ने साइकिल चलाना सीखा होगा वो जानते होंगे कि कैची साइकिल क्या होती है। कैची साइकिल की भाई उसमें ऊपर के दोनों डंडे पकड़ के और बीच से, डंडे के बीच से आप पैर निकाल के जो है पैडल चलाते हैं। इस तरह से कैची साइकिल चलाना हम लोग सीखते हैं।
0: बिल्कुल आशीष, आपने बड़ी मीठी सी यादें हमारी ताजा कर दी। और एक्चुअली जब हम छोटे होते हैं ना और साइकिल बड़ी होती है, आजकल के बच्चों को मुझे लगता है कि शायद वो एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि आज हर साइज की साइकिलें आ गई हैं और वो कैची शायद नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरीके से चलाते हैं। तो वो बड़ी साइकिल हुआ करती थी और हमारे पैर पहुंचते नहीं थे, लेकिन हमें साइकिल चलानी है। तो एक्साइटमेंट इतना होता था कि हम फिर ऊपर तक नहीं, पहले वो साइकिल कैची कैची कैची, मतलब वो बीच में से पैर डाल के चलाते थे और फिर बाद में धीरे से उचक करके और जो डंडा होता था वहां तक आए और फिर गद्दी पर बैठते थे। और भले ही हमारे पैर ना पहुंचे लेकिन हम पैडल से खट खट खट खट मारते हुए हमें लगता था कि बस हम जैसे राजा बन गए और पूरी दुनिया की हम सैर कर लेंगे। जैसे साइकिल हमारी जो है हवा से बातें करने लगती थी और हमें इतनी कहते हैं ना विक्ट्री का अनुभव होता था कि भाई आज हमने गद्दी पे बैठ के साइकिल चलाई है। तो बड़े ही अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे और मुझे लगता है हमारे श्रोताओं के भी कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस रहेंगे। तो हम फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आपकी ऐसी कोई भी याद है तो झटपट से हमें मेल करिए। और बहुत सारे मेल मुझे लगता है कि हमें देखने पड़ेंगे कि हमारे किन किन दोस्तों ने भेजे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम काफ़ी सारी, अभी हमें और भी बात करनी है कि क्या क्या साइकिल, क्यों हमने ये दिवस क्यों मनाना शुरू किया।
1: एक बात और है निधि, मैं आपको बीच में टोकूंगा कि बचपन में जब हम नई नई साइकिल चलाना सीखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस साइकिल को चलाते हुए हम पूरी दुनिया का चक्कर काट सकते हैं। मतलब कोई भी दूरी जो होती है ना वो ज्यादा दूर नहीं लगती। और साइकिल चलाना सीखें और चोट ना लगे ऐसा बहुत ही कम होता है। मतलब लगभग 90% लोगों के साथ ये होता ही होगा कि साइकिल अगर वो चलाना सीख रहे हैं शुरुआत में तो चोट जरूर लगती है, लेकिन जैसे ही चोट लगती है तो बड़े ही जादुई ढंग से हम साइकिल चलाना सीख भी जाते हैं।
0: बिल्कुल आशीष, आपने एकदम सही कहा है कि जब तक चोट नहीं लगती है ना तब तक कहते हैं परफेक्शन नहीं आता है। तो जब चोट लगती है तभी हम और अच्छे से सीख जाते हैं, भले ही हमारे हाथ पैर टूट गए हों और लेकिन फिर भी हमें साइकिल आई जाती है। और देखिए आज जैसे पहले भी बोला कि जो साइकिल है वो हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी है आज के टाइम में भी, क्योंकि जब हम रेगुलर साइकिलिंग करते हैं तो उससे जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, वो उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, वो स्वस्थ हो जाता है। और आप तो देख ही रहोगे कि डॉक्टर्स भी या कई घरों में आजकल केवल साइकिलिंग के लिए ही, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते, इतना वक्त नहीं है, तो घर पर ही रखा हुआ है उन्होंने और उस पर ही वो साइकिलिंग करके अपनी एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप साइकिल चलाते हो आशीष, तो आपके हाथ पैरों की भी मांसपेशियां मजबूत होती है ना। और एक चीज और मैंने नोटिस की है कि आप जो है फोकस्ड हो जाते हैं, बहुत आपका फोकस बढ़ता है क्योंकि आप अवेयर होते हैं आसपास क्या चल रहा है, उस पर भी नजर रखनी, अपने आप को चोट से भी बचाना है और अपनी मंजिल तक भी पहुंचना है। तो इस तरीके से जब हम बाकी की चीजों को कहते हैं ना भूल करके केवल अपनी सराउंडिंग्स पर ध्यान देते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस जो है, मानसिक तनाव है, वो भी कम हो जाता है ना।
1: हाँ, और साथ में निधि एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि साइकिल जैसे अभी हम चलाते हैं खाली सड़कों पर तो ठीक है, लेकिन अभी अगर कहा जाए कि बाहर साइकिल चलाएं तो बड़ा ही कष्टकारी हो जाता है साइकिल चलाना, क्योंकि

0: साइकिल के लिए कोई अलग से ट्रैक नहीं है, तो साइकिल के लिए एक अलग से ट्रैक होना भी बहुत जरूरी होता है। और हाल के वर्षों में डॉक्टरों के पर्चों पर भी साइकिल दौड़ने लगी है। सेहत बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर साइकिल चलाने की सलाह पर्चे पर लिख रहे हैं। उनका मानना है कि भाग दौड़, रोजी रोटी, करियर बनाने की जद्दोजहद में खुद पर ध्यान ना देने का खामियाजा तमाम बीमारियों के रूप में आ गया है। व्यायाम और योग के साथ अब डॉक्टरों ने साइकिल को सेहत की सवारी बताया। 30 मिनट साइकिल चलाना हार्ट, फेफड़े और मांसपेशियों को मजबूती दे रहा है।
1: क्या बात आपने कही आशीष। एक तो ये बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और डॉक्टर तो कह ही रहे हैं कि आजकल तो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखने लगे हैं, लेकिन जो एक बहुत अच्छी बात अभी आपने कही कि भाई ट्रैक होने चाहिए, साइकिल

0: आईटी एरिया से निकलेंगे तो आपको बहुत सारे साइकिल वाले लोग दिखेंगे. और यूजुअली क्या होता है, जब कोई इंसान साइकिल चला रहा होता है आशीष, तो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अरे ये जो है सम्मान की दृष्टि से उसको देखा जाता है उसको. और साथ में ये चोट चपेट का भी मतलब खतरा रहता है. तो साइकिल ट्रैक्स बनाने बहुत जरूरी है ताकि जो आप साइकिलिंग करें वो सेफ करें. कई बार एक्सीडेंट्स का बहुत खतरा रहता है. तो ये बात बहुत अच्छी है और मुझे लगता है जितने लोग भी सुन रहे हैं तो वो इस बात को ध्यान देंगे कि भाई हमारे कानपुर में सारी जगहों पर एक छोटा सही सही लेकिन एक साइकिल ट्रैक होना चाहिए जहां पर केवल साइकिल्स ही चलें.
1: बिल्कुल.
0: और जो वाहन है वो भी बाधित ना हो या लोगों को खतरा ना रहे इस तरीके का.
1: बिल्कुल. और जैसा कि सभी जानते हैं कि साइकिल चलाने से ईंधन की खपत नहीं होती जिससे वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कम होता है. यही कारण है कि आज ऊर्जा संकट के इस दौर में दुनिया के अनेक देश स्वच्छ और हरित परिवहन के रूप में साइकिल को बढ़ावा दे रहे हैं. इसलिए साइकिल चलाइए, स्वास्थ्य अपनाइए और पर्यावरण बचाइए.
0: तो बिल्कुल आशीष, हमारे हमनवा प्रोग्राम की साइकिल अपनी रफ्तार से दौड़ रही है तो मुझे लगता है मैं एक ऐसा गाना प्ले करूं जिसमें एक बड़ी ही यूनिक सी साइकिल, अगर आपने पिक्चर देखी है तो आपको जरूर याद आएगी. तो लीजिए आप ये गाना सुनिए और एंजॉय करिए इस गाने को.

0: निधि सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बहुत ही अच्छा गाना आपने सुनवाया। और गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं और गर्मी की छुट्टियां साल का वो समय होता है जब लोग अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकालकर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने की योजना बनाते हैं।
1: बिल्कुल आशीष, देखिए सिर्फ घूमना फिरना जो है ना वह भी बड़ी मानसिक शांति देता है। कहते हैं ना हमारे जो रोजमर्रा का जो रूटीन है उससे कहीं अलग जब हम जाते हैं घूमने फिरने तो बहुत ही कहते हैं कि आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलता है, आपका एंटरटेनमेंट होता है, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मान लीजिए आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो वहाँ की संस्कृति को आपको सीखने का मौका मिलता है ना, और वहाँ का कल्चर किस तरीके का है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ के लोग कैसी बोली बोलते हैं, उनका एक्सेंट कैसा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि आप गूगल पे सर्च करके नहीं पता कर सकते, वो जब आप जाते हैं तभी आपको वो अनुभव होता है। तो मैं कहूँगी कि हम सबकी लाइफ में सैर सपाटे का एक बहुत ही खास योगदान रहा है।
0: बिल्कुल, और हमारा देश विविधताओं का देश है जहाँ हिमालय की बर्फीली वादियों से लेकर समुद्र तटों तक, घने जंगलों से लेकर ऐतिहासिक स्मारकों तक अनेक पर्यटन स्थल मौजूद है। गर्मी की छुट्टियों में लोग अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों की ओर जाना पसंद करते हैं जहाँ का सुहावना मौसम उन्हें गर्मी से राहत देता है। वहीं कुछ लोग धार्मिक स्थलों, वन्य जीव अभयारण्यों, संग्रहालयों और ऐतिहासिक नगरों की यात्रा कर अपने ज्ञान और अनुभव को समृद्ध बनाते हैं।
1: बिल्कुल आशीष, देखिए हमारा जो देश है वो विविधताओं का देश है ना, तो यहाँ पर अगर हमारे पास हिमालय की बर्फीली वादियाँ हैं तो बहुत दूर दूर तक बसे हुए या कहना चाहिए फैले हुए समुद्र तल भी हैं, घने जंगल हैं और ऐतिहासिक इमारतें हैं, बहुत सारे पर्यटन स्थल हमारे यहाँ मौजूद हैं हमारे इंडिया में। तो गर्मी की जो छुट्टियाँ हैं वो हम अगर ख़ास तौर पे बोलें तो हम ऐसी जगहों पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ का मौसम थोड़ा सुहावना हो, है ना। तो हम नॉर्मली पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर लेते हैं। अभी भी आप देख ही रहे होंगे कि कितना लोग शिमला और जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की परेशानियाँ भी आप देखिए तो कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि ओवर क्राउड हो गया है वहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम पहाड़ी क्षेत्रों पर जा रहे हैं या कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें खुद भी समझने की ज़रूरत है और हमारे बच्चों को भी समझाने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है आशीष बताएंगे कि क्या क्या हम और सीख जब भी हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो बच्चों को किस तरीके से ट्रेंड करके लेके जाना है और खुद को भी क्या ट्रेनिंग देनी है।
0: फिलहाल निधि अभी हमारे साथ जुड़ रही हैं एक लिसनर्स, आइए जानते हैं क्या है उनके विचार।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं दिव्यांशी उन्नाव से बोल रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का नाम नहीं बल्कि नए अनुभवों, नई जानकारियों और खूबसूरत यादों से जुड़ने का माध्यम भी है। गर्मी की छुट्टियां हमें यही अवसर प्रदान करती हैं। इन दिनों बहुत से लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ घूमने फिरने की योजना बनाते हैं। कोई पहाड़ों की ठंडी वादियों का रुख करता है तो कोई ऐतिहासिक स्थलों, धार्मिक स्थानों या प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की ओर निकल पड़ता है। हर यात्रा अपने साथ कुछ नया सिखा कर जाती है। पर्यटन हमें विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन शैलियों को समझने का अवसर देता है। यह हमारे ज्ञान को बढ़ाता है और हमारी सोच को और अधिक व्यापक बनाता है। साथ ही प्रकृति के बीच बिताया गया समय मन को शांति और नई ऊर्जा से भर देता है। हालांकि यात्रा का आनंद तभी सार्थक है जब हम एक जिम्मेदार पर्यटक की भूमिका निभाएं। जहां भी जाएं वहां स्वच्छता बनाए रखें, पर्यावरण की रक्षा करें और स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं का सम्मान करें। तो आइए इस गर्मी की छुट्टियों को केवल मनोरंजन तक सीमित ना रखकर सीखने, समझने और यादगार अनुभवों से भरने का प्रयास करें। धन्यवाद।
0: हमारे साथ जुड़ी हुई थी ये हमारी नियमित श्रोता दिव्यांशी उन्नाव से। वैसे निधि, पर्यटन का आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। पर्यटन उद्योग लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, स्थानीय बाजार और खान पान से जुड़े अनेक व्यवसाय पर्यटन पर निर्भर करते हैं। अब देखिए ना, जब कोई पर्यटक किसी स्थान पर जाता है तो वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा है आशीष कि ये एक तरीके से उनके लिए पीक

0: सीजन है
1: जी
0: पहाड़ी इलाकों में या जहाँ पर भी ऐसे घूमने फिरने वाली जगह है, पीक टाइम है उनका और बहुत अच्छी आय होती है वहाँ के जो लोकल कहना चाहिए उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलता है और मुझे लगता है कि देना भी चाहिए। और अभी देखिए आपको शायद याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक अपील भी की है लोगों से कि आप विदेश नहीं अपने देश को घूमिए और अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूत करेंगे, क्योंकि जितना पैसा हम बाहर जाने में खर्च करेंगे उससे अच्छा है कि हम अपने देश में खर्च करें और अपने देश के लोगों को बढ़ावा दें। तो बहुत सारी चीज़ें इससे कहना चाहिए कि नर्चर होती है, पल्लवित होती हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ मैं फिर से यही बात कहना चाहूँगी कि जब हम पहाड़ी इलाकों पर जाते हैं तो आप देख रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में भी कि इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है कई कई किलोमीटर्स तक का
1: जी,
0: चाहे वो कुल्लू का एरिया हो, शिमला का एरिया हो, बहुत लंबी लंबी दूरी तक आपको सिर्फ वहाँ पर गाड़ी ही गाड़ी दिखती हैं। मतलब हम यहाँ से पहाड़ देखने जा रहे हैं, हम वहाँ की सुंदरता को देखने जा रहे हैं और हमारा ज़्यादातर जो वक्त है वो रास्ते में ही बीता जा रहा है, केवल ट्रैफिक में फंसे फंसे। और एक चीज़ और भी है ख़ासतौर पर इस समय के लिए कि देखिए हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल का इस समय पूरे विश्व में ही संकट
1: जी
0: है।
1: हाँ,
0: और
1: संकट है
0: अब
1: बिल्कुल।
0: आप देखिए कि अगर हम गाड़ियों में जा रहे हैं तो कितना पेट्रोल डीजल केवल हमारा इंतजार और जाम में फंसे हुए हो जाता है। मोर ओवर अगर मैं और बात कहूँ तो जब हम जाते हैं तो आशीष कई बार ये भी देखते हैं कि वहाँ पर हम लोग जाके इतनी गंदगी फैला देते हैं, सब लोग नहीं लेकिन अभी भी शायद इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, पॉलीथिन रैपर्स है ना, प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह इतना गंदा कर देते हैं। तो मुझे लगता है पहाड़ों की सुंदरता हम खुद ही ख़राब कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जब भी कभी हम घूमने जाएँ तो हम इस इको टूरिज़्म को बढ़ावा दें कि भाई हम पहाड़ों की सुंदरता निहारें लेकिन हम वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं और अपने बच्चों को भी इस चीज़ के लिए ट्रेंड करें।
1: जी हाँ, आपने इको टूरिज्म की बात करी है जो कि प्राकृतिक क्षेत्रों की एक जिम्मेदार यात्रा है। जैसा कि आपने बताया कि भाई पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है और स्थानीय समुदायों की भलाई सुनिश्चित करनी है। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर जाके जो वहाँ की संस्कृति है या वहाँ के जो लोग हैं उनका हम मजाक उड़ाएं, है ना। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं कष्टकारी होती हैं भाई, वो कोई अलग थोड़ी ना, वो भी हमारी तरह ही इंसान है, है ना। तो चलिए टॉपिक को थोड़ा सा बदलते हैं और ये जो गर्मी की छुट्टियाँ ना, वो सैर सपाटा जो होता है इसमें बच्चों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होता है ना। वो किताबों में पढ़ी गई बातों को वास्तविक रूप से देख और समझ पाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना। जो चीजें वो किताबों में देख रहे होते हैं या फिर अपने मोबाइल में देख रहे होते हैं वो जो है लाइव देखना उनको जो है दिखाई देता है। ऐतिहासिक स्मारक हो, विज्ञान संग्रहालय, प्राकृतिक उद्यान और सांस्कृतिक केंद्र बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं और उन्हें नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करते हैं।
0: बिल्कुल आशीष, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सामने देखते हैं तो वो हमारे स्मृति में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। तो हम तो यही कहेंगे जब भी आप कभी घूमने जा रहे हैं तो अपनी मधुर स्मृतियों को अपनी जो है कैद करके लाएं वहाँ से, और बड़ा ही अच्छा रहेगा। और अभी आपका क्या ख्याल है, हम एक और रिकॉर्डिंग सुनवा सकते हैं?
1: हाँ, हमारे साथ तो एक श्रोता जुड़ रहे हैं, आइए जानते हैं क्या है उनके विचार।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं सौरभ कानपुर से बोल रहा हूँ। गर्मी की छुट्टियां आते ही मन में घूमने फिरने और नई जगह देखने की उत्सुकता बढ़ जाती है। पर्यटन और सैर सपाटा न केवल मनोरंजन का माध्यम है बल्कि यह हमें नई जानकारियां और नए अनुभव भी प्रदान कराता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पर्यटन हमें कुछ पल सुकून के भी देता है। जब हम परिवार और मित्रों के साथ किसी नई जगह की यात्रा करते हैं तो वहाँ की संस्कृति, इतिहास, खानपान और प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से जानने का अवसर मिलता है। इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है और जीवन में नई ताजगी का संचार होता है। गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ी क्षेत्रों, ऐतिहासिक स्थलों, धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक पर्यटन केंद्रों की यात्रा विशेष रूप से आकर्षित करती है। ये यात्राएँ हमें प्रकृति के करीब ले जाती हैं और रोज़मर्रा की चिंताओं से कुछ समय के लिए दूर कर देती हैं। हालांकि यात्रा के दौरान हमें स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर्यटन स्थलों को स्वच्छ रखना और स्थानीय संस्कृति का सम्मान करना प्रत्येक पर्यटक का कर्तव्य है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि पर्यटन केवल स्थानों को देखने का नाम नहीं है बल्कि यह नए अनुभव, नई सीख और खूबसूरत यादों को अपने जीवन में जोड़ने का एक अवसर है। धन्यवाद।

जी हाँ दोस्तों, बस हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं अभी, हमारे प्रोग्राम में काफ़ी सारा वक्त है और हम आपसे बहुत ढेर सारी बातें अभी करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होते हैं आपके फेवरेट हम नवा प्रोग्राम में। जुड़े रहिए हमारे साथ 102.2 FM पर। और आज के इस हम नवा प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ निधि, और मेरे साथ हैं आपके होस्ट एंड दोस्त आशीष।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: आशीष बहुत देर से हमारे दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उन्हें हम बता दें कि इस समय प्रोग्राम चल रहा है हम नवा और इसे आप सुन रहे हैं 102.2 FM की फ्रीक्वेंसी पर। और आशीष, जहां तक जब भी रेडियो का जिक्र आता है तो आकाशवाणी का नाम आता है और सभी जानते हैं कि इस साल हम आकाशवाणी के 90 सालों का जश्न मना रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन में रेडियो की भूमिका। और जब भी कभी इसका जब हम शानदार 90 सालों का सफर देखते हैं तो हमारा दिल बड़ा ही गर्व से भर जाता है।
3: बिल्कुल गर्व से भर जाता है निधि। और इन 90 सालों में आकाशवाणी में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि जब जब देश पर कोई आपदा आई आकाशवाणी ने सभी जरूरी और सटीक जानकारियां लोगों तक पहुंचाई।
2: हाँ, आप चाहे आकाशवाणी का शुरुआती दौर देखिए जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ या फिर बाद के भी जितने भी युद्ध रहे हैं इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना या फिर कारगिल की लड़ाई, तो हमेशा ही रेडियो आकाशवाणी बिल्कुल सही और सटीक जानकारियां पहुंचाता रहा है लोगों तक।
3: बिल्कुल, और शुरुआती दौर में आकाशवाणी ही एकमात्र साधन था दूर संचार का क्योंकि तब टीवी इंटरनेट कुछ भी नहीं था। लोग पूरी तरह से जानकारियों या अदर अपडेट्स के लिए रेडियो पर ही निर्भर थे।
2: हाँ आशीष, और आज भी अगर आप देखें कि इंटरनेट सेवाएं जब कभी ठप हो जाती हैं, है ना, तो या फिर बहुत दूरी जहां तक हमारा नेट नहीं पहुंच पाता है वहां पर आज भी रेडियो ही काम कर रहा है। और क्योंकि बहुत ही देखिए, एक तो इसमें बिजली की खपत नहीं है, है और बहुत ही आसानी से हर जगह एक्सेसिबल है, आप कहीं पर भी इसको लेके जा सकते हैं। और अब तो देखिए मोबाइल में ही सब कुछ इनबिल्ट है, आप कहीं पर भी सुन सकते हैं, तो सारी जानकारियां आप तक पहुंच जाती हैं वो भी बिना आपके काम में रुकावट डाले, है ना।
3: बिल्कुल निधि, और जब गुजरात त्रासदी हुई, सुनामी आई, केदारनाथ त्रासदी हुई, तब आकाशवाणी ने ही खास तौर पर देहरादून और अन्य केंद्रों ने रात दिन काम करके इस समय की हर अपडेट्स प्रसारित की थी।
2: हाँ, और देखिए जब भी कभी इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जैसे कि तूफान आ गया है, कहीं पर बाढ़ आई है, भूकंप आया है और वहां पर मोबाइल नेटवर्क टूट जाता है तो रेडियो ही काम आता है। और आशीष, सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स ही नहीं, मतलब कोई भी आपदा का मामला हो, जैसे कोविड-19 आया है ना, हाँ, या फिर अभी देखिए हाल में पेट्रोल डीजल का भी संकट गहरा रहा है, तो हर बार रेडियो जो है अपनी सशक्त भूमिका सिद्ध करता है ना।
3: शॉर्ट में कहें तो चक्रवात हो, भूचाल हो या छाई हो महामारी, रेडियो की हर एक आवाज पड़ती है संकट पर भारी।
2: क्या बात है तो बिल्कुल आपने बड़ी अच्छे तरीके से ये बात कह दी। और देखिए होता क्या है, जब आपदा आती है तो लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं ना, तो और सोशल मीडिया पे भी आजकल आप देखते होंगे कई बार बहुत सारी उल्टी सीधी अफवाहें फैल जाती हैं, रूमर्स आ जाते हैं, तो आकाशवाणी पर लोग आज भी बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि वो अभी भी सबसे ज्यादा विश्वसनीय और भरोसे का साथी रहा है ना।
3: बिल्कुल, और इसीलिए आज के हाईलाइट्स के जमाने में जो भी आपको टाइम मिले तो रेडियो जो होता है ना वो सबसे भरोसेमंद साथी बन

0: कार्य उभरता है। सबसे अच्छी बात है कि आप रेडियो को कहीं भी सुन सकते हैं और न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए मोबाइल फोन्स में भी ये आम तौर पर जो है बना हुआ है।
1: बिल्कुल, है ना। और देखिए, कम्युनिटी रेडियो जो है वो लोकल लैंग्वेजेस में अपनी सूचनाएं प्रसारित करते हैं, तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग, उन निर्देशों को अच्छे से समझ भी पाते हैं
0: जी,
1: है ना। तो और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जब कोई आपदा या संकट आता है तो आकाशवाणी के जो रीजनल सेंटर्स हैं वो 24 घंटे लगे रहते हैं कि लोगों तक बिल्कुल तुरंत और सही जानकारियां पहुंच जाएं, है ना। तो आप अगर अपने चैनल की बात करें, हमारे कानपुर आकाशवाणी की, तो देखिए हम कितनी बार अर्ली वार्निंग्स देते रहते हैं, समय समय पर अपने प्रोग्राम्स देते हैं कि भाई लोगों तक सही जानकारियां बिफोर टाइम पहुंच जाएं, आपदा आने से पहले ही पहुंच जाए। जैसे अभी सिंपल सी बात आप लीजिए, हीट वेव का प्रकोप चल रहा है, या फिर अभी आने वाले दिनों में हमारे यहाँ जब बारिश का मौसम आ जाएगा तो संक्रामक बीमारियों के फैलने का डर बढ़ जाता है। तो ऐसे में भी देखिए, हमारे यहाँ से रोज़ाना हम अलग अलग वक्त पर और अलग अलग दिनों में हेल्थ मैगजीन है या स्वास्थ्य चेतना जैसे प्रोग्राम हम देते ही हैं और उनके जरिए जानकारियां पहुंचाना शुरू कर देते हैं, है ना।
0: बिल्कुल सही कहा निधि आपने। और मौसम अपडेट तो हम हर रोज देते हैं कि आज या आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना है, तो सड़कों पर ध्यान से चलें, बिजली के खंभों से सटकर ना खड़े हों, पेड़ों के नीचे शरण ना लें। जो ग्रामीण इलाके हैं जहां बाढ़ आने की संभावना रहती है या वहां के लोगों को बाढ़, बारिश, आंधी तूफान या सूखा पड़ने जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, उनके लिए भी आकाशवाणी कानपुर समय समय पर जानकारियां पहुंचाता है ताकि हमारे किसान भाई सचेत हो जाएं और समय रहते अपनी फसलों और पशुधन की सुरक्षा कर पाएं।
1: बिल्कुल, और सिर्फ ग्रामीण इलाके ही नहीं आशीष, हमारे यहाँ शहरों में भी कहीं पर भी जैसे आगजनी हो जाए या कि कोई भी घटना हो जाए तो हमारे पास मेडिकल हेल्प के लिए हमारे पास बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स रहते हैं रेडियो के पास, तो हम वहाँ से भी वो चीज़ें प्रसारित करते रहते हैं। तो कुछ हेल्पलाइन नंबर मैं चाहूँगी कि आप एक बार ही बता दें।
0: कुछ हेल्पलाइन नंबर बताते चले, जैसे 100 नंबर तो सबको पता ही है, पुलिस हेल्प के लिए है, और आप 112 भी मिला सकते हैं, साथ ही अग्निशमन सेवाओं के लिए आप 108 या 102 आप एम्बुलेंस के लिए मिला सकते हैं, और वुमेन हेल्पलाइन नंबर निधि बताएंगी आप?
1: जी हाँ, ये है 1090 यानी कि 1090, और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 यानी कि 1098। तो बस कुल मिलाकर के हम आशीष यही कहेंगे कि भाई 90 सालों से आकाशवाणी ने हर सुख दुख में साथ निभाया है और जब भी कोई आफत आई है इसने ही रास्ता दिखाया है। मनोरंजन ही नहीं, ये तो रक्षक है हर इंसान का, कोई सानी नहीं है आज भी हमारे आकाशवाणी का। लेकिन आशीष, जैसे अभी हमने बात करी थी, हमें एक बहुत ही अच्छा सा गाना हमने क्यू करके रखा हुआ है और उसमें भी रेडियो की भूमिका बहुत ज़्यादा बताई गई है द बर्निंग ट्रेन से, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक मेल आ चुकी है और हम चाहेंगे कि इसे ज़रूर पढ़ दिया जाए। हमारे श्रोता बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होंगे अपनी मेल पढ़ने का, तो ये पहले आप मेल पढ़ दीजिए और मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारे रेगुलर लिसनर है मोनू सेठ,
0: भैया मोनू सेठ, और इन्होंने लिखा हुआ है कि दो पहियों की मेरी साइकिल, सरपट दौड़े मेरी साइकिल, ना पेट्रोल ना धुआं उड़ाए, पर्यावरण को शुद्ध बनाए, गिरना और फिर उठना सिखाती, मंजिल तक हमको पहुंचाती, तन को चुस्त दुरुस्त ये रखती, थकान कभी ना पास ये फटकती।
1: बिल्कुल, और लिखते हैं कि बचपन में हम और बड़े भैया सोनू जी दोनों बहुत लड़े हैं और जब स्कूल जाने के लिए भैया को नई साइकिल दिलाई गई और हमें साथ में बैठकर जाने को कहा गया तो हमने कहा हमें भी साइकिल चलाने को दो भैया, और वो कह रहे थे कि गिर जाओगे, हमने जिद पकड़ ली, फिर क्या, भैया जी को बैठा कर चला रहे थे शान से, अचानक ब्रेक लगा दिया और गिर गए पैडल, टूट गई भैया पैडल टूट गई, अच्छा गिर गए और पैडल टूट गई, और भैया जी ने खूब धुनाई की और घर में भी धुनाई हुई, और वैसे आज भी साइकिल है जो नाना जी ने भैया जी को खरीद करके दी थी, मतलब ये साइकिल एज अ रिमेम्बरेंस उनके पास बनी हुई है। तो कितनी अच्छी सी याद उन्होंने हमारे साथ शेयर करी है, तो हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद कहना चाहेंगे और हम एक बार फिर से उन्होंने हंसा दिया। लेकिन आशीष, अब हम सोच रहे हैं जल्दी से वो गाना प्ले कर दें क्योंकि वक्त हमारा बीतता जा रहा है और बड़ा ही खूबसूरत सा ये गाना है।
0: ठीक
1: है, तो बस पल दो पल का साथ हमारा बढ़ा देते हैं।

आशीष और निधि और बर्निंग ट्रेन फिल्म से, जैसे हमने आपसे कहा था कि गाना हम आपको सुनवाएंगे, और इसमें इस फिल्म में बहुत ज़्यादा रेडियो की भूमिका दिखाई गई थी, क्योंकि पूरा का जो ये कव्वाली और पूरी जो फिल्म थी एक तरीके से ट्रेन के अंदर ही फिल्माई गई थी, तो बहुत ज़्यादा योगदान है इसमें रेडियो का। लीजिए सुनिए।

0: तो आशीष हम ये कहेंगे कि हमारा जो साथ है वो अभी थोड़ी देर और का है, पल दो पल का नहीं है, लेकिन हाँ इसी बीच हमारे पास देखिए एक और मेल आई हुई है और हमारे रेगुलर जो लिसनर हैं नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से हमेशा ही और हर प्रोग्राम के लिए मेल करते हैं, उन्होंने भी मेल करी है, तो हम जल्दी से इनका मेल पढ़ना चाहेंगे।
1: जी हाँ, और ये लिख रहे हैं, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश हजार बार करता है। नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग आशीष भैया और मेरी प्यारी वाली अजय निधि को मेरा नमस्कार। मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है, बचपन में स्कूल जाते थे साइकिल से और साइकिल से ही हम मंच 5 बार कानपुर भी आ चुके हैं। मुझे मोटरसाइकिल चलाना कम पसंद है, साइकिल चलाना ज्यादा अच्छा लगता है।
0: क्या बात है, और इसके आगे ये लिखते हैं कि साइकिल चलाने से हमारी फिटनेस भी ठीक रहती है, और एक बार की बात है कि हम अपनी सिस्टर को साइकिल सिखा रहे थे, हमने उससे कहा कि हैंडल ठीक से पकड़ना और हमने साइकिल छोड़ दी, वो साइकिल लेकर एक गड्ढे में साइकिल ले जा करके गिरी, उसको चोट भी लगी लेकिन उसके बाद वो सीख भी गई थी। और बस आशीष ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हमारे साथ भी होते रहते हैं जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए, और अब जैसे कि पल दो पल जो है पल पल बीत रहे हैं और हमारे पास वक्त थोड़ा कम बच रहा है, तो हम शॉर्ट में बात करना चाहेंगे कि इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं और कई बार हमारे घरों में घरेलू कचरा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो उसका हम निपटारा किस तरीके से कर सकते हैं?
1: देखिए निधि, जैसे हम अपने गली मोहल्ले में के कॉर्नर में या जब सुबह सुबह गाड़ी वाला आता है कूड़ा लेने के लिए, तो उनके पास दो तरह के बिन होते हैं, एक ब्लू बिन और दूसरा ग्रीन बिन। ग्रीन बिन होता है गीले कचरे के लिए और ब्लू बिन सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक कागज या कांच वगैरह के लिए। वैसा ही कुछ हमें करना चाहिए अपने घरों के लिए भी, यानी फल सब्जियों के छिलके चाय की पत्ती वगैरह के लिए ग्रीन बिन और बाकी सूखे कचरे के लिए अलग डिब्बा होना चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए आशीष, जब हम दोनों चीजें मिक्स कर देते हैं ना, दोनों तरीके के कचरा, प्लास्टिक भी है उसमें, कांच भी है और उसमें घर के फल सब्जियों के छिलके हैं, तो दो नुकसान हो जाते हैं, एक तो एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से, और क्योंकि उसमें बीमारियां पनपती हैं और बैक्टीरिया पनपते हैं तो बीमारियां भी होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात, जब जानवर इसको खाते हैं तो उनको भी बहुत नुकसान

0: होता है, तो हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारे हमारे पास जो घरेलू कचरा है, फल सब्जियों का छिलके हैं, इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से रिसाइकिल कर सकते हैं, हम उससे कंपोस्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी खाद का काम करती है। और मोर ओवर अगर आपके घर में जैसे एग्स आते हैं और उसके छिलके होते हैं, उसको भी अगर आप थोड़ा सा पीस करके डाल देते हैं या क्रश करके डाल देते हैं, तो जहाँ की मिट्टी एसिडिक हो गई है तो वो कैल्शियम का एक बड़ा ही अच्छा स्रोत रहती है और आपकी मिट्टी भी उपजाऊ हो जाती है।
1: जी हाँ, और कई बार लोग अपने घर का सारा कचरा गीला और सूखा सब एक साथ ही डाल देते हैं, उससे वे किसी काम का नहीं रहता, जैसा कि आपने आगे बताया। अब देखिए, बचे हुए खाने को आप घर के बाकी कचरे के साथ बाहर डाल देते हैं तो कई बार जानवर भी इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसा करना भी सही नहीं रहता है।
0: हाँ, तो बेहतर यही है कि जो हानिकारक कचरा है, कांच प्लास्टिक वगैरह पुरानी दवाइयां, इनको आप एक अलग रैपर में करके रख दें पैकेट में, और गीला कचरा जो है उसको अलग कर लें। साथ ही साथ आशीष, हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि जब हम किचन में काम करते हैं तो बहुत सारा हमारे यहाँ किचन वेस्ट वाटर भी निकलता है, मतलब जिसे हम ग्रे वाटर कहते हैं ना, तो उसको हम किस तरीके से यूज में ला सकते हैं?
1: हाँ, और देखिए, दाल चावल फल सब्जियां धोने के बाद उसमें कई पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही आरओ से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर भी गमलों और बगीचे के पौधों के लिए पूरी तरह से सेफ होता है, तो इस तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और अपनी कार है, गाड़ियां हैं, उनको धोने में काम में ले लीजिए या फिर पोछा लगाने में काम ले लीजिए। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जिस भी पानी को आप यूज कर रहे हैं उसमें जूठन या तेल घी ज्यादा ना हो, या मतलब ना ही हो, क्योंकि वो फिर आपको, और एक तो स्मेल पैदा करेगा, दूसरी बात यह है कि उससे नुकसान होगा आपको, है ना, बीमारियां फैलेंगी। साथ ही साथ एक चीज और हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जब हम धोने धुलाने की बात कर रहे हैं तो अक्सर दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई जो हम सोप यूज करते हैं, चाहे कपड़े धोने के लिए या फिर बर्तन धोने के लिए, वो गंदगी साफ कैसे कर देता है?
1: तो इस पर कुछ बताएंगे निधि कि किस तरह से ये काम करता है, साबुन की गंदगी किस तरह से वो साफ हो जाती है।
0: हाँ, तो आशीष, बहुत सारे लोग जानते ही होंगे और हम बहुत आसान शब्दों में से बताना चाहेंगे कि जो साबुन है एक्चुअली वो पोटेशियम और कैल्शियम दो तरीके के इसमें सॉल्ट होते हैं, और इसके मेनली दो पार्ट हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक और दूसरा है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, यानी कि वो पानी की तरफ आकर्षित होता है, और जो हाइड्रोफोबिक है वो दूर रहेगा पानी से, यानी पानी में मिलेगा नहीं। तो जो इसका हेड वाला पार्ट है ना, यानी कि हाइड्रोफिलिक, तो वो एक पोलर आयन की तरह काम कर लेता है, और जबकि जो टेल वाला पोर्शन है जो कि नॉन पोलर है, वो पानी में तो नहीं मिलता है ना, चिकनाई में नहीं मिलता है, लेकिन वो चिकनाई से चिपक जाता है। तो बस उसके बाद कि हम लोग ने सभी ने बचपन में पढ़ा हुआ है कि भाई अगर सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर करेंगे। तो बस ऐसा ही होता है कि जो चिकनाई वाला नॉन पोलर एंड है और जो हमारा सोप वाला नॉन पोलर एंड है, वो दोनों एक दूसरे को खींचते हैं और गंदगी बाहर आ जाती है।
1: फिलहाल बातें तो बहुत सारी हो गई है, लेकिन अभी वक्त है एक अच्छे से प्यारे से गाने का।
0: हाँ, और इसके बाद आशीष आपको एक रेसिपी बताएंगे फटाफट से।

0: तो आशीष, दिन तो सनी सनी है और बहुत ज्यादा तेज धूप है, लेकिन अब हमें अपना जो रेसिपी सेगमेंट है उसे जरूर स्टार्ट कर देना चाहिए, टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे।
1: जी हाँ, और आज की रेसिपी है दही वाला करेला, या दही करेला भी इसको बोल सकते हैं। और इसके लिए सामग्री है 3-4 मध्यम आकार के आप करेले ले लें, 1 कप गाढ़ा दही, 1 प्याज महीन कटा हुआ, 1 हरी मिर्च महीन कटी हुई, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार और 1 बड़ा चम्मच तेल, साथ में ही हरा धनिया। अब विधि कुछ इस तरह से है कि करेले को पतला काट लें और नमक लगाकर 20 मिनट तक रखें, फिर पानी से धोकर निचोड़ लें, कढ़ाई में तेल गर्म करें और जीरा भून लें, प्याज और हरी मिर्च डालकर हल्का सुनहरा भून लें, अब करेला डालकर मध्यम आंच पर 8 से 10 मिनट तक पकाएं, हल्दी लाल मिर्च और नमक मिलाएं, गैस बंद करके मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें, अब दही को अच्छी तरह फेंट कर करेले में मिलाएं और ऊपर से हरा धनिया डालकर परोसें। और इसकी निधि खास जो टिप है वो ये है कि दही डालने के बाद तेज आंच पर ना पकाएं, वरना दही जो है ना वो फट जाएगा, और चाहे तो ऊपर से भुना जीरा पाउडर छिड़क दें, स्वाद और बढ़ जाएगा।
0: क्या बात है, जिस तरीके से आशीष जी ने बताया तो मुझे लगता है वो जरूर बनाते रहते होंगे और काफी अच्छा आइडिया है, तो मुझे लगता है इनके घर वालों को अच्छा खासा खाने को मिलता ही है। लेकिन आशीष, अब
1: घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम नवा प्रोग्राम को अब यहीं पर वाइंड अप करना चाहिए, तो फिलहाल मुझे यानी आज आशीष और निधि को दीजिए इजाजत। नमस्कार,
0: और आपसे मैं मिलूंगी दिन में 3 बजे म्यूजिक आर प्रोग्राम के साथ, तो सुनते रहिए 102.2 FM पर रेनबो कानपुर।

बजकर दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खरीफ गोष्ठी के माध्यम से किसानों को बीजों की गुणवत्ता, तकनीक और कृषि के आधुनिक तरीकों के साथ ही सरकार की योजनाओं और तैयारियों से भी अवगत कराती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि चीनी, आलू, दूध, एथेनॉल आदि में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को न्यूनतम स्तर पर लाने और कृषि को प्राकृतिक स्तर पर लाने के लिए खरीफ गोष्ठी लाभदायक सिद्ध होगी। श्री योगी ने कहा कि आज किसान अपने खेत में तीन तीन फसलें ले रहा है। सरकार ने MSP बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने में सहयोग किया है। उत्तर प्रदेश TGT परीक्षा का आयोजन आज और कल प्रदेश के 36 जिलों के 614 केंद्रों पर दो पालियों में होगा। बदायूं में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT परीक्षा जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता, पारदर्शी वितरण और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में पेट्रोलियम कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों और खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में श्री पांडेय ने नेपाल एवं बिहार की सीमाओं से जुड़े जनपदों में पेट्रोल, डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी की प्राप्त शिकायतों पर चिंता व्यक्त की है। ने पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों एवं जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे मामलों की तत्काल जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। माध्यमिक शिक्षा विभाग के नवनियुक्त निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देते हुए डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट कक्षाओं और तकनीकी आधारित शिक्षण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। मंगलवार को पदभार

ग्रहण करने के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हो चले हैं प्रोग्राम, शुरू हो चुका है शत्रुपा, और शत्रुपा में आज क्या है खास बात, सोचिए जरा। हर दिन कुछ नया होता है और हर दिन कुछ खास होता है। तो आज है वेडनेसडे, जी हाँ, आज हम स्वाद लेकर आते हैं आप तक, और बल्कि केवल स्वाद नहीं, साथ ही साथ हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए, और कुछ ऐसी चीजों से भी आपको रूबरू कराते हैं जो शायद आजकल के जो पीढ़ी है या आजकल के जो बच्चे हैं वो जानते ही नहीं। ये क्या होता है, ये कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता था, इसकी क्या खास बात है। तो स्वाद के साथ हम उस खास बातों से भी आपको जानकारी पहुंचाएंगे। और वैसे बताइए, गर्मी का मौसम आते ही क्या याद आता है, दादी नानी की रसोई है ना, जहां पर मिट्टी के घड़े का पानी हुआ करता था, बेल का शरबत बिना बताए जबरदस्ती, नहीं थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा पी लो, सत्तू का शरबत, अरे बच्चा थोड़ा सा पी लो, जब बाहर घूमी करने जाओगे तो लू नहीं लगेगी, शायद आज कहीं वो गुम सा हो गया है, लगता है आपको। चलिए हम उन बातों को नहीं दोहराने वाले हैं, यादों को अपनी यादों तक रखते हैं। और एक चीज और आप सोचिए, दादी नानी क्या और पिलाती थी हम सभी को, जिससे कि हमारा शरीर ठंडा रहता था, जी गर्मी से बचाता था, बहुत खास था उस समय। अब शायद बहुत सारे लोगों को उसका नाम ही नहीं पता, तो हम बताते हैं ना, गोंद कतीरा, जी हाँ गोंद कतीरा। अब ये दो नाम नहीं है, ये एक नाम है। हम वो वाला गोंद जानते हैं जिसे हम रवा के लड्डू में इस्तेमाल करते हैं, कई सारे डिशेस में इस्तेमाल करते हैं, उसे भून के उसे फोड़ कर खाया जाता है, वो भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं गोंद कतीरा की। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग इससे कई अच्छी अच्छी डिशेस भी बनाते होंगे। तो जो सुन रहे हैं और जो जानते हैं, डिशेस बनाते हैं, वो हमें भी बताएं कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पे, और जो हम बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, ये जानकारी आपके लिए और औरों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम केवल जानकारी ही नहीं देते, हम आप तक प्यारे गाने भी पहुंचाते हैं। तो सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद करेंगे और भी बातें गोंद कतीरा से रिलेटेड, क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या जरूर

11:15 और 2 सेकंड हो चले हैं और बहुत सारे लोगों ने सोच लिया होगा कि गोंद कतीरा से क्या क्या हम बनाते हैं और क्या मैसेज करें, और लेकिन सोचा ही आपने, अभी तक मैसेज नहीं किए और जिन लोगों के मैसेज आ रहे हैं वो हमारे इस प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, तो क्या किया जाए भाई, कर दीजिए ना फटाफट, तो अच्छा लगता है। और अगर हम गोंद कतीरा की बात करें तो आज के समय में भी बहुत सारे लोग इसके बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इसके फायदे क्या हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। हाँ, अभी आप कहेंगे ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और जो हमें, हम किधर से देख रहे हैं ये हमारा नजरिया होता है, हमें दोनों देखना चाहिए, और हर एक चीज का अगर फायदा है तो दोस्तों नुकसान भी होता है, इसका ध्यान रखना है। और गोंद कतीरा तो एक प्राकृतिक गोंद है जो कि कुछ विशेष पेड़ों और झाड़ियों से निकलता है और ये देखने में छोटे छोटे एकदम ट्रांसपेरेंट टुकड़े होते हैं ना, पारदर्शी होते हैं, जिसे आर पार देखा जा सकता है। और जब इसे हम पानी में भिगोते हैं और उसके बाद इसका इस्तेमाल करते हैं, जब भिगोते हैं ना तो ये फूल कर जेली की तरह ज्यादा सा हो जाता है। पुराने समय की अगर हम बात करें तो इसे गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता था, जब गांवों में खेतों में लोग काम करने जाते थे या किसी लंबी यात्रा के लिए जाते थे, जब तेज गर्मी में मजदूर काम कर रहे होते थे तो इसका शरबत जरूर पीते थे और इसे अलग अलग तरह से इसका इस्तेमाल करते थे। तो चलिए इस गाने के बाद हम आपको बताएंगे इसका इस्तेमाल कैसे और कब करना चाहिए।

बात कर रहे हैं गोंद कतीरा की। और ये सोचिए कि हम अभी जैसे ही हम बता रहे हैं और आप बना लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आज आपको सही से ध्यान पूर्वक सुनना है और हर एक बात को गांठ बांध लेनी है। कहते हैं ना कि इस बात को गांठ बांध लीजिए तो सारी चीजें याद रहेंगी और उसके बाद आपको, हमें नहीं लगता है कि जो जो चीजें हम बताने वाले हैं उसमें से आपके पास घर में किचन में बहुत सारी चीजें ना हो, सारी चीजें होंगी सिवाय गोंद कतीरा के, जो कि आपको मार्केट से लाना होगा, रात में भिगो के रखना होगा। नेक्स्ट डे आप जो जो चीजें हम बताएंगे हर एक चीज का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, गर्मी में क्या मन करता है? हाँ, ठंडा ठंडा शरबत पीने का मन करता है। लेकिन सभी लोग हेल्थ को लेकर काफी सीरियस हैं। जी हाँ, सफेद चीजें बंद कर रहे हैं ना, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो मैदा हो, और यहाँ तक कि तेल वगैरह भी। तो चलिए, अच्छी बात है। और जब जागे तभी सवेरा है कहते हैं। तो शरबत में ये जरूरी नहीं है कि आप शक्कर का इस्तेमाल करें, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। वो वहाँ पर आप जी जो जैसे कहते हैं शहद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। मजे की बात, तो नींबू का शरबत बनाते हैं। आज हमने रात में गोंद कतीरा को भिगो दिया, उसके एक दो पीस, दो तीन पीस लेने होते हैं और ढेर सारा पानी डालते हैं। जैसे एक ग्लास पानी में, बड़ा ग्लास जो होता है उसमें दो तीन टुकड़े डालते हैं और भिगो के रख देते हैं, वो पूरा फूल जाता है और जेली की तरह हो जाता है। और इसको क्या करना है, एक तरफ जैसे भी आप शरबत बनाते हैं नींबू ऐड करते हैं, उसमें पुदीने की पत्ती ऐड करते हैं, आपको थोड़ा सा खट्टा चाहिए तो आप उसमें जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, काला नमक डाल दीजिए, उसमें आपने शहद डाल दिया और उसके बाद थोड़ी सी बर्फ डालनी है, आइस क्यूब डालने हैं और फिर गोंद कतीरा एक से दो चम्मच लेना है और पूरी तरह से मिला देना है और फिर क्या वाव गटा गट पी जाना है। और हाँ, इसमें अगर और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सब्जा सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। उसको सो करने के लिए आपको 3-4 से 5 घंटे लगते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और गोंद कतीरा के साथ सब्जा सीड्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो फ्रेंड वाला है। जैसे दो बढ़िया वाले फ्रेंड होते हैं, पक्की वाली दोस्ती, तो कई सारी चीजें उससे भी मिलाकर बनती हैं। तो जब आप मार्केट जाएंगे गोंद कतीरा लेने के लिए तो सब्जा सीड्स भी थोड़ी सी ले लेंगे तो भी और भी अच्छी डिशेस बन जाएंगी। और अब बारी है जब नींबू की बात कर देते हैं ना, तो निमोड़ा निमोड़ा गाना बिना सुने रहा नहीं जाता। सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: दोस्तों सच में आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शत्रुपा, जिसमें आज हम

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 12:32 और 50 सेकंड हो चले हैं प्रोग्राम शत्रु पर, जिसमें शालिनी लेकर आई है आज गोंद कतीरा की ढेर सारी बातें और अलग अलग डिशेस। तो अभी शरबत की बात करिए, और शरबत तो घटाघट पीते चले जाते हैं, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती ना बनाने में मेहनत लगती है। अगर अब इस शरबत को थोड़ा सा और कि कुछ बीच बीच में चीज़ें खाने के लिए भी आ जाएं और बढ़िया सा टेस्ट भी और बढ़ जाए, उसकी बात करने वाले हैं। इसके लिए आपको ना सब्जा सीड्स रखनी है अपने पास में, साथ ही साथ वाटर मेलन यानी कि तरबूज के छोटे छोटे से टुकड़े करके रख लेने हैं, थोड़ा सा दूध लेना है, और अगर आप शुगर ऐड करना चाहते हैं तो रख कर सकते हैं, नहीं तो आप उसकी जगह शहद गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़े से छोटे छोटे से टुकड़े बर्फ के भी आपके पास भी होने चाहिए। करना क्या है आपको, रात में भीगा हुआ जो गोंद कतीरा है वो मॉर्निंग में आपको 2-4 चम्मच एक बाउल में रखना है। छोटे छोटे से जो टुकड़े आपने तरबूज के काट के रखे हैं वाटरमेलन के, वो आपको उसमें मिलाने हैं। सब्जा सीड्स को उसी में ऐड करना है, दूध थोड़ा सा डालना है, और थोड़ा सा आइस क्यूब जो छोटे छोटे से टुकड़े हैं बर्फ के वो भी आपको डालने हैं, और अगर आप शुगर ऐड करना चाहते हैं नहीं तो शहद डाल दीजिए और उसे अच्छे से मिला लीजिए। जस्ट लाइक पीना भी है और कुछ बीच बीच में खाना भी है, तो ये बहुत सी अच्छा वाला टेस्ट बन जाएगा। और आप इसे जो भी नाम देना चाहते हैं, कुछ भी नाम, जो डिशेस होती है ना कुछ स्पेशल, कहीं कुछ कहा जाता है कहीं कुछ कहा जाता है, प्यार मोहब्बत कुछ भी नाम आप इसे दे सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों गोंद कतीरा हो या बेल का शरबत हो या ठंडी ठंडी लस्सी, भारतीय खान पान में जो मिठास और ताजगी है ना वो हमेशा ही खास रही है, और इसी मिठास के साथ ये अगला गाना आप सबके लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।

12:46 का वक्त हो चला है। प्रोग्राम शत्रुपा में आप शालिनी के साथ हैं, ठंडी ठंडी वाली बातें लेकर। आज हम हैं आपके साथ, गूंद कतीरा देसी ठंडक का खजाना है या सिर्फ आजकल ट्रेंड, तो आप बताइए। ये तो सच बात है ना, देसी ठंडक का खजाना है ना। कहते हैं कि जब सूरज आग बरसा रहा हो और शरीर जो हमारा शरीर है वो थक कर जवाब देने लगे, तब कई घरों में गोंद कतीरा देसी ठंडक बनकर सामने आता है। जी, गर्मी में डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की जो कमी होती है, जो कि होना आम बात है, ऐसे में बहुत सारे लोग किसी डायरेक्ट शरबत में, दूध में, लस्सी में, दही में मिलाकर खाते हैं, ठंडाई में भी मिलाकर, मतलब खाते क्या पीते हैं, और फलूदा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको पता है, बिना ऑयल का, बिना गैस का जो रेसिपी कई सारी बनाई बताई है ना अभी, जैसे हमने शरबत बताया है आपको, वाटरमेलन वाला शरबत और उसके टुकड़े डालकर बताए हैं तैयार करने के लिए। अब आप फ्रूट सलाद में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने फ्रूट्स आप इकट्ठा कर सकते हैं, जो खाते हैं आप, रेगुलर लेते हैं, सारे ले लीजिए। हाँ, उसमें सब्जा सीड्स का कॉम्बिनेशन बहुत

अच्छा रहेगा। उसको भी सोख करके रखिए और उसको भी ऐड करिए। और ये गोंद का तीरा भीगा हुआ 2-3 चम्मच आप उसमें मिलाइए और अच्छे से पूरा मिक्स कर दीजिए और उसके बाद खाइए। देखिए क्या मजा है। जी हाँ, टेस्ट कहते हैं ना कि दोगुना हो जाता है, तो सच में। और पार्टी अगर करनी है आपको तो इस तरह वाली भी करिए। जरूरी नहीं है पार्टी में बहुत स्पाइसी और अलग अलग चीजें हों, इसकी भी पार्टी की जा सकती है, खासकर गर्मी में जहां पर बस ठंडक का एहसास और हेल्थ का ध्यान हो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: दोस्तों 12:53 और 33 सेकंड हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी अब प्रोग्राम शत्रुपा को करना होगा फाइंड अप। लेकिन चलते चलते एक प्यारी सी डिश जिसे खास हमारे फ्रेंड ने हमें कल ही टेस्ट कराई और खिलाई भी। जी हाँ, दलिया और ड्राई फ्रूट्स के साथ भी गोंद कतीरा का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, जैसे नॉर्मल आप दलिया बनाते हैं ना दूध वाली, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करिए और थोड़ा उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए और जब ठंडा हो जाए तब उसमें गोंद कतीरा 1-2 चम्मच मिला दीजिए और उसके बाद जब आप सर्व करते हैं तो भी ऊपर से थोड़ा सा डाल सकते हैं, दे सकते हैं और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर से डाल सकते हैं। तो देखिए क्या टेस्ट आएगा और मुझे लगता है कि अब सब लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और इसके बारे में और लोगों से को भी लोगों को भी बताएंगे। और इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, ये शरीर को ठंडक पहुंचाता है, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है, पेट में भी राहत मिलती है जैसे किसी को कब्ज की या जलन की शिकायत होती है, कमजोरी और जैसे कमजोरी है हमें तो एनर्जी देता है और स्किन भी हमारी ग्लो करती है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान देने वाली बात है, बिना भिगोए इसे कभी नहीं खाना चाहिए और अगर आप डायबिटिक हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो भी डॉक्टर की सलाह लेने के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और वैसे भी कहा गया है ना, जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें और जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का जो सेवन होता है वो नुकसान ही करता है। कई लोग सोचते हैं कि देसी चीज है तो जितना खाएंगे उतना फायदा होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जरूरत से ज्यादा गोंद कतीरा खाने से पेट भारी भी लगने लगता है, गैस बनने लगती है, पाचन तंत्र जो है आपका वो खराब हो सकता है। हर देसी नुस्खा जो है ना फायदेमंद जरूर होता है लेकिन सही मात्रा में, तो मात्रा का ध्यान आपको जरूर रखना है। तो बस इसी के साथ शालिनी करती है इस प्रोग्राम से टाटा बाय बाय। नेक्स्ट प्रोग्राम ऑटो पे तेरी बात में आज हम बात करने वाले, आपने क्या चीजें अपने दादा दादी नाना नानी से संजोकर अभी भी रखी है और उसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे उनकी बात का हो, चाहे उनके कपड़े का हो, चाहे उनके संस्कार के हो, कौन सी वो चीजें हैं, आदतें हैं, तो बस बता डालिए हमें FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पे।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देशभर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने चिंता व्यक्त की कि अभी भी कुछ जनजातीय वर्गों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। यह कार्यक्रम जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के अंतर्गत देश भर में जनजातीय विकास के लिए जिम्मेदार संस्थागत प्रणालियों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें शासन सुधार, अभिसरण तंत्र और प्रौद्योगिकी आधारित सेवा वितरण शामिल है। सम्मेलन में 26 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भूमि संबंधी शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही मिलने पर सख्त एक्शन लिया जाए। आज गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खरीफ गोष्ठी के माध्यम से किसानों को बीजों की गुणवत्ता, तकनीक और कृषि के आधुनिक तरीकों के साथ ही सरकार की योजनाओं और तैयारियों से भी अवगत कराती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि चीनी, आलू, दूध, एथनॉल आदि में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को न्यूनतम स्तर पर लाने और कृषि को प्राकृतिक स्तर पर लाने के लिए खरीफ गोष्ठी लाभदायक सिद्ध होगी। श्री योगी ने कहा कि आज किसान अपने खेत में 3-3 फसलें ले रहा है। सरकार ने MSP बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने में सहयोग किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: दोस्तों 1:04 हो चले हैं, प्रोग्राम ओठों पे तेरी बात की हो चुकी है शुरुआत, जिसमें आपकी बात हमारे ओठों पर होगी और सबके कानों तक पहुंचेगी। तो बस आज आपको बताना है कि आपने अपने पूर्वजों से क्या चीज ऐसी ली है जो आज भी संजो कर रखा है। जी हाँ, वो कुछ भी हो सकता है, उनके पुराने स्टाइल के कपड़े हो सकते हैं, उनकी बातें हो सकती, संस्कार तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही रहते हैं। कोई ऐसा इलाज, कोई ऐसे देसी नुस्खा भी हो सकता है, क्या है वो आप हमें बता डालिए। हमें मेल करिए FM Rainbow, मेल आईडी हमारी कौन सी है, FM आकाशवाणी लखनऊ@gmail.com। जी हाँ, बस इसी पर आपको मेल करना है और जुड़ जाना है हमारे साथ, यानी कि 100.7 FM रेनबो से।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मुश्तरका डिवीजनल खरीफ पैदावारी सेमिनार 2026 का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-आला ने कहा कि खरीफ सेमिनार के जरिए हुकूमत किसानों को बीज के मेयार, टेक्नोलॉजी और जदीद ज़रई तरीकों के साथ साथ हुकूमती मंसूबों और तैयारियों से आगाह करती है। वज़ीर-आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश अनाज पैदा करने वाली सबसे बड़ी रियासत है। उन्होंने मजीद कहा कि उत्तर प्रदेश चीनी, आलू, दूध और एथेनॉल पैदावार में पहले नंबर पर है। वज़ीर-आला ने कहा कि खरीफ सेमिनार कीमियाई खादों और कीड़े मार अदवियात को कम से कम करने और ज़रात को मजीद कुदरती सतह पर बहाल करने में फ़ायदेमंद साबित होगा। अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इलाके में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तामीरशुदा फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। इससे कबल कल वज़ीर-आला ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 270 तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर-आला ने कहा कि डबल इंजन हुकूमत ने तरक्की, तहफ्फुज़ और रोजगार का नया माहौल बनाया है। जनाब योगी ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि स्कीमों का फायदा आखिरी शख्स तक पहुंचे।
1: मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं।
0: वज़ीर-आला ने कल ही गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से सियाहत की तरक्की और खूबसूरती के मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबका हुकूमतों ने झीलों और तालाबों को नजरअंदाज किया, लेकिन डबल इंजन हुकूमत उनकी हिफाजत कर रही है।

0: ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की एक अहम मीटिंग 4 और 5 जून को वाराणसी में होगी। इस बैनुल अक्वामी इवेंट में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहदा अरब अमीरात समेत 11 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मुलाकात के दौरान सकाफत, विरसे के तहफ़ और बाहमी सकाफती तआवुन से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ब्रिक्स के मंदूबीन के काशी दौरे को यादगार बनाने के लिए सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। वाराणसी के रीजनल कल्चरल ऑफिसर डॉक्टर राम नरेश पाल ने बताया कि मंदूबीन की आमद पर हवाई अड्डे से लेकर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फोक डांस पेश किया जाएगा। हुकूमत ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जरिए अख्तियार करदा ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक मामलात की जांच के लिए एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सरबराही कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरमैन एस राधा चौहान करेंगी। कमेटी एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पर्सनल और ट्रेनिंग महकमे को पेश करेगी। इस दरमियान बोर्ड ने कल दर्जा 12 के तलबा के लिए स्कैन शुदा जवाबी पर्चों में पाई जाने वाली गलतियों की तस्दीक और जवाबात का दोबारा जायजा लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सहूलत सिर्फ उन तलबा के लिए दस्तियाब होगी जिन्होंने अपनी जाँच शुदा जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपियां हासिल कर ली हैं। इस दरमियान इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सीनियर अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। जनाब सीताराम इससे कबल वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। CBSE सेक्रेटरी का भी तबादला कर दिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने गुज़िश्ता 12 बरसों में गैर मामूली तब्दीली देखी है जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूल पर कारफरमा है। आज हम ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर एक खसूसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
1: साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आज का दिन कुछ भी नहीं बदला, बल्कि समय की रफ्तार के साथ हमारा रिश्ता और गहरा हो रहा है। बस इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए और सुनते रहिए हर रोज सुबह 6 से रात 12 बजे तक FM रेनबो।

दोस्तों 1:22 और 36 सेकंड हो चले हैं और ढेर सारी ईमेल्स आ चुके हैं हमारी मेल आईडी पर। और मास्टर राधे श्याम शाक्या जी का कासगंज से आया है और इन्होंने लिखा है कि हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि घर पर कोई भी आए तो उसे प्रेम पूर्वक पानी पिलाएं और खाना खिलाएं, और उनकी ये जो परंपरा है उसका हम पालन करते आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। हमने कहा था ना दोस्तों, संस्कार जो है ना वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं पूर्वजों के ही ढेर सारे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं ये संस्कार। और मोनू सेठ का मैसेज आया है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है।

और वैसे अगर बात करें तो उन्होंने हमें व्यापार करना सिखाया है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये अपने व्यापार में खुद ही सेठ है और खुद ही नौकर है। ये भी बहुत अच्छी बात है और जिसे हम बिल्कुल भुला नहीं सकते हैं कभी। और ये भी है, उनका जो ये ऋण है हमारे ऊपर, इसे कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। हाँ, उसे संजो कर जरूर रख सकते हैं ताकि उन्हें हमेशा याद रखा जाए। और सुल्तान रजा का हमारे पास में ईमेल आया है और इन्होंने हमें कुदब खाना सब्जी मंडी बरेली से लिखा है और ढेर सारे नाम लिखे हैं। आज का विषय ये नहीं सुन पाए हैं, तो भाई आज का विषय जो है वो यही है कि आपने अपने पूर्वजों से, अपने बड़े बुजुर्गों से क्या ऐसी चीज ली है जो आज भी संजो कर रखी है और आगे भी लेकर जाने वाले हैं। उन्हीं उनकी कोई खास बात हमसे जरूर बताएं। और अब ये बारी है इस प्यारे से ट्रैक की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: सुनो ना,
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है, हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
4: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

1:35 का वक्त, प्रोग्राम ऑटो पे तेरी बात में शालिनी है आपके साथ, आपकी ईमेल्स को लेकर। और श्वेता भट्ट का मेल आया है हरिद्वार से, लॉट्स ऑफ लव आकाशवाणी लखनऊ इन्होंने भेजा है, और हमें मिल गया है आपका भेजा हुआ बहुत ढेर सारा प्यार। और इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट टाइम मेल कर रही हूँ, अगर आप हमसे जुड़ी हैं और हमें इस वक्त सुन रही हैं, तो जो हम जिस विषय की बात कर रहे हैं प्रोग्राम ऑटो पे तेरी बात में लिया है, उसके बारे में भी थोड़ा सा कुछ लिखकर भेजिए। और शिव पूजन जी का मेल आ चुका है, और इन्होंने सनी गांव लखीमपुर खीरी से लिखकर भेजा है, और ये लिख रहे हैं कि मैं तो जरूरतमंद की मदद करता हूँ, सभी को दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे हिसाब से तो ये सब संस्कार खुद ही हैं हमारे बड़े बुजुर्गों के। और आप लोगों को क्या लगता है? अच्छा, ये जो मेल है वो आप शायद कहीं आप कुछ और भी सोच रहे हैं। सुधाकर जाधव जी का भी मेल आ गया है, और हमारे बुजुर्गों ने हमसे बड़े आदमी का कैसे सम्मान करना चाहिए, और अपने घर में आए हुए उनका कैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, ये सब सिखाया है। और हमारे हिंदुस्तान की तो एक ही पहचान है कि मेहमान अतिथि देवो भव, बिल्कुल सही बात है। और जो सुधाकर जाधव जी हमें कालीगांव जाफराबाद से लिख रहे हैं, और साथ ही साथ इनकी पूरी फैमिली भी है, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद, सानवी, कल्पना, ये सभी लोग एक साथ मेल कर रहे हैं। और महेंद्र दीपेन जी का भी मेल आ चुका है, और ये हमें राजस्थान के नागौर जिले के रुणगांव से ये हमें मेल करते हैं और हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। और इन्होंने लिखा है कि अच्छा, आज का विषय वाकई दिल को छू लेने वाला है, थैंक यू। और ये लिखते हैं कि हमारी राजस्थान की माटी में हमें बस यही सिखाया है कि अतिथि स्वयं भगवान का रूप होते हैं, और हमारे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा यही कहते आए हैं कि घर पर घर आए का आदर ही सर्वोपरि है, चाहे हम खुद भूखे सो जाएं, लेकिन द्वार पर आए किसी भी प्राणी को खाली हाथ या भूखा नहीं जाने दें। और यही संस्कार हमारी

हमें विरासत से मिले हैं कि हम मीठा बोले और किसी के लिए भी अपने मन में कड़वाहट न लाएं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इन पारंपरिक मूल्यों को याद करना वाकई सुकून देता है। भाई जब कहते हैं ना कि हम अपनी पकड़ को, अपनी जड़ों को याद करते हैं ना, तो वहां सुकून मिलता ही मिलता है। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद और भी ईमेल कुल करेंगे शामिल। और वास्तव में अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आज की बात अच्छी लग रही है, तो थोड़ा सा कष्ट करें, मेल करें fmakashwani@gmail.com पे अपनी भी बात, क्या है आपके पास खास अपने बड़े बुजुर्गों का।

0: थैंक यू श्वेता, आपने हमें सुना और हमें आपने दोबारा मेल किया। हमारी जनगणना
1: हमारा विकास। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये जो बातें हैं ये दिल से निकली हुई हैं, जिन्हें हम दिल से, जिनका हम आदर करते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, तो दोस्तों पता है उनके लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। शब्दों को खोजना और उन शब्दों का मिलान करना कि एक से करके कैसे सेंटेंस अच्छा बनेगा हम समझ सकते हैं, और हमारे बुजुर्गों ने ही तो हमें मीठा बोलना सिखाया है ना। हमारे बुजुर्गों की ही सिखाई चीजें हैं जिनसे हमारी पहचान होती है औरों से थोड़ा हट कर। तो बहुत ही गहराई में जाने वाली बात है दोस्तों, ढेर सारे

लोगों के और भी मेल आए हैं, और अगर वो इस वक्त हमें सुन रहे हैं और मेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा दुख होता है कि भाई प्रोग्राम कुछ और चल रहा है, बात किसी चीज़ की और हो रही है आपसे। तो अगर आप हमसे जुड़े हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, चीज़ें अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमारे इस विषय से भी जुड़ सकते हैं और इस विषय से रिलेटेड बातें भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं कि आपके मन के अंदर क्या है, आप क्या चाहते हैं। और हम भी कभी बुजुर्ग होंगे ना, बड़े बनेंगे, तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या ऐसा दे के जा रहे हैं या दे के जाएंगे कि जब उनसे ये सवाल पूछा जाएगा तो वो क्या आंसर देंगे। ये बहुत ही गहराई से सोचने वाली बात है दोस्तों। चलिए, बहुत ज्यादा सीरियस होना नहीं है, ये प्यारा सा ट्रैक आप सब के लिए।

0: 1:52 और ये देखिए 53 मिनट हो चले हैं और ये वक्त कहता है कि शालिनी प्रोग्राम को अब यहीं पर करना होगा वाइंड अप, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम हॉट मेल में मेल आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी का मेल बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। 2 बजे से जो मेल करेगा उन्हीं का ही शामिल होगा और अच्छे से गाने की फरमाइश करें हमेशा की तरह जो हम कहते आए हैं, और साथ ही साथ धैर्य पूर्वक अपने मेल की बारी आने का इंतजार करें, बार बार ईमेल ना करें। और मेल कहाँ करें? fmakashwanilakhnow@gmail.com पर, और बने रहें शालिनी के साथ।
1: देख राजा, ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।

0: The IMD has forecast hot and humid weather over parts of the northeastern region and Odisha, Konkan, Goa and sub-Himalayan West Bengal today. The Met Department has also predicted thunder squall conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Telangana for today. In Indonesia Open Badminton, HS Pranoy will face Ireland's Nat Nguyen and Ayush Shetty will meet China's Wang Hongyang in the men's singles this afternoon. In men's doubles, pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty suffered a setback after losing to Malaysia's Kai Shing Tung and Aaron Thai by 6-11 in their match today. Benchmark domestic equity indices were trading over 0.5% lower in the afternoon trade today amid geopolitical jitters. The Sensex lost 524 points to 74,125, while the Nifty fell 147 points to 23,336 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. 21 people killed in a massive fire at a hotel in Delhi's Malviya Nagar. Prime Minister Narendra Modi expresses grief, announces an ex gratia of 2 lakh rupees to next of kin of each deceased. Trinamool Congress faces turmoil as expelled MLA Ritabratha Banerjee claims support of nearly 60 MLAs in West Bengal Assembly. Supreme Court forms high-powered expert panel to re-examine Aravali definition. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
4: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से

0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
1: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीप अंसाहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि यह लेख बताता है

0: है कि कैसे उद्यमिता और मूल्य वर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI के मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में

0: भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: है राजकुमार टूटी प्रमोद पुष्पेंद्र के साथ में फ्रांस हिसार से मेल कर रहे हैं। पंकज शर्मा का मेल आ चुका है और इन्होंने ये इनके साथ जगमोहन प्रजापति प्रतिभा और इशप्रीत जी भी हैं और इन्होंने कर्नल से हमें मेल किया हुआ है। हीरामणि वर्मा का भी मेल है। पारसमणि पुष्पेंद्र नोखेलाल के साथ भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें मेल कर रहे हैं। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब सावेर महराज का लक्सर हरिद्वार से मेल आया है और सुनील सूर्या आलमबाग लखनऊ से मेल कर रहे हैं। और अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपको फिल्म का नाम नहीं याद है तो कोई बात नहीं। राजू मिगलानी का भी मेल आ चुका है। बबीता सुभाष योगी डब्बू बब्बू के साथ में हांसी हरियाणा से इन्होंने मेल किया हुआ है। कमलकांत गुप्ता का भी मेल समझील नवापारा से आया है। श्रद्धा और अदिति राधे दीपक अंकुर राघव दीपा रिमझिम के साथ में बिट्टू गगनेजा पूनम सुरेश विशाल प्रिया दिशानी निमित के साथ में मेल जलालाबाद से आया हुआ है। उदय भांजी का भी मेल आ चुका है। जय हिंद दीक्षा प्रतीक्षा विमलेश दिव्यांश के साथ में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ये हमें मेल कर रहे हैं। और सदाशिव का भी मेल आया हुआ है और इन्होंने जिला सीतापुर से हमें मेल किया है। और गाने में भी किसी भी गाने में इनका नाम शामिल करें। जोन रिक्रोस्टो रोजी पर विलस का जनकपुरी सहारनपुर से मेल आ चुका है। और ये पिंकू सोनी टिकायत नगर से मेल आया हुआ है। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक के, सुनिए और इंजॉय कीजिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

पता है हॉटमेल प्रोग्राम की क्या खासियत है? हर मूड के गाने इस प्रोग्राम में एक साथ आ जाते हैं, और कुछ ऐसे भी गाने जो कभी मतलब सुने ही ना हो, फिर भी आपकी पसंद होती हैं तो प्ले होते हैं तो समझ में आता है, अरे वाह क्या गाना था। नवी हसन अब्बासी, शहनाज, नावेद हसन, सुहेल रसीद, अमन यसफ का दरवाज़ा एटा से मेल आ चुका है। आफताब अंसारी का भी मेल है रियाज मोहम्मद कैफ अनवर लुबना आलिया के साथ में गंग डुडवारा से है। और किसका मेल आया हुआ है? ये मेल है अजीज अहमद जी का है, और ये सीतापुर से हमें लिख रहे हैं, और बड़ा सा मेल लिखा है। बिल्कुल, हमने आपका मेल पढ़ लिया है। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम सुंदरम का मेल ओखला संगम विहार दिल्ली से आ चुका है। और हनुमन सिंधे, संगीता ऋषिकेश और वसुंधरा का मेल सांगली से आ चुका है। और विजय का भी मेल कहाँ से आया है? मोहबिया, कविता, सपना, शिवी, सलोनी, ईशु, बाबा, पेंटर बाबू और रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से ये हमें मेल कर रहे हैं। तेज बहादुर यादव, ममता, रोनित बेबी का मेल, वोनिका का मेल आया हुआ है, और ये हमें कहाँ से मेल रहा है? बरेली से आप हमें मेल कर रहे हैं भाई, इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, तभी तो जब आप इंतजार करते हैं हम सभी का मेल जरूर शामिल करते हैं। और राधे कुमार विद्यार्थी का भी मेल सविता, कुमकुम, कुमार साक्षी और फलना झा के साथ में बिहार से मेल आया हुआ है। और मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून का दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मेल आया है। संजय डिंगिया जी का नमन अपार के साथ में बागपत उत्तर प्रदेश से मेल आया हुआ है। तुलसी मस्कीन जी का भी मेल आ चुका है। वीना चंचीकर, राहुल, रचिता, केशु खुराना के साथ में ये हमें मेल कर रहे हैं। ओम बगारिया जी का भी मेल आया है। फजिलका पंजाब से ये क्रियांश के साथ में ये हमें मेल कर रहे हैं। रजत बेबी मॉमी का साथ में है, और दीपेश का मेल हमने शामिल कर लिया है। मनोज बंसल का भी मेल हांसी हरियाणा से आया हुआ है, और आकाश कुमार का मेल आया हुआ कहाँ से है? ये बाराबंकी से हमें मेल कर रहे हैं। इनका मेल बहुत बड़ा है और हम उसे बहुत आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मेल पढ़ने लग गया ना तो बाकी के ईमेल्स हम शामिल नहीं कर पाएंगे। जावेद अख्तर जी का रेशमी नगर, मुबारकपुर, आजमगढ़ से ये हमें मेल कर रहे हैं। बेगम रुखसार, रकीबा, शाहीन, तुबा, आफरीन, समीम अख्तर के साथ में ये हमें मेल कर रहे हैं, और कोशिश है सभी के मेल सब तक पहुंच जाए। मेहर अरोरा, ममता कीर्ति, भूमिका का भी मेल पदमपुर जिला श्री गंगा नगर राजस्थान से ये हमें मेल कर रहे हैं। शाहरुख नूर अंसारी जी, आपका मेल शामिल कर लिया गया है, फिर भी आप बार बार हमें मेल कर रहे हैं, ऐसा ना किया करें।

2:18 हो चले हैं और ईमेल्स ढेर सारे आ चुके हैं। सुधाकर जाधव, राजे जाधव जी का मेल, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद, सानवी, कल्पना देशमुख के साथ में जाफराबाद से मेल आया हुआ है और श्वेता भच्ची का भी मेल आया है। इस प्रोग्राम में भी आपने बहुत अच्छा जवाब प्रोग्राम मोटू पे तेरी बात में दिया हुआ था। और जो सुधाकर राजे जाधव जी, आप बस करिए मेल करना, आपने अब तक न जाने कितने ईमेल्स कर दिए हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आपने अगर 2 बजे भी मेल किया है तो तुरंत ही शामिल कर लिया जाए। सिक्वेंस से जो भी ईमेल्स आते रहते हैं उन्हें ही हम देखते हैं। और अब तक आपने पता है कितनी बार मेल किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इससे कुछ नहीं होता है। जब कहते हैं ना कि आप हमारी जगह आकर बैठेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे मेल शामिल होता है कि नहीं। और मुझे यानी कि शालिनी को याद है कि आपका मेल जब भी हम आते हैं जरूर शामिल होता है, आपके पूरे नाम भी लिए जाते हैं। और किसका मेल आया, नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार का मेल महाराष्ट्र से आ चुका है। पंजाब से हर जिंदर चिंदा और जसवी, जस्सी, सीता और गीता का भी मेल आया है। कौशल प्रजापति जी का मेल आया है, यशोदा नगर कानपुर से ये हमें मेल कर रहे हैं। और अब तो क्या ही गाने की किसकी फरमाइश शामिल की जाए, क्योंकि इतने ढेर सारे ईमेल्स आ चुके हैं, उसमें से गाने आप तक हम पहुंचा रहे हैं, उसे आप अपना कहते हैं कि पसंदीदा प्रोग्राम बना लीजिए। और ये देखिए मेल शुभचंद्र बजाज, शाहिल और बिट्ठा का मेल मोहाली चंडीगढ़ से आ चुका है। लालगिरी जी का मेल आया है, राज कमल यादव का मेल है और पूना जी नोहाकर का मेल है, साजी मोरखे हैं और पंजाब से राम टेके हैं, गोविंद बदौरिया जी का है, अशोक कुमार का भी है, सरिता अभिजीत गाकर का मेल है, तालिब अंसारी का मेल है। और पहले ये गाना प्ले कर देते हैं, उसके बाद और भी नाम शामिल किए जाएंगे।

दुल्हन का तो नहीं पता, लेकिन इस प्रोग्राम को जाना होगा। हॉटमेल का समय हो चुका है वाइंड अप करने का। और बता दें कि कीर्तनपुरी गोस्वामी जी का मेल आया है और अनिल कुमार गोहाकर का है, गुरमीत सिंह है और राधे श्याम है और अकरम हुसैन जी का मेल है, मोहम्मद मूसा सेख जी हैं, वकील अहमद हैं और किसका मेल आया है, भाई सभी के मेल, आफ्ताब अंसारी, अब्दुल गफ्तार, तनुजा का मेल है और देख लेते हैं एक बार जस्ट अगर अभी किसी के मेल आए। आकाश वर्मा का मेल आज आया है, दोबारा कर दिया है इन्होंने, और उदय भांजी आपका भी मेल शामिल किया गया था और सुरेश नारंग और आशा के साथ में सहारनपुर से मेल कर रहे हैं। थैंक यू हमारा मेल, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए और मेल करने के लिए, और किसी की नाराजगी हो तो उसे माफ करना। और सुनिए अब ये प्यारा सा ट्रैक। नेक्स्ट प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में भी शालिनी रहेगी आपके साथ, हमारा साथ ऐसे ही देते रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

जी हाँ दोस्तों, सिटी की म्यूजिकल हार्ट बीट यानी रेनबो कानपुर के साथ आप जुड़े हुए हैं 102.2 FM पर। और आज की जो दोपहरिया है वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि एक बार फिर आपसे बतियाने के लिए आ चुकी है आपकी रेडियो दोस्त निधि जैन। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और प्रोग्राम कौन सा है जी? म्यूजिक आर।

सचमुच दोस्तों आज के म्यूजिकार की दास्तान कुछ ऐसे ही है। समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें और कैसे कहें, बट क्या है दोस्तों की बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आकाशवाणी का तो अधोवाक्य भी यही है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और आज का सब्जेक्ट कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों के हित की बात है, उनके मानसिक सुख शांति की बात है, और शायद कुछ लोगों को ये बात समझ में भी आ जाए। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं बात करने वाली हूँ वर्क अकाउंटेबिलिटी एंड डबल स्टैंडर्ड्स की, यानी काम के प्रति उत्तरजीविता और कार्यस्थल पर दोहरे मापदंड की। जी हाँ, सब्जेक्ट थोड़ा सा सुनने में हैवी लग रहा है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि गाने चलने वाले हैं सुपर कूल, तो बस आप चलते चलिए हमारे साथ 102.2 FM की फ्रीक्वेंसी पर रेनबो कानपुर पर। और आज आपके साथ है आपकी दोस्त निधि जैन, तो बस चल पड़िए हमारे साथ चार कदम।

0: जी हाँ दोस्तों, मैं तो आपसे बस यही कहूँगी कि भाई चार कदम नहीं, अभी तो हमने अपने म्यूज़िक आर प्रोग्राम का सफ़र शुरू ही किया है, तो बहुत सारी बातें आपसे करनी है। और हाँ, आपका जो अपना फेवरेट प्रोग्राम है आपकी पसंद, वो भी लेकर आना है शाम 4 से 5। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमें मेल नहीं किया है या अपनी पसंद का गाना नहीं भेजा है तो हमें ज़रूर भेज दें, ताकि 4 से 5 वाले प्रोग्राम में हम आपका मनपसंद गाना आपको सुनवा पाएँ आपके नामों के साथ। और हमारी मेल एड्रेस आपको पता ही है, AIRKANSOMEDIA@gmail.com। तो मैं कर रही हूँ आपका इंतज़ार, जल्दी से अपने अच्छे अच्छे गाने, अपनी अच्छी फरमाइशें हमारे तक को पहुँचाइए और सुनते रहिए 102.2 FM पर रेनबो कानपुर। और दोस्तों, आज जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि बातें हम कुछ ऐसे विषय पर करने वाले हैं जिस पर आमतौर पर लोग बात करना नहीं पसंद करते, या फिर कह सकते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं लेकिन उन्हें नोटिस भी करते हैं बहुत सारे लोग लेकिन मानते नहीं हैं। तो बस कुछ ऐसी बात आपसे आज मैं करने वाली हूँ, और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि भाई कहीं पर भी आप जाते हैं वर्क प्लेस पर काम करने के लिए तो आपको टाइम बाउंड होना चाहिए और ड्यूटी बाउंड होना चाहिए। बिल्कुल जी, क्योंकि जिस पेशे से आप जुड़े हुए हैं उसमें फुल डिवोशन तो होना ही चाहिए, है ना। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए, पर हर जगह के अपने कुछ नियम कायदे कानून भी होते हैं, तो उन्हें फॉलो करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। और बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन दोस्तों कई बार थोड़ा सा मलाल हो जाता है कि अगर वही रूल्स रेगुलेशंस पर्सन टू पर्सन वैरी करें, है ना, यानी वही नियम कायदे कानून एक कैडर के लोगों पर तो अप्लाई हों, एक कैटेगरी के लोगों पर तो अप्लाई हों, लेकिन कुछ लोगों पर नहीं। तो समझ रहे हैं ना आप मेरा इशारा, अगर नहीं समझ रहे हैं तो पहले गाना सुन लीजिए और फिर मैं डिटेल में आकर के बात करती हूँ आपसे।
1: बाजू

0: तो इशारे।
1: जी हाँ दोस्तों, तो समझ गए ना इशारा, मतलब ये कि अगर खुद की गाड़ी आड़ी तिरछी चला चला कर टूट फूट भी जाए तो कोई बात नहीं, ये आपकी ड्राइविंग स्किल्स हैं। बट वहीं अगर गलती से ड्राइवर से गाड़ी कहीं ठुक जाए तो वो उसकी केयरलेसनेस कहलाती है ना। बस ऐसा ही कुछ हो रहा है आज लगभग हर जगह, और इसे ही हम कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। जहाँ पर जूनियर से थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो ब्लंडर, या फिर पनिशमेंट के तौर पर उसके तुरंत उसके खिलाफ हम एक्शन ले लेते हैं, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने एटीट्यूड से ही उसे समझा देते हैं कि भाई उसने गलती नहीं क्राइम कर दिया है। और

उसकी केयरलेसनेस कहलाती है ना। बस ऐसा ही कुछ हो रहा है आज लगभग हर जगह, और इसे ही हम कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। जहाँ पर जूनियर से थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो ब्लंडर, या फिर पनिशमेंट के तौर पर उसके तुरंत उसके खिलाफ हम एक्शन ले लेते हैं, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने एटीट्यूड से ही उसे समझा देते हैं कि भाई उसने गलती नहीं क्राइम कर दिया है। और वहीं अगर बॉस से या फिर आपकी इक्वल पोस्ट वाला जो कलीग है उससे कोई मिस्टेक हो जाए तो आजकल बड़े खूबसूरत से एडजेक्टिव्स चल पड़े हैं, जैसे उसको हम कह देंगे लर्निंग कर्व। जी हाँ, इस तरीके के एडजेक्टिव्स लगा करके बात वहीं की वहीं ख़त्म। यानी कि क्या कहें कि भाई उसकी गलती पर पर्दा, मगर मेरी खता का सरेआम तमाशा है। ये हुकूमत की कुर्सी है जनाब, यहाँ न्याय की अलग ही परिभाषा है। तो बस इसी परिभाषा में आप झूलते रहिए और सुनते रहिए हमारा म्यूजिकल चैनल रेनबो कानपुर।

जी हाँ दोस्तों, इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं सिटी के म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो कानपुर 102.2 एफएम पर अपनी दोस्त निधि के साथ। बड़े काम की बातें हैं इस गाने में, ध्यान से सुनिएगा।

जी हाँ दोस्तों, भले ही आप इस गाने पे खूब ठुमक लिए हो, मगर इस गाने में कड़वी मगर सच्ची बात को बड़े ही सार्कास्टिक वे में खूबसूरती के साथ कह दिया गया है। और दोस्तों, यही तो एक गीतकार की खूबी है और लेखक की खूबी है कि वो बड़ी से बड़ी बात को भी बहुत ही सलीके से, खूबसूरत अंदाज में पेश कर देता है। बहरहाल दोस्तों, आज के म्यूज़िक आर प्रोग्राम में बात हो रही है वर्क अकाउंटेबिलिटी एंड डबल स्टैंडर्ड्स की। तो आपके इस बारे में क्या ख्याल आते हैं, क्या राय है, और क्या आपको भी लाइफ में कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी KARKANSOMEDIA@gmail.com पर। तो बस दोस्तों, सब्जेक्ट आज का कुछ ऐसा ही है, लेकिन बातें तो बढ़िया बढ़िया चल रही हैं और गाने भी बढ़िया चल रहे हैं आपके इसी फेवरेट चैनल यानी 102.2 FM पर। और हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिएगा हमारे साथ।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
3: जी हाँ दोस्तों, अगर अभी भी आप दोपहर में अलसाए पड़े हुए हैं तो मुर्गे ने बांग दे दी है, आप उठ जाइए अभी। कब

जी हाँ दोस्तों, अगर अगली बार आपके बॉस या सीनियर भी आपके साथ कुछ इसी तरीके का पार्शियल बिहेवियर करें या फिर जिसको हम कहते हैं ना पक्षपातपूर्ण व्यवहार करें, तो आप भी अपने दिल को बस थोड़ा सा पैट करके ऐसे ही कहिएगा हल्के से, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, और बस देखिएगा सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और सब कुछ बहुत रिलैक्सिंग लगेगा और आप भी अपने कामों को पूरे मनोयोग से कर पाएंगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, है ना। लेकिन ये बात ज़रूर है दोस्तों कि एक सवाल हमें अक्सर ही नॉक करता रहता है कि भाई जब हम किसी ऑफिस के एंट्रेंस पर जाते हैं या फिर आपने देखा होगा कई बार रूल्स बुक में भी लिखा होता है कि वी आर वन फैमिली, है ना। और सच बात है, बड़ा अच्छा लगता है जब लिखा होता है हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन उसी फैमिली के एक सदस्य से हर काम की अकाउंटेबिलिटी और वो भी विद फुल परफेक्शन, और दूसरा अपने कामों की जिम्मेदारी भी कई बार अपने जूनियर पर सौंप करके नदारत है, उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, है ना। लेकिन हाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि हमेशा ही ऐसा नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि कोई सीनियर इसे नोटिस नहीं कर रहा है या सारे के सारे ही जो बॉसेस हैं वो खफा हो जाए, कि सब जगह ऐसा होता है, सब जगह ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग अभी भी बहुत अच्छे हैं हमारी सोसाइटी में जो हर बात को समझते हैं, लेकिन बस क्या है दोस्तों कि समटाइम्स कि जो इक्वल डेजिग्नेशन न रखते हैं उनके साथ के जो कलीग्स हैं, तो कई बार ये पोस्ट उनके सामने आती है या फिर कह सकते हैं कि रिश्तों की मर्यादा उनके सामने आ जाती है। तो बस ये तो हमें देखना है कि हम कितने ईमानदार हैं, फेयर हैं अपने साथ और अपने साथ काम करने वालों के साथ, है ना। बहरहाल ऐसे ही बातें सुनते रहिए म्यूजिक आर्ट प्रोग्राम में, और इसके बाद आपकी पसंद का सफ़र हम शुरू करेंगे शाम 4 से 5।

जी हाँ भाई, दोस्तों दुनिया में जीना है तो काम तो करना ही पड़ेगा और बॉस को सलाम भी करना पड़ेगा। आखिरकार कुर्सी की वैल्यू तो होनी चाहिए। और देखिए ये ऑफिस एटिकेट्स भी हैं, है ना, क्योंकि जो उस पोस्ट तक पहुंचा है उसको ज़रूर ही हमें सम्मान देना है और वो उस सम्मान का अधिकारी भी है ना। लेकिन ये भी बात है कि कुछ लोग आपके एटिकेट्स को या फिर आपकी जो रिस्पेक्ट है उसको फ्लैटरी का नाम दे देते हैं। अब ये क्या किया जाए, ये तो हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका आउटलुक है। लेकिन हाँ, हमें अपना काम हमेशा ही फुल डिवोशन के साथ करना है। वो बात अलग है कि आज के टाइम में कहा जाता है ऐसा कि फ्लैटरी इज़ अ शॉर्टकट टू अचीव सक्सेस। कहीं तक सही है, यानी कि फ्लैटर्स को जल्दी प्रमोशन और डेडिकेटेड टैलेंटेड बट स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को डिमोशन। कई जगह ऐसा है ना, और उनको कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये सब कुछ हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या चूज़ करते हैं, फ्लैटरी या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन कुल मिलाकर के हम इतना ज़रूर कहेंगे कि भाई अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, क्योंकि वर्क इज वर्शिप और ईमानदारी का फल मिलता ज़रूर है। फिलहाल एंजॉय करिए एक बड़ा ही प्यारा जी हुजूरी गाना।

जी बिल्कुल, ये मोहब्बत है आपकी अपने काम के प्रति, जिसे आप बहुत ईमानदारी से करते हैं, और इसे जी हुजूरी का नाम बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। हालांकि हकीकत है दोस्तों ये कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था जी हुजूरी से नहीं चलती, बल्कि उसमें काम कर रहे लोगों की काबिलियत, टैलेंट और उनकी मेहनत से ही चलती है। लेकिन दोस्तों एक बात भी सच है कि टैलेंट तब दम तोड़ देता है जब उसका आत्मसम्मान उसकी पोस्ट से छोटा हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि हाई पोस्ट पर बैठे हुए लोगों के लिए नियम काफ़ी लचीले हो जाते हैं, जबकि लोअर ग्रेड पर काम करने वालों के लिए उन्हीं नियमों को बहुत ही सख्ती के साथ लागू किया जाता है। और आज इसी टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। हालांकि जैसा मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता, और अगर आप ऐसा नहीं करते, इक्वली जितने भी नियम कानून हैं उनको सब पर लागू करते हैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, देन यू मस्ट पैट योर सेल्फ। जी हाँ, शाबाशी दीजिए अपने आप को, क्योंकि आप उन चंद गिने चुने लोगों में से हैं, ईमानदार लोगों में से हैं, जो आज भी अपनी हर डीलिंग में बेहद ही फेयर हैं। तो बस दोस्तों ऐसे ही सुनते रहिए, और हाँ, लाइफ को इतना सीरियसली लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस काम करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और आपकी मुस्कुराने की वजह हम आपके लिए भेज देते हैं।

जी हाँ दोस्तों, हमारे मुस्कुराने की वजह आप लोग हैं जो कि हर रोज़ हमसे जुड़ते हैं और हर प्रोग्राम में अपनी आप शिरकत देते हैं और अपनी प्रेजेंस हमारे साथ बनाते हैं। और अगला जो प्रोग्राम है उसमें आप डेफिनेटली बनाने वाले हैं, क्योंकि बस 5 मिनट बाद ही आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, आपकी पसंद। तो जिन्होंने अभी भी हमें अपने मेल्स नहीं भेजे और अपने खूबसूरत से गानों की फरमाइश नहीं भेजी है, भेज दीजिए जल्दी से। और हमारा पता आपको मालूम है, AIRKANSOMEDIA@gmail.com। और बस दोस्तों, इस गाने की तरह हम भी आपसे ये कहेंगे कि देखिए, जीने का जो असली मज़ा है वो तभी है जबकि ज़िंदगी को फेयरनेस के साथ जिया जाए, है ना। तभी काम करने का असली मज़ा भी आता है जब सबके लिए नियम कायदे कानून जो हैं वो एक से हों, और तभी वो संस्थान भी ग्रो करता है ना। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब काम अंडर प्रेशर होता है तो समटाइम्स आप जानते हैं कि टेक्निकली आपने काम करेक्ट किया है, मगर कई जगह ये फील होता है कि वो काम जो है बिल्कुल रोबोट की तरह हो गया है, जो कि एरर फ्री तो हो सकता है बट समटाइम्स इसमें इमोशंस मिसिंग होते हैं, सोल मिसिंग होती है। आज ज़रूरत है इन सब बातों को मानवीय दृष्टिकोण से देखने के। फिलहाल दोस्तों, अभी मुझे ज़रूरत लग रही है एक और गाने की, और बस यही है आज के प्रोग्राम का आखिरी गाना। आप सुनते रहिए और ट्यून करते रहिए हर रोज़ की तरह देश की सुरीली धड़कन, जिसे आप हर रोज़ ट्यून करते हैं 102.2 FM पर। और हम भी आपसे कहेंगे कि कुछ भी हो, लाइफ में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और रुकना बिल्कुल भी नहीं है, बस चलते जाना है, अपने कामों को करते जाना है पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ। क्योंकि ज़िंदगी में दोस्तों, अगर हम रुक गए तो ज़िंदगी थम जाएगी, और ज़िंदगी चलती रहती है अपनी रफ्तार से, हमारे स्टूडियो की घड़ी की तरह। जैसे धीरे धीरे ये घड़ी आगे बढ़ रही है और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो बस निधि जैन भी आपसे म्यूज़िक आर प्रोग्राम में अभी इजाज़त लेगी, लेकिन जुड़े रहिएगा अगले प्रोग्राम के लिए हमारे साथ।

जी हाँ दोस्तों, हमें भी बिल्कुल नहीं रुकना है और बस अगले प्रोग्राम की ओर बढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक सूचना दे दें डाक अदालत विभाग से आई हुई।

चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर कानपुर से संबंधित उपभोक्ताओं और की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु त्रैमासिक डाक अदालत का आयोजन चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर कानपुर की अध्यक्षता में 12 जून 2026 यानी दिन शुक्रवार को 11 बजे चीफ पोस्टमास्टर के कक्ष में किया जाएगा। डाक अदालत में प्रधान डाकघर कानपुर से संबंधित समस्याओं शिकायतों विशेषता स्पीड पोस्ट सेवा पंजीकृत वस्तुएं बचत बैंक धनादेश सेवा पेंशन एवं अन्य संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। ग्राहक अपनी समस्याओं शिकायतों के निवारण हेतु डाक अदालत में उपस्थित होने के इच्छुक उपभोक्तागण अपनी समस्याओं और शिकायतों के पूर्ण विवरण सहित चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर कानपुर के कार्यालय में 5 जून 2026 दिन शुक्रवार तक अवश्य उपलब्ध करा दें। उक्त तिथि के बाद प्राप्त शिकायतों पर डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। डाक अदालत में सुनवाई हेतु नए मामले नहीं लिए जाएंगे। केवल उन्हीं मामलों को विचार हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है जिनका निस्तारण किसी कारणवश नहीं हो पाया है या कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्व में प्रेषित शिकायत का विवरण भी प्रमाण स्वरूप साथ में संलग्न किया जाए और साथ ही शिकायती पत्र या लिफाफे के ऊपर डाक अदालत हेतु अवश्य लिखें। सूचना समाप्त हुई।

के साथ। और जी, आपकी पसंद प्रोग्राम का बिल्कुल समय हो चुका है और बिना देर करते हुए हम आज के प्रोग्राम का पहला गाना प्ले करेंगे। और आपको मालूम है कि आज है वर्ल्ड बाइसिकल डे, तो आज का सबसे पहला गाना ऐसी फिल्म से है जिसमें बहुत ही बढ़िया सी साइकिलिंग दिखाई गई है और आपको भी ज़रूर याद आ जाएगा। तो लीजिए एंजॉय करते हैं आज का ये पहला सॉन्ग, और प्रोग्राम आपको मालूम ही है आपकी पसंद।

0: जी हाँ दोस्तों, आपकी पसंद प्रोग्राम का सबसे पहला गाना बहुत ही खूबसूरत सा था और साइकिल पर ये पिक्चराइज हुआ था, और आज वर्ल्ड साइकिल डे पर सबसे पहले मैंने आपको यही गाना सुनवा दिया, जिसके लिए हमारे पास ढेर सारी फरमाइशें आ गई हैं। ये हैं हमारे दोस्त खुर्द से, लिखते हैं हमें श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत जगुताई, साक्षी ताई राजे जाधव, संचित वायाल आरेगांव से, प्रथमेश देशमुख मोताला से, स्वामी देशमुख करडा से हमें लिखते हैं, और प्रणाली देशमुख मोताला से ही हैं, सानवी देशमुख करडा से, और इनके साथ पूरा इनका राजे जाधव परिवार और वायाल देशमुख परिवार भी हमसे जुड़ा हुआ है, लाइव हमें सुन रहे हैं। और एक बड़ा ही अच्छा सा हमारे पास मेल आया है सतीश अनेजा जी का, लिखते हैं प्यारी बहना जी, आपका प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है सतीश जी आपका। और बड़ा अच्छा सा मैसेज उन्होंने लिखा है कि झुकने वाले इंसान को चारों लोकों में जीत मिलती है, पर्वत हमेशा अकड़ कर ही रहता है, लेकिन झुक कर चलने वाला उस पर आसानी से चढ़ जाता है। बहुत ही खूबसूरत सी बात आपने लिखी है, बिल्कुल कहते हैं ना कि जो नर्म और मुलायम से पौधे होते हैं वो अक्सर जी जाते हैं, लेकिन जो अकड़ा हुआ पेड़ होता है वो अक्सर गिर जाता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने लिखी है, चंडीगढ़ सिटी से आप हमें हमेशा ही मेल करते हैं, और आपके साथ साथ आपने लिखा है बिमला अनेजा जी का भी नाम, और गाना भी बड़ा खूबसूरत सा पसंद किया है, लेकिन उसे अभी हम सुनवाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमें, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं आपके बहुत खूबसूरत मेल्स के साथ में, जो जिसमें आज बहुत अच्छी अच्छी फरमाइशें हैं आप लोगों की मेल्स पर। तो सुनते रहिए हमें 102.2 FM पर रेनबो कानपुर। नीति चैन है आज आपके साथ।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरम्भ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्वनामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

जी, इस समय आप जुड़े हुए हैं सिटी की म्यूजिकल हार्टबीट रेनबो कानपुर के साथ, और आज आपके साथ इस प्रोग्राम में है आपकी दोस्त निधि जैन। तो दोस्तों, बहुत सारी मेल्स हमारे पास आ गई हैं, और रोज़ की तरह जैसे ही 4 बजते हैं ढेर सारी मेल्स आती हैं। अभी हम आपको गाना सुनवाएंगे जो कि सतीश अनेजा जी ने पसंद किया था दो चोर फिल्म से, लेकिन उससे पहले कुछ नाम हम ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। ये हमें लिखते हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से ही श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, सरेमपुर बक्सर से बहुत सारी फरमाइशें राजडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी की भी। इनके अलावा पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद एमपी से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री और अल्तमश खत्री के साथ रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री का नाम जुड़ा हुआ है, रेडियो के दीवाने ग्रुप दिल से रेशमा, दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी, निशा और जालंधर से देवशंकर जाटोलिया जी लिखते हैं कोई भी गाना हमें सुनवा दें तो बिल्कुल बेशक। बहुत सारे हमारे पास आज गाने हैं और अच्छी अच्छी फरमाइशें हैं। इनके अलावा एक पोस्ट में और पढ़ना चाहूँगी, ये लिख रहे हैं ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश, इनकी पुत्र वधु हैं निशा कठेरिया, प्रज्ञा, प्रतिमा कठेरिया और इनके साथ वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार ने हमें इस समय मेल किया है और लिखते हैं कि कोई भी गाना हमें सुनवा दें तो बिल्कुल कोई भी गाना तो ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि जब आप हमें अपने नामों के साथ अपनी फरमाइशें भी भेजते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है। पर कोई बात नहीं, आप हमसे प्रोग्राम में कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। और लीजिए जी, रवि कुमार राहुल जी का मेल हमारे पास आ गया है तुरंत, कस्बा बराड़ा ज़िला अम्बाला हरियाणा से, और लिखते हैं कि आदमी की सोच कितनी अजीब है, ना कामयाब हो तो अपनी बुद्धि की तारीफ करता है। अच्छा, इन्होंने वो पंक्चुएटरी मार्क का फ़र्क हो गया, देखिए कितना फ़र्क हो जाता है। वो लिखते हैं कितनी अजीब है ना, कामयाब हो तो अपनी बुद्धि की तारीफ़ करता है और असफल हो तो अपनी किस्मत को कोसता है, जबकि भगवान ने कहा है कि आपको जो भी मिल रहा है अपने कर्मों का फल ही मिल रहा है। अपने भाग्य को, किस्मत को कोसने से कोई फ़ायदा नहीं। आपको लगता है कि आपकी किस्मत ख़राब है तो कर्मों को बदलो, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात आपने लिखी है। सच में हम लोग बहुत बार अपनी किस्मत को कोसते हैं और लेकिन ये नहीं देखते कि जो सफल इंसान है उसने मेहनत कितनी की है वहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी सी बात लिखने के लिए। और अब हम आपके बाकी के सारे नाम पढ़ देते हैं, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल। और दोस्तों, अब हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त अपने गाने सुनने का इंतजार कर रहे हैं। तो लीजिए हम सुनवाते हैं आपको ये गाना।

जी हाँ, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें आप सुन रहे हैं दो चोर फिल्म में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और आर डी बर्मन की धुन है।

0: जी हाँ दोस्तों, आप हमसे दूर तो बिल्कुल भी रह ही नहीं सकते हैं, है ना? और ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इसीलिए आप हर रोज़ हमसे कनेक्ट होते हैं, चाहे इस चैनल में या फिर उस चैनल में, और हमें धीरे धीरे कामों का सिलसिला आगे बढ़ाना है। लेकिन उनके साथ साथ बहुत सारी हमारे पास मेल्स आई हुई हैं, वो भी हम आपसे शेयर करते चलते हैं। बहुत सारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये है मलयान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम जैन मुस्कान और मास्टर जीवीएम जैन, आप सब ने हमें मेल भेजा है और खूबसूरत से गानों की फरमाइश भी है। लेकिन उन सभी मेल्स को भी हम शामिल करेंगे और आपकी पसंद के गाने भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक आपको सूचना दे देते हैं।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड

0: बताना चाहेंगे PADMAAWARDS.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: जी तो बस ऐसे ही कनेक्टेड रहिए और बहुत सारी सूचनाएं और आपका जो एंटरटेनमेंट है यानी कि आपके पसंद के गाने और आपके नाम हम बिल्कुल लगातार पढ़ते चल रहे हैं। और अभी हमारे पास एक मैसेज जो आया हुआ है, बहुत पहले से उन्होंने भेजा था और उनकी हमने गाना शेड्यूल करके रखा है। 2 और 2 5 फिल्म का उन्होंने गाना सुनना पसंद किया है और सारी की सारी डिटेल्स एकदम करेक्ट लिखी हैं। बिल्कुल किशोर कुमार की आवाज़ है, राजेश रोशन की धुन है, अनजान साहब ने इसे लिखा है और फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन हैं, परवीन बॉबी हैं, शशि कपूर हैं, हेमा मालिनी, कादर खान। जी हाँ, आपकी मैं क्या कहूँ कि जो सॉन्ग के बारे में जानकारी है वो बहुत ही बढ़िया है। आप लिखते हैं कि ये वाला गाना हमें सुना करके दिल खुश कर दीजिए और आपका हर पल खुशियों से भरा हो। तो अब हम आपको बता दें कि ये इतना खूबसूरत सा गाना और इतनी सारी डिटेल्स हमें हमारे किन दोस्तों ने लिख करके भेजी है। ये है हमारे दोस्त ज़िला खरगोन सनावद एमपी से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और भाई राजकुमार बोड़ाना। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए और इतनी खूबसूरती के साथ अपना मेल भेजने के लिए। हमारे कुछ और दोस्त हैं, लिख रहे हैं हमारा नंबर कब आएगा जी। ये हैं होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु खोरवाल, आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं प्रोग्राम में। और ये लिख रहे हैं, इनका जगह का नाम जी दिख गया है, ये लिखा हुआ है रघुनाथपुरा ज़िला श्री गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने हमें लिखा है। लिखते हैं पसंद आपकी पसंद प्रोग्राम की पेशकर्ता आदरणीय प्यारी दीदी जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, अच्छा गाना आपने सुनना पसंद किया है। लेकिन अभी हम अशोक वर्मा जी का गाना आपको सुनवाएंगे जो उन्होंने सुनना पसंद किया था। काफ़ी देर से उन्होंने अपनी हमें मैसेज भेजा था। इनके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं खंडवा रोड सनावत से शाहबाज अरबाज, फरहान, फरदीन, समीर, डॉक्टर मोइन शेख और खंडवा से ही योगेश गुजराती, आनंद जोशी, दुर्गा प्रसाद सैनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। पहाड़गंज मुल्तानी ठांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक भी हमसे लाइव कनेक्टेड हैं। इनके अलावा बहुत सारे लीजिए जी जो हमेशा खूबसूरत सी चित्रकारी करके भेजते हैं अपनी मेल्स में, उनका भी मैसेज हमारे पास आ गया है। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, आप सभी का बहुत शुक्रिया। और लीजिए अभी सुनिए 2 और 2 5 फिल्म का ये गाना जिसे सुनना पसंद किया है अशोक वर्मा जी एंड उनकी पूरे फैमिली मेंबर्स ने।
2: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

है दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

जी हाँ दोस्तों, अगर हम चाह लें तो क्या नहीं हो सकता, दो और दो पांच भी हो सकते हैं, बस बात है टीम वर्क की और बात है ईमानदारी की। बड़ा ही खूबसूरत सा गाना था, और अगर मैं कहूँ कि अपने समय का ये सबसे पहला फास्ट गाना था या ब्रेथलेस गाना था तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। बहुत ही स्पीड में इसे किशोर कुमार साहब ने बिल्कुल करेक्ट रिदम में गाया है, और बहुत ही खूबसूरत सा गाना बन पड़ा है। पिक्चर भी बड़ी खूबसूरत थी, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की मेन भूमिकाएं इस फिल्म में थी, दो और दो पाँच। और जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका नाम मैं शामिल कर लूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि ये हमारे दोस्त जो कि अभी लिख रहे हैं कि हम शिक्षण विभाग कार्यालय नांदेड़, महानगर पालिका नांदेड़ में भी आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, और आपको मेरा नमस्कार है निधि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले जी, बिल्कुल आप अपना नाम सुन करके आपको अच्छा लगा होगा, और हमें भी अच्छा लगा कि आप अपने बीच के काम में भी इस समय हमको सुन रहे हैं, और आपकी बाकायदा हमारे पास चिट्ठियाँ भी आती हैं, और बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग है आपकी, बहुत ही अच्छे से आप लिखते हैं। तो दोस्तों अभी हम थोड़े से और भी नाम पढ़ना चाहेंगे। जो अगला हमारे पास जो गाना आपको मैं सुनवाऊँगी वो पुलिस पब्लिक फिल्म का सुनवाऊँगी, जिसको सुनवाने के लिए हमारे पास मेल फरमाइश आई थी पाकुड़ झारखंड से, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद की। बोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय।

0: और उनकी पसंद का गाना हम डेफिनेटली प्ले करेंगे, लेकिन उन दोस्तों को भी निराश नहीं करेंगे जो इस समय हमें लाइव सुन रहे हैं। गांव लोखड़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह, लिखते हैं कोई भी गाना हमें सुनवा दीजिए और हम आपका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम आपको गाना सुनवाएंगे और अभी फ़िलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होते हैं आपकी पसंद के गानों के साथ और आपके नामों के साथ। तो बस कहीं मत जाइए, 102.2 FM पर बने रहिए हमारे साथ सिटी की म्यूजिकल हार्टबीट यानी कि रेनबो कानपुर के साथ।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: अपना चहेता मन भाता लहराता फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर आ रहा है आप तक इसी शनिवार और रविवार को शाम 5 बजे से 103.7 पर रिकॉर्डिंग होगी। दो दिन बुधवार और गुरुवार को 11 बजे से 12 बजे तक। तो अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए हमें कॉल करें 0512-254-1818 पर। हेलो कानपुर।
3: जी हाँ दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं आपकी पसंद प्रोग्राम में और अभी आधा वक्त बाकी है यानी कि शाम के 4:32 हो चुके हैं और अभी हमें कुछ और गाने और बहुत सारी मेल्स शामिल करनी है। तो बस सुनते रहिए हमें 102.2 FM पर यानी रेनबो कानपुर पर। आज आपके साथ है आपकी दोस्त निधि जैन।

जी आप पुलिस पब्लिक फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं अमित कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। असद भोपाली ने इसे लिखा है और म्यूजिक कॉम्पोजिशन राम लक्ष्मण की।

जी, आप बेहद ही खूबसूरत सा ये गाना था पुलिस पब्लिक फिल्म से, अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप इसे सुन रहे थे। इनके साथ ही साथ हमारे इस गाने के लिए बहुत सारे दोस्तों की मेल आ गई है कि गाना बहुत ही खूबसूरत है। ये हैं दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला निशा, और जालंधर से देवशंकर जाटोलिया, सेक्टर 67 मोहाली, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से ही शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित, हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी प्रांजल, शेरपुर कला, गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। इनके साथ ही साथ संदीप मक्कड़ जी का भी हमारे पास मेल आया हुआ है, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भरत, कमल साहनी, पिंगवाला चौक जालंधर से हमें मेल करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है हमें मेल भेजने के लिए। और लीजिए जी, जिनका हम इंतज़ार अभी देख ही रहे थे कि आज शायद इस समय उनका मेल नहीं आया, लिखते हैं निधि बहन जी को बहुत बहुत सादर नमस्कार है और हम आपका प्रोग्राम में अभिनंदन करते हैं। खूबसूरत प्रोग्राम प्रस्तुति चल रही है और हमें नज़रअंदाज मत करना, बिल्कुल मुझे मालूम है और हमें पता है कि सारे ही दोस्त बहुत इंतज़ार करते हैं अपने नाम सुनने का भी और प्रोग्राम में शामिल होने का। लिखते हैं किसी भी पसंद के अपने गाने में हमें शामिल कर लीजिए। और इनके नाम ये हैं, बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूर आयशा, अहमद बागवान, इकबाल अहमद, अखलाक, आसमा आसमा, राबिया, परी, आशू, जूही, सदफ़, और छतरी टोल तेहड़ा बाजार बेगूसराय से अदीबा अफसरी, इस्माइल आज़ाद, नन्हे राजा, फ़याज़, फिरोज़ आलम भाई, शाह आलम और वली आलम जी। जी, जब भी हम कभी आपका नाम पूरा पढ़ते हैं बागवान जी, तो बस हमारे सामने फूलों का बगीचा सामने होता है और हमें सच में बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें मेल करते हैं। न्यू दिल्ली से ही हमारे पास हैं कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं इस समय। लिखते हैं एक और हमारे पास सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग और सोनाली नारंग जी भी जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि प्रोग्राम बेहद पसंद आ रहा है, अच्छी अच्छी बातें और प्यारे प्यारे गीत सुन रहे हैं हम इस

समय शॉप पर बैठे हुए हैं। यही तो खास बात है दोस्तों हमारे रेडियो की, कि आप कहीं पर भी हो बहुत ही आराम से आप हमें सुन सकते हैं, और इसमें आपका काम भी जो है ना वो बाधित नहीं होता है। बहुत ही आराम से आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, गानों को एंजॉय करते हैं। इनके साथ साथ कृष्णा घोटके जुड़ी हुई हैं, प्रशांत शिंदे, रुचि यशराज, सुनीता रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ नए नाम भी मुझे दिख रहे हैं, और अच्छा इन्होंने गाने की फरमाइश तो नहीं लिखी है लेकिन एक बात लिखी, कमलकांत गुप्ता पिपरिया से इन्होंने हमें लिखा है कि पैसा ज़रूर कमाएं मगर साथ साथ दुआओं को भी कमाना चाहिए, क्योंकि दुआएं ज़िंदगी के उस मोड़ पर काम आती हैं जहां पैसा काम करना बंद कर देता है। क्या बात कही है आपने, और सच में हम लोग अक्सर ये बात पैसा कमाने की होड़ में भूल जाते हैं कि ये जो दुआएं हैं यही हमें जिंदा रखती हैं और हमें हर मुश्किल से बचाती हैं। चलिए एक नाम हम और पढ़ते हैं और उसके बाद हम आपकी पसंद का आपको गाना और सुनाते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है, लेकिन उससे पहले नई बस्ती गंज डुंडवारा से जो हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं, मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ और मोहम्मद कलीम अंसारी। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रोग्राम का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और एक बेहद ही खूबसूरत गाना, थोड़ा सा पुराने ज़माने का है लेकिन बड़ा ही प्यारा सा गाना है, सुनते हैं।

0: जी हाँ, यहूदी फिल्म का ये गाना था, मुकेश की आवाज़ में, शैलेंद्र ने इसे लिखा था और ये खूबसूरत सी धुन थी शंकर जयकिशन की। और दोस्तों बहुत सारे नाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दतरंगी भाटा पारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा पारसमणि, पुष्पेंद्र नोखे लाल वर्मा, आप सभी ने लिखा है एक मैसेज, साइकिल की सवारी ना प्रदूषण ना बीमारी, बिल्कुल सही बात है। और अभी एक ऐसा ही साइकिल वाला गाना हम आपको सुनवाएंगे। लीजिए जी, एक और श्रोता ने हमें साइकिल दिन की हार्दिक बधाई दे दी है और ये हैं मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पुफाली जिला यवतमाल से, जयराम सिंघलकर, दिशांत और अर्पिता। आप लिखते कोई भी गाना, तो बिल्कुल आपने साइकिल की बात कही है और हम आपको साइकिल वाला ही गाना जरूर सुनवाएंगे। लिख रहे हैं, ओहो कितने सारे क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं, लिख रहे हैं हमारा नंबर भी आएगा, आखिर कितना इंतजार, बिल्कुल भी इंतजार नहीं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा जी, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार लिखते हैं, हम बहुत देर से प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमारा मेल शामिल नहीं हो रहा है। लीजिए जी, आपका मेल शामिल हो गया, ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमें जितने भी नाम दिखते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी आप सबके नाम शामिल कर लें। आशा सपकाल, किशन सपकाल, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ शास्त्री नगर बीड शहर से। इनके साथ ही हरजिंदर सिंह भाटिया जी की मेल तो हम शामिल कर चुके हैं और फिर भी बहुत सारी मेल्स आ गई हैं, पर कोई बात नहीं। तुलसी मस्कीन जी ने भी लिखा हुआ है कि गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से आप हमें लिखनी है। वीना मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता केशु रिधान खुराना, आप भी हमें मालूम है कि आप रेगुलरली हमें सुनते हैं, बिल्कुल जी। और राजे जाधव जी, आपका हमने सबसे पहले ही गाना शामिल कर लिया है, आपके नाम भी शामिल कर लिए हैं, इसलिए कृपा करके अब और ज़्यादा मत भेजिएगा मेल, क्योंकि फिर आपके दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। देखिए बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया भी हमें मेल कर रहे हैं और लिख रहे हैं लाजवाब प्रस्तुति है, हमारे नाम शामिल कर लीजिए, बिल्कुल जी नाम शामिल हो गए हैं। और इनके साथ एक अभी मैं मेल ऑल शामिल करूंगी, उसके बाद हमें आपको गाना भी सुनाना और एक छोटा सा ब्रेक लेना है। लिखते हैं नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसर्रत जहां ये शिक्षिका हैं, और तलत जहां नाज, फरहत जहां रिफत, नुजहत जहां साजिया शाहीन और नाजिया नूरी नाज। लिखते हैं हम बहनों को शामिल करें और हमें शुक्रिया अदा करने का मौका दें, तो बिल्कुल हम तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी डी कैस्ट्रो, पर्ल और विलिस डी कैस्ट्रो हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल प्रोग्राम में एक छोटा सा आखिरी ब्रेक हमें लेना और ब्रेक के बाद फिर से हम हाजिर होते हैं आपकी पसंद के गानों और आपके मेल्स के साथ।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जी हाँ, बेहद ही खूबसूरत सा गाना मेरे सनम फिल्म से आ चुका है आप सबके रेडियो सेट्स पर। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, ये प्यारा सा म्यूज़िक है ओपी नैयर का, और मजरू साहब ने इसे लिखा है।

जी हाँ दोस्तों, बेहद ही खूबसूरत सा ये गाना था। और जो बिस्वजीत साहब थे वो तो भले ही गाड़ी में अपनी कार में हैं, लेकिन हाँ बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि साइकिल पर हैं। और आज का जो वर्ल्ड साइकिल डे है उसके लिए गाना मुझे बड़ा ही बढ़िया लगा, और आप सबकी फरमाइशें भी इसमें शामिल थी। हमारे बहुत सारे साथी हमसे अभी भी लगातार जुड़े हुए हैं प्रोग्राम में, अभी भी 8 मिनट का वक्त है, तो आप परेशान मत होइए। बहुत सारे नाम मैं शामिल करने वाली हूँ। शिवानगर वडाली देशमुख से लिखते हैं राजेश खोबर खेड़े, शिव सागर इंदिराबाई खोबर खेड़े, चकुलीताई खांडवी बुलढाणा से दीपाली रामधाड़े, स्वराज रामधाड़े और थिलेरी अमरावती से सुनैना, तनुज भोंडे और तनुज पवन भोंडे, आप सबकी फरमाइश हमारे साथ शामिल है। बहुत सारे नाम हमें और भी मिलते चले जा रहे हैं और कोशिश यही है कि हम आप सबके नाम पढ़ दें। ये हैं हमारे दोस्त सनावस्ते शेख मूसा मोहसिन, हमेशा की तरह प्यार भरा आदाब के साथ दुआओं में याद रखना, और खैरियत हमारी हमेशा की तरह आज भी इन्होंने पूछी है। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डुडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डुडी लिखते हैं, कोई भी गाना हमें सुनवा दें, बिल्कुल हमने आपका आपका नाम शामिल करा है और गाने तो आप सुन ही रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत चल रहे हैं आज हमारे चैनल से। जिन लोगों के नाम अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं उनके मैं कोशिश कर रही हूँ कि नाम शामिल करती चलूँ। गाँव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी, हमेशा की तरह बहुत सारे फरमाइशी गाने आपने लिखे हैं और आपके बस दो नाम हैं। अच्छा लगता है कि थोड़े ही नाम होते हैं तो हमें भी पढ़ने में आसानी रहती है। थोड़ा ज़िला मुरादाबाद से हमारे पास आया है मेल, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलबीर सिंह का मैसेज है हमारे पास, लिखते हैं कोई भी गाना हमें आप सुनवा दें, बेशक आपका नाम हमने शामिल किया। और देखिए कई सारे नाम अब तो आप लोगों का, मुझे लगता है कि जो मेल दोस्त हैं उनका भी एक ग्रुप बन गया है, बहुत सारे नाम एक ही श्रोता ने अपने कई सारे दोस्तों के नाम हमारे पास भेज दिए हैं। और ये हमारे दोस्त हैं मंसूरी, रेडियो लिसनर क्लब बाज़ार रोड मुंगीसापुर से आज भी उन्होंने हमें मैसेज किया है, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी लिख रहे हैं, प्रस्तुति काबिल तारीफ है और गीतों का चयन भी लाजवाब है, बस आप ही लोग की पसंद लाजवाब है, शुक्रिया बहुत बहुत। और दोस्तों अभी हमें बढ़ना होगा अपने आज के आखिरी प्रोग्राम की ओर, और चलते चलते भी कोशिश करूँगी कि कुछ और नाम भी मैं शामिल कर लूँ।

जी हाँ, मिशन कश्मीर फिल्म का ये गाना है, शंकर महादेवन की आवाज़ है, समीर ने इसे लिखा है और म्यूज़िक शंकर एहसान लॉय का। सप्तरंग श्रोता परिवार, कुंभार गली श्री रामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, पुनावले मुणे से, पुणे से सज अजय सोनावणे, करिश्मा, अविका, विशाखा सोनावणे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे गानों की फरमाइशें लिखी हैं, लेकिन आज आपकी फरमाइश शामिल नहीं हो पाएगी, बस हमने नाम आपके ज़रूर पढ़ दिए हैं।

फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमद नगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मिखाइल और जैनब मुजावर। तो बहुत सारे नाम हमने शामिल कर लिए और बहुत सारे दोस्तों का हमारे पास रिप्लाई भी आ गया है कि आपने हमारा नाम शामिल कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और फिलहाल आपकी पसंद प्रोग्राम का ही आखिरी नगमा है, अपनी दोस्त निधि जैन को दीजिए इजाज़त, लेकिन सुनते रहिए 102.2 FM पर रेनबो कानपुर।

जी हाँ दोस्तों, बस ऐसे ही गानों का आनंद लेते रहिए हमारे चैनल से और हमें सुनते रहिए 102.2 FM पर। फिलहाल बस एक आखिरी मेल आपके लिए मैं और शामिल कर लेती हूँ, उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत और मिथिल नाचानी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे लाइव जुड़ने के लिए। ऐसे ही जुड़ते रहिए। और बहुत सारे दोस्तों के हमने आज नाम शामिल कर लिए, मुझे लगता है सभी के नाम आ गए हैं, तो बस ऐसे ही इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए और मुझे आज दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के एटीएफ

प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये एक आत्मनिर्भर कोष है जो नियमित भारतीय विमानन कंपनियों के लिए विमानन टरबाइन ईंधन ETF की कीमतों को स्थिर करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से विमानन क्षेत्र से जुड़े 77 लाख रोजगार सुरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास और उद्यम के लिए सुरक्षा सर्वाधिक जरूरी है। सुरक्षा के बिना न सुशासन आ सकता है और न ही समृद्धि आ सकती है। सीएम योगी आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के सेक्टर 13 42.50 करोड़ रुपए की लागत से बने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले और पूरे प्रदेश के दूसरे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण तथा गीडा में सुआयोजित कामगारों के लिए EWS LIG आवासीय परिसर का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने गीडा के विभिन्न सेक्टर्स के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने EWS व LIG भवन के आवंटियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज बरेली जनपद में छावनी परिषद की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 108 छात्राओं को निशुल्क साइकिलें वितरित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का संदेश देना रहा। कार्यक्रम का नेतृत्व छावनी परिषद की CEO डॉ तनु जैन ने किया। उन्होंने कहा कि साइकिल केवल आने जाने का साधन नहीं है बल्कि ये छात्राओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैडमिंटन में इंडोनेशिया ओपन के पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंकांग और आरोन ताई से 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज ताई से 6-11 उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत के मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

5:04 हुए हैं और इस समय आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ और आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। प्रोग्राम शुरू हो चुका है FM टॉप 10 और FM टॉप 10 में हर दिन आपके लिए आती है एक टॉप 10 की खास लिस्ट और आज भी आपके लिए आया है एक स्पेशल FM टॉप 10 और वो खास FM टॉप 10 क्या है उसके लिए आपको ट्यून इन करके रखना होगा। और बिना देरी के नंबर 10th सॉन्ग आज के प्रोग्राम का हम आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं और ये खूबसूरत सा सॉन्ग आप सुनिए और वापस आते हैं नंबर 9th लेके। आज याद रखिएगा FM स्पेशल टॉप 10 है।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और अब बारी है आज के FM टॉप 10 स्पेशल के सॉन्ग नंबर 9 की, और ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: पांच बजकर के 22 मिनट हुए हैं और FM टॉप 10 का नंबर 7 आपके रेडियो सेट पर आ रहा है। आप नंबर 7 एंजॉय करिए और तुरंत उसके बाद आते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: समय हो गया 5:29 और आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ। आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। इस समय आप सुन रहे हैं FM टॉप 10 स्पेशल और इस समय आपके रेडियो सेट पर आ रहा है नंबर 6 सॉन्ग। आप इसे सुनिए और ट्यून इन करके रखिए, तुरंत आते हैं वापस।

5:36 और अब ये आ रहा है आपके रेडियो सेट पर आज के FM टॉप 10 का सॉन्ग नंबर 5।

5:40 और FM टॉप 10 का पांचवा गाना आप सुन रहे थे, और इस समय आपके रेडियो सेट पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है आज के प्रोग्राम FM टॉप 10 का चौथा गाना। ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

5:46 हो गए हैं और बिना देरी के हम ले चलते हैं आपको सॉन्ग नंबर 3 की तरफ और ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आज के FM Top 10 का तीसरा गाना।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना हमारा विकास।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

5:51 हो गए हैं और आप सुन रहे हैं FM टॉप 10 100.7 FM रेनबो पर. और ये रहा आज के FM टॉप 10 का सॉन्ग, सेकंड टॉप सेकंड सॉन्ग.

बिल्कुल, और ऐसे ही खूबसूरत तरीके से याद आते हैं। और 5:55 और ये रहा 56 मिनट का समय हो गया है, और बिना देरी के आज FM टॉप 10 स्पेशल का ये टॉप सॉन्ग शो स्टॉपर आपके रेडियो सेट पर, आप इसे सुनने तुरंत आते हैं न्यूज ब्रेक के उस पार आपके अपने प्रोग्राम शाम अवध में। लेकिन न्यूज ब्रेक कह रही हूँ इसका मतलब ये है

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्षों में खेती किसानी के क्षेत्र में आए परिवर्तन के कारण अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। किसानों ने कृषि विकास दर को 8 से बढ़ाकर 18% तक पहुंचाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित गोरखपुर, आजमगढ़ व बस्ती की संयुक्त मंडली खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का शुभारंभ करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भीषण अग्नि दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस हादसे में हुई जनहानि को अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक बताते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहलें शुरू की। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर रोजमर्रा और चीजों की लागत को कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के 6 स्नातकोत्तर और 4 PG डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ई काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में दाखिला केवल ई काउंसिलिंग के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 8 जून तक संस्थान की वेबसाइट www.iimc.admissions.nic.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। पहली सीट आवंटन सूची 9 जून को जारी की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो।
3: जी हाँ, और ये है धड़कन लखनऊ की। 6:05 हुए हैं और आपके दिलों में, आपकी जबान में भी FM रेनबो गूंजता है और गूंजता रहेगा। ये खूबसूरत शाम में आपका स्वागत है, आपको नमस्कार है, सलाम है आपको प्यार भरा। प्रोग्राम शाम अवध का करते हैं खूबसूरती से आगाज, और ये खूबसूरत आगाज आपके साथ लेकर के आया है थोड़ी सी राहत दिन भर की चिलचिलाती धूप से। और ये खूबसूरत अवध की शाम हमेशा दिल में एक अलग सी ठंडक लिए रहती है। आप जब बाहर निकलें इस खूबसूरत शाम का दीदार करने, आपको लगभग इश्क तो हर दिन हो ही जाएगा। इससे ट्यून इन करके रखिए, आपके शहर का प्रोग्राम है, आपके अवध की जमी का प्रोग्राम है, आपके शहर के छुटपुट खबरों का आपके लिए एक इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम है। ट्यून इन करके रखिए, आपके दोस्त चंद्रकला है आपके साथ।

6:15 हो रहे हैं और लखनऊ में आज जो है ना भंडारे का तो आलम नहीं है। भंडारे वाले दिन यानी मंगल और शनिश्चर को बहुत बहुत भीड़ देखने को मिलती है और शनिवार को भी, इसलिए क्योंकि जो लोग मंगल को भंडारा नहीं करवा पाते हैं वो शनिवार को, अपनी अपनी श्रद्धा है, कुछ लोग मानते हैं कि मंगल भी बजरंगबली का दिन है और शनिवार भी, लेकिन आज तो बुधवार है ना। फिर भी उसके बावजूद भी ट्रैफिक तो शहर में हमारा जिंदाबाद रहता है कि जनता भी इतनी ज्यादा है और यहाँ के शहर की सड़कें, यहाँ की गलियां, सब कुछ गुलजार रहता है, इतना अच्छा रहता है कि मतलब भरे रहते हैं लोग।

भी आप बाहर निकल रहे हों या बाहर से घर की तरफ जा रहे हों, तो फिर आपको एक स्वीट सा रिमाइंडर दे दें कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करने की जरूर सोचें। यातायात नियमों का आपको पालन करना है, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना है। और फिर मैं तो यही कहूंगी अपने स्टाइल में कि भाई अगर आप यातायात नियमों का पालन करते हैं और अपनी सुरक्षा का, अपने घर वालों की सुरक्षा का ख्याल रखते हैं, हेलमेट पहनते हैं, सीट बेल्ट लगा करके रखते हैं, समझ रहे हैं, आपके चेहरे पर अलग सा नूर होता है, कॉन्फिडेंस होता है। बस ये खूबसूरत छोटा सा रिमाइंडर आपको देना था और इस रिमाइंडर के साथ मैं आपको बोलूंगी कि अगला जो कट होगा उसमें हम आपको बताएंगे मौसम के बारे में। ट्यून इन करके रखिए और खूबसूरत से गाने आपके रेडियो सेट पर आते रहेंगे।

पानी। और शरबतों की बात की जाए तो इस समय मौसम भी शरबत वाला है ही। शरबत अलग अलग फ्लेवर का होता होगा, वैसे मुझे तो शरबत पसंद नहीं है कोई सा भी, क्योंकि मुझे मीठा ही बिल्कुल पसंद नहीं है। पर बहुत सारे लोग, ज़्यादातर हम में से ऐसे होते हैं जिन्हें मीठा बहुत पसंद होता है। पर थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखते हुए शरबत बहुत ज़्यादा ना पिए तो अच्छा है। नींबू पानी से काम चल सके, आम पना से काम चल सके तो बेहतर है। खैर बाकी आपकी इच्छा। लेकिन रूहअफ़ज़ा शरबत ये सब अच्छा तो लगता है मुझे, रूहअफ़ज़ा की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पीने में उतना मज़ा नहीं आता। अपनी अपनी पसंद है, मैं वैसे आपको अपनी पसंद क्यों बता रही हूँ। लेकिन ये जो मौसम जैसा है, क्योंकि मुझे मीठा कम पसंद है इसलिए मुझे चटपटा ज़्यादा पसंद है। तो चटपटा पसंद है तो मैं आपको खाने की बात बताती हूँ कि खूबसूरत शाम है, 6:30 बजे का समय है, लगभग 6:27 हो रहे हैं। अगर आप बाहर निकलते हैं परिवार के साथ, दोस्तों के साथ इस समय हैंग आउट करने, या थोड़ा सा धूप से परे शाम की थोड़ी सी ताज़ी हवा खाने, तो फूड वैली अपना जो है 10:90 के पास बहुत फेमस। फूड वैली में जो है इसमें ट्रेंडिंग चल रहा है, और इस समय जो आपको एक ट्रेंडिंग चीज़ बताने वाली हूँ, बहुत पहले मैंने आपको ये ट्रेंडिंग चीज़ बताई थी, आपको याद होना हो, लेकिन इस समय मिस्ट फैन चल रहे हैं। आपको पता है आप उस वैली में जाएंगे तो ऊपर से मिस्ट फैन चल रहे होंगे जो आपके ऊपर हल्की हल्की ठंडी फुहारें, मतलब बहुत भीगने वाली नहीं, ठंडी फुहारें आती हैं। वो जो मिस्ट है ना, वो आपको बहुत मतलब कूलिंग वाला इफेक्ट भी देगा और आपको अच्छा भी लगेगा। मतलब एकदम एसी वाला तो माहौल नहीं देगा, लेकिन हाँ ऐसा आपको फील कराएगा कि थोड़ा ठंडक तो है भाई इधर। एक तो वहाँ का एनवायरमेंट ऐसा है, और दूसरा आप जा सकते हैं। वैसे मैं प्रमोशन नहीं कर रही, बट बता रही हूँ कि वहाँ उस तरफ बहुत भीड़ होती है, आप चाहें तो उस तरफ जा सकते हैं, खाना ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में आप जो योगदान देते हैं, अगर आप खाना खाने निकलते हैं, आप जाते हैं, आप कह रहे होंगे ये तो पता ही हम तो जाते ही हैं खाने के लिए, लेकिन एक काम जो करते हैं आप वो बड़ा उल्टा सा कर देते हैं। वो काम ये है कि आप जो भी फूड ऑर्डर करते हैं ले आते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं अंदर बंद दरवाजा करके, और गाड़ी आप बंद नहीं करते, एसी चला के रखते हैं अंदर, और उससे ना गर्मी बहुत ज़्यादा आती है बाहर। तो मैं तो कहूँगी छोटी मोटी चीज़ नहीं भाई, मैं तो सीधे सीधे आपसे कहूँगी आपका बहुत बड़ा योगदान हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में। आप इसको जो है थोड़ा सीरियसली लें और कोशिश करें कि थोड़ी सी खुली हवा में आए, कोई बात नहीं थोड़ी देर गर्मी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मिस्ट का मजा लें, गर्म मिस्ट का, जो भी, ट्यून इन करके रखिए और सोचिए इस बारे में ज़रूर।

6:37 हो गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है शाम अवध, आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। आपने ट्यूनिंग किया है 100.7 FM रेनबो। और अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया था कि भाई अगर आप ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं तो होशियार रहिए, सावधान रहिए। वैसे भी आपको पेट्रोल बचाना है, ईंधन बचाना है ना भाई। फ्यूल अगर आप नहीं बचाएंगे, क्राइसिस हो गई तो फिर कहाँ भाई कार के अंदर इसी में बैठ के फूड एंजॉय कर पाएंगे। गर्मी तो झेलनी पड़ेगी बॉस, थोड़ी बहुत तो झेलनी पड़ेगी, है ना। मौसम है, इसे कौन रोक सकता है, सोचिए। तभी तो कहते हैं ना, नेचर है, प्रकृति है, बड़ी बलवान है। पर इसके आगे झुकना पड़ेगा बॉस, इसके आगे मानना पड़ेगा, हाँ कहना पड़ेगा कि हाँ यस, नेचर इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। अब आपको इसी से जुड़ी हुई एक ऐसी ही खबर आपको बताऊं और याद दिलाऊं आपको कि थोड़ा सावधान रहें। और वैसे सावधान रहने से ज्यादा आपको जिम्मेदार नागरिक कहलाने में ज्यादा मुझे लगता है कि प्राउड फील होगा। भाई सरकार जो है ना, वो पॉल्यूशन को कम करने का एम रख रही है, 30-35% कम करने का एम रख रही है। और जल्दी ही अगर आपके पास प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। तो अपना जो पॉल्यूशन है, आपका अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो फ्यूल भी नहीं मिलेगा। तो इसका इन्होंने नाम रखा है कि नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नो फ्यूल, ये नियम लागू होने वाला है। और जो आपका एक कार्बन उत्सर्जन कहते हैं जिसको, वो बहुत ज्यादा गाड़ियों से निकलता है, उस पर कंट्रोल रखा जाएगा। और ये जो जहरीली हवा है, जो गैस है, इसको थोड़ा सा कंफर्टेबल, भाई जीने के लिए तो ऑक्सीजन की जरूरत है ही। तो इसी कड़ी में जो है लगभग कई हजारों पेट्रोल पंप्स पर नो प्रदूषण प्रमाण पत्र नो फ्यूल व्यवस्था लागू होने वाली है। तो थोड़ा सा आप सतर्क रहें, सावधान रहें। लेकिन हालांकि इसको अभी शुरू होने में समय है, लेकिन फिर भी आप अपना जो है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बना करके रखा करिए, कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है ना। ट्यूनिंग करके रखिए, और भी आपके लिए खबर लेके आते हैं।

इतना खूबसूरत गाना है ना ये, और बहुत टाइम के बाद इसको जब भी सुनती हूँ तो अलग सा एक खूबसूरत सा एहसास होता है, और ऐसे ही बस ये सफ़र चलता रहेगा और ये खूबसूरत सा सफ़र जो है आपका चलते चलते आगे तक पहुँचने वाला है। तो बस आप ट्यून इन करके रखिए 100.7 और प्रोग्राम चल रहा है शामे अवध। खबर तो यह है कि फिलहाल अभी कुछ दिनों और मौसम सही होने की संभावना नहीं है, और अगर मौसम सही नहीं रहेगा तो गर्मी होगी। अपना ध्यान रखने की जरूरत है सबको, और ध्यान जो रखने की जरूरत है वो ये है कि डिहाइड्रेशन से बच के रहना है, चाहे वो पानी पीने की बात हो, चाहे वो शरबत पीने की बात हो, वो अपने हेल्थ के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देख के थोड़ा सा बन के बिठा करके तालमेल मौसम के साथ रखना है।

6:54 हो गए हैं और खुशनुमा जो शाम है आपकी, खूबसूरत शाम है, इस शाम को खूबसूरत बनाने का हमारा वादा था और वादा है, अभी आपकी शाम और खूबसूरत होगी। एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला चलता रहेगा। FM रेनबो आपने ट्यून किया है। ये जो शाम है ये खूबसूरत हो आपकी, और हमारी दिल से दुआ है कि आपकी सारी इच्छाएं जो है ना वो पूरी हों, और जिस चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हों वो पूरा हो। शाम के समय थकन के बाद कोई ऐसा बोले कि सब ठीक हो जाएगा तो बड़ा अच्छा लगता है ना। और इस एकदम झकास गाने के साथ आपको कहते हैं प्रोग्राम शाम में अवध से बाय-बाय। मुझे जाने की दीजिए इजाजत, और अगला जो प्रोग्राम है हेलो FM आपका अपना फरमाइशी प्रोग्राम है, आप उसमें मेल्स तो नहीं लेकिन सीधे डायरेक्ट कॉल करते हैं और कॉल पर अपनी बताते हैं हमें फरमाइश और हम करते हैं उसे पूरी। बस टॉप 10 न्यूज के उस पार हम जुड़ते हैं आपसे।

नमस्कार, अब सुनिए एफएम टॉप 10 समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में 18 शहरों में जीसीसी मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रस्ताव पास हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और उद्यम के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आजमगढ़ बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडली खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में हुई भीषण आग दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस हादसे में हुई जनहानि को अत्यंत दुखद बताते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह में आज देश भर की 42 उत्कृष्ट

पंचायतों को पुरस्कृत किया गया। इनमें आगरा की बिरहू ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार प्रदान किया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज कानपुर में कमलापत मेमोरियल हॉस्पिटल का जायजा लिया और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रदेश में आज और कल टीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली ये परीक्षा आज पहले दिन सकुशल संपन्न हुई। आज की परीक्षा में कुल 2,21,489 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आज बताया कि प्रदेश का संस्कृति विभाग आगामी 5 जून 2026 को 51 लोगों को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करेगा। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का ये सम्मान प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ टॉप 10 समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 8 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
3: हेलो हेलो,
4: नमस्ते दाग।
3: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
4: सतीश बोल रहे हैं।
3: सतीश जी
4: जी,
3: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
4: जिला सीतापुर, बिसवा से।
3: सीतापुर से
4: जी,
3: अच्छा, कब से सुन रहे हैं आप एफएम रेनबो?
4: रेनबो बहुत दिन से सुन रहे हैं, पाँच छह साल से।
3: पाँच,
4: पहली बार लगा हुआ है। अच्छा। बहुत दिन से लगा रहे
3: हैं। आज पहली बार आपका कॉल लगा है?
4: हाँ, उसमें लगा है, खाली जो संदेश आपसे है
3: जी
4: लगा
3: जी।
4: हेलो एफएम लगा है।
3: अरे वाह, हेलो एफएम में पहली बार कॉल लगाया आपका, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो।
4: समझ में नहीं आ रहा क्या बात करें।
3: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।

0: हम कुछ बात मत करिए, हम समझ सकते हैं पहली बार आपकी कॉल लगी। क्या करते हैं आप संदीप जी?
1: लखनऊ में पुरनिया चौराहे पे फल की दुकान पे काम करते हैं।
0: अच्छा, लखनऊ पुरनिया चौराहे पे,
1: जी।
0: क्या बात है। अभी कैसा लग रहा है आपको मौसम यहाँ, क्या लगता है? गर्मी
1: यार आप थोड़ी हवा चली ने बहुत गर्म हो रही थी।
0: अभी भी आपने दुकान लगाई हुई है?
1: दुकान तो 11 बज जाता है ना बंद करने में।
0: अच्छा, रात का 11 बज जाता है।
1: जी।
0: चलिए ठीक है। अभी इधर एक दो दिन पहले तो बढ़िया मौसम था
1: हाँ, 2-3 दिन पहले तो बहुत बढ़िया था।
0: जी।
1: गाना बताएगा?
0: बताइए बताइए।
1: फिर राजा का गाना, अपना पता मिले ना कबर यार की मिले।
0: अच्छा, इतना खतरनाक गाना।
1: गाना सुन, ये बहुत दिन से सुना है हेलो एफएम हमने।
0: नहीं मतलब आपको ये इस तरीके का गाना क्यों सुना है, आप बताइए। इतना सैड गाना मतलब।
1: अरे पुराना गाना आपको अच्छा लगता है इसलिए।
0: अच्छा, मतलब आप ज्यादातर सैड गाने ही सुनते हैं।
1: हाँ पुराने गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं इनको।
0: अच्छा, और आप
1: ना
0: वैसे रहने वाले कहाँ के हैं?
1: हम बताए थे बिछोड़ा जिले से सब।
0: अच्छा, आप
1: हाँ
0: जी, आपने बताया था आप सीतापुर के रहने वाले हैं और
1: और
0: लखनऊ
1: यहाँ
0: में,
1: फैजुल्लागंज अपना घर है लखनऊ।
0: यहाँ फैजुल्लागंज।
1: जी फैजुल्लागंज
0: जी चलिए
1: है वो बिछवा के रहने वाले सीतापुर के।
0: जी,
1: नाम ले ले आप।
0: बिल्कुल ले लीजिए।
1: हम डिक्लेम कराना चाहे आप लोगों को और कुर्बानों को, आत्मा को और रफी को।
0: जी चलिए ठीक है, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए संदीप जी। आपका जो गाना है हमने क्यों कर लिया है आपको सुनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और संदीप जी की पसंद का ये जो गाना है आप और हम सुनते हैं भाई, और इनकी फरमाइश है, सुनना पड़ेगा और सुनना है हमें। तो ये रहा संदीप जी की पसंद का ये गाना, फिर उसके बाद हो सकता है आपकी कॉल की हो बारी।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTEC Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: सात बजकर के 13 मिनट हो गए हैं। प्रोग्राम हेलो एफएम चल रहा है और आपने ट्यून इन किया है 100.7 एफएम रेनबो लखनऊ। आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन जुड़े हमारे साथ। हेलो,
4: नमस्ते मैम।
3: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
4: जी मैम, हम दया प्रसाद भंडिया सिदौली सीतापुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
3: जी दया प्रसाद जी, कैसे हैं आप और कैसा है सीतापुर सिदौली का मौसम?
4: जी मैम, हम ठीक है, मौसम भी थोड़ा अच्छा है।
3: आज तो गर्मी रही होगी दिन भर?
4: हाँ, दिन में गर्मी है थोड़ा, अब इस समय थोड़ा मौसम ठंडा हुआ है मैम।
3: शाम के समय थोड़ा थोड़ा अच्छा हो जाता होगा।
4: हाँ मैम।
3: और दया प्रसाद जी, क्या करते हैं आप?
4: जी मैम, खेती किसानी करते हैं।
3: अरे वाह, तो इस समय क्या गेहूं कटाई के बाद क्या हुआ अब?
4: जी मैम, इस समय खेत खाली पड़े हुए हैं।
3: अच्छा, गेहूं कटाई मतलब सब पूरा हो गया?
4: हाँ, कटाई हो गई है गेहूँ, अब खेत वो जोते हुए पड़े हुए हैं
3: जी।
4: अब बारिश के बाद अब बुवाई चालू हो गई
3: धान की, है ना?
4: जुलाई में। हाँ मैम।
3: अच्छा, तो अभी मतलब खेत खाली रहते हैं, कुछ और छोटी मोटी ऐसी फसल तो नहीं होती है?
4: जी मैम, नहीं करते नहीं है।
3: अच्छा,
4: तो उरद होता है, हाँ मक्का होता है और हाँ, सब हो जाता है।
3: हाँ मक्का तो होता है।
4: धूप की वजह से करते नहीं मैम, धूप बहुत होती है ना।
3: गर्मी तो बहुत है।
4: गर्मी बहुत होती है,
3: ये तो बात है। और दया प्रसाद जी, आपके पसंद का गाना तो हमने, खूबसूरत गाना आपने रिक्वेस्ट किया है, वो तो हमने निकाल लिया है, और कोई बात हो तो कह डालिए।
4: जी मैम, डेडिकेट आपको करना है बस मैम।
3: बस हमें?
4: जी मैम बस।
3: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
4: हमारे लिए है ना मैम, हमारे लिए प्रोग्राम करते हैं मैम, डेडिकेट आपको बनता है
3: जी।
4: और जितने लोग सुन रहे हैं तो अपना नंबर मिला है मैम, वो अपने पसंद का गाना सुने मैम।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी पसंद का सुनेंगे।
4: जी मैम जी,
3: चलिए ठीक है। ठीक है दयाराम जी, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, फिर होगी आपसे कभी बात। और दयाराम जी की पसंद का ये जो गाना है हम आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं, और ये गाना सुनने के बाद ठीक 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों का एक बुलेटिन, और उस बुलेटिन के उस पार हमारी होगी फिर से प्रोग्राम हेलो एफएम में बात।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली है गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री

0: परिषद की बैठक में 24 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दी है।
1: नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम हैं और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर हैं, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्री परिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
0: कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई है। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश दिल्ली

0: मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई है। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
1: कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली एनसीआर टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स। इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है। सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा और करीब 16,000 बसेस हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम है। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और उद्यम के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि साल 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
2: सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है और सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी भाव के साथ आगे बढ़ रही और आज इसी का परिणाम है प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त। 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं। लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्यात के मानकों पर खरा उतरने पर जोर देते हुए प्राकृतिक खेती पर बल दिया।
2: जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सके जो निर्यात करने लायक भी हो और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है। भारतवासियों के सामने गौ आधारित खेती है, ये गौ माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गौ माता की रक्षा भी होगी लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से आपकी खेती को बचाव करने के साथ साथ लागत को कम करने का भी एक माध्यम हो सकता है। हमें इसमें कार्य
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग एवं ODOP उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपरा के 6 शिल्पियों के 6 विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का अवसर भी मिलेगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी

0: समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। गाजियाबाद के अभिषेक कुमार ने बताया कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिली है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: प्रदेश के 36 जिलों में आज और कल टीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली ये परीक्षा आज पहले दिन सकुशल संपन्न हुई। 3,539 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 8,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आपका दिन अगला दिन हो। खैर बिना देरी के हम देखते हैं कि कौन जुड़े आज अब हमारे साथ। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हम विकास कुमार प्रजापति बात कर रहे हैं, ढोलक बजाते हैं, ढोलक मास्टर हैं।
0: विकास कुमार प्रजापति जी,
1: जी
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: बाराबंकी बड़ेल से।
0: बाराबंकी से?
1: हाँ बड़ेल से।
0: बड़ेल, अच्छा, बाराबंकी बड़ेल से आप बोल रहे हैं
1: जी।
0: और बताइए।

0: ये बाराबंकी में क्या चल रहा है सीन? और
1: विकास कुमार प्रजापति के नाम है, ये चैनल आज बंद हो गया है। हम मोबाइल अलगम गाना सुनते हैं हम लोग, इनकी बहुत अच्छा लगता है, मगर आपकी चैनल बंद है गया है आज। पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, इधर चैनल बंद है आज बाराबंकी का।
0: चैनल बंद है मतलब बाराबंकी में एफएम नहीं सुनाई दे रहा?
1: जी, नहीं बज रहा, सुना रहा, विविध भारती है, उज्ज्वला दी बंद है।
0: विविध भारती मतलब लखनऊ से कोई स्टेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा, कि सिर्फ एफएम नहीं आ रहा है?
1: अरे हाँ, हिंदी बंद है, वीवी भारती वाला और अजीपा हर घंटे समाचार आते हैं, ये चैनल बंद है।
0: अच्छा, हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच हो। आप मोबाइल एप्लीकेशन में सुनते हैं ना, मोबाइल में?
1: जी, कीपैड मोबाइल लगते हैं।
0: जी
1: जी
0: चलिए कोई बात नहीं विकास जी। और आपने बताया था आप ढोलक मास्टर हैं,
1: जी ढोलक ढोलक बजाते हैं।
0: तो आपने ढोलक सीखी है कि मतलब वही शास्त्रीय वाली ढोलक सीखी है कि ऐसे आप जो लोक धुन है लोकगीत है उसमें बजाते हैं?
1: अरे सुंदरकांड से बजाते हैं, सुंदरकांड में।
0: अच्छा, सुंदरकांड में बजाते हैं।
1: जी
0: चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब आप कलाकार आदमी हैं आप।
1: जी हम आपका आवाज प्रोग्राम बहुत सुनते हैं, आप बहुत बढ़िया प्रोग्राम करते हैं आप लोग।
0: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब सबके लिए आपने बोला है ये कि हमारे एफएम के सभी लोग अच्छा प्रोग्राम करते हैं।
1: जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी। और आपकी
1: और
0: पसंद का
1: यहाँ चैनल और नगीना पिक्चर के हमको गाना सुनाइए, नगीना पिक्चर का गाना सुनाइए हमको।
0: नगीना, आपने तो लेकिन कोई और गाना बोला था।
1: अरे हाँ बोल दे, गाना सुना देना, और क्या दिन बढ़िया है।
0: आपने हमें बोला था दिल लगा लिया है मैंने प्यार करके।
1: जी, हाँ बोलिए, लगाइए लगाइए।
0: हाँ मतलब आप कंफ्यूज ना होइए, जो आपको सुनने का दिल हो एक ही गाना सुन सकते हैं एक समय पर।
1: जी, लगाइए।
0: चलिए विकास जी, आपने पहले कभी कॉल किया है एफएम में?
1: जी कई बार जी कहते बिजी बहुत जाता था आपके पास फोन।
0: अच्छा, बिजी तो जाता है, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं ना एक साथ।
1: जी आपको चंद्रकला नाम है, नाम हम नामों भी जानते हैं आपको।
0: अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास जी, आपको हमारा नाम भी याद है।
1: जी
0: चलिए शुक्रिया विकास जी, आपका ये जो आपने गाना बोला था वो हमने ऑन एयर करने के लिए बिल्कुल रेडी करके रखा है, और
1: जी
0: आपसे फिर कभी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और विकास जी की पसंद का ये गीत सुनते हैं आप और हम सभी बाकी श्रोता मिलकर, और फिर उसके बाद हो सकता है आपकी बारी हो।

0: 7:39 हो गए हैं और अगली जो कॉल हमारे पास है उसको देखने के लिए हमें जल्दी से देखना पड़ेगा कि कौन जुड़ा है हमारे साथ फोन लाइन पर. लेकिन आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर्स पर. और वो नंबर्स जो हैं आपको हमने बताए हैं, मुझे तो लगता है कई सारे लिसनर्स को वो नंबर जबानी याद हैं. और बिना देरी के हम देखते हैं कि अगला जो कॉल है किन का लगा हमारे स्टूडियो में आज. हेलो.
1: हेलो, नमस्ते मैम.
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैम सुषमा यादव, रहीमाबाद लखनऊ से.
0: सपना जी, कैसी हैं आप?
1: मैम सुषमा यादव.
0: हाँ सपना यादव, मतलब आपको सपना जी कह रहे हैं हम.
1: जी नहीं मैम, सुषमा यादव.
0: अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी, हमें क्लियर नहीं सुनाई दे रहा था. सपना हमने सुना था, सुषमा जी हैं आप
1: जी.
0: ओके ओके सुषमा जी, तो कैसी हैं आप?
1: मैम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं
1: मैम. पहली बार कॉल लगी इसमें. हेलो फरमाइए इसमें मैम.
0: अरे वाह, पहली बार.
1: जी मैम.
0: चलिए बधाई हो आपको, पहली बार कॉल लगी और लगती रहेगी अब.
1: जी मैम, पहली बार लगी, ट्राई कर रहे हैं 6 महीने से.
0: 6 महीने से कॉल कर रही थी आप?
1: जी मैम, कॉल लगती है लेकिन रिसीव नहीं होती है ना.
0: नहीं नहीं मतलब वो प्रोग्राम के ड्यूरिंग जो है, अगर आपकी कॉल हिस्से में, जैसे देखिए हम गाना खत्म होने वाला था, हमने देखा कि कॉल उठाया और आपका लग गया, तो वो इत्तेफाक होता है.
1: जी मैम.
0: पता नहीं चलता है ना, ऐसा कुछ जुगाड़ है नहीं यहाँ जो कि पता कर सकें, या फिर हम किसी का, ऐसे जुगाड़ है भी, पता हमें चल भी जाए तो भी, मतलब ऐसी पार्शियलिटी होती नहीं है. नंबर से जिसका मतलब आ गया.
1: मैम आपकी आवाज बहुत क्लियर है, बहुत लग रही है.
0: अरे बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका. आप कब से सुनती हैं एफएम?
1: जी मैम बहुत सुनते हैं, सारे प्रोग्राम दोपहर से 10 बजे से चालू करते हैं, शाम 4 बजे तक जरूर सुनते हैं, उसके बाद 7 बजे से स्टार्ट कर देते हैं.
0: अच्छा चलिए, और आप क्या करती हैं?
1: मैम हाउस वाइफ हैं और टाइम मिलता है तो सिलाई कढ़ाई कर लेते हैं थोड़ा बहुत.
0: अच्छा सिलाई कढ़ाई. बच्चे हैं आपके?
1: जी मैम.
0: चलिए स्कूल जाते हैं?
1: जी स्कूल जाते हैं.
0: अच्छा
1: मेरी पूरी फैमिली है, सास ससुर हस्बैंड.
0: अच्छा
1: जी.
0: चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे, और आपकी पहली बार कॉल लगी है, अब कॉल लगते रहेगी. आप मतलब सुबह से सुनती हैं, मतलब जब जब आपको टाइम मिलता है?
1: हाँ मैम सुनते हैं, सुबह भी सुनते हैं.
0: चलिए अच्छा लगा सपना जी. और एफएम से आपको कैसे सुनती है, मोबाइल में सुनती हैं?
1: सुषमा जी.
0: ओह सॉरी सॉरी, सुषमा जी, सुषमा जी, सुषमा जी. और मतलब आप मोबाइल से सुनती हैं कि
1: रेडियो

0: सुनते रेडियो से।
1: अरे वाह, कौन सा वाला सेट है आपके पास?
0: मैम उसमें बड़ा वाला है
1: पुराना वाला जो होता था?
0: जी।
1: अरे वाह, वो तो बहुत मजेदार बात है। रेडियो सेट में सुनना एक अलग ही मजा आता है, मोबाइल में उतना अच्छा नहीं लगता है।
0: जी मैम पहले फोन पे सुनते थे तो मैं हस्बैंड से बोले एक बार ला दो,
1: जी
0: उन्होंने उन्होंने कहा ठीक है ला देंगे, फिर एक बार थोड़ा सुन सुना आज हो गए
1: हाँ।
0: और सरप्राइज दे दिया फोन लेके रेडियो लेके मैम।
1: अरे मतलब
0: तो
1: आप नाराज थी?
0: मनाने के लिए रेडियो लाके दे दिए।
1: अरे वाह, मतलब ये बहुत अच्छा तरीका है कि मतलब अगर नाराज हुआ जाए तो जो मांगी थी चीज। अच्छा, ये बढ़िया बात है, लेकिन आपको आपकी पसंद की चीज तो मिली कम से कम।
0: बहुत अच्छा लगते हैं ना
1: हाँ बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपके हस्बैंड का?
0: मैम काशीराम जी।
1: काशीराम जी, चलिए आपने बहुत अच्छी बात बोली, और बहुत अच्छा हमें ये लगा सुनकर कि आपका बहुत ख्याल रखते हैं आपके हस्बैंड। आप भी ख्याल रखा करिए उनका।
0: रखते हैं मत, थोड़ी सी नोक जोक तो चलती रहती है हस्बैंड वाइफ में
1: हाँ, नोकझोंक चलती है, लेकिन थोड़ा सा मिठास जो है ना होनी बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा अगर बोलते रहेंगी, बहुत ज्यादा अगर उनको, नहीं आप परेशान नहीं करती होंगी बेशक, मुझे पता है आप बहुत
0: ज्यादा नहीं
1: ख्याल
0: मैम
1: रखती हो,
0: जी।
1: पर मतलब थोड़ी सी मिठास होनी जरूरी है। अगर कभी कुछ हो भी गया तो प्यार से सुलझाया जा सकता है मामला।
0: मैम थोड़ा सा नाराज थे तो उन्होंने कहा ऐसे नाराज है गुस्से हैं तो उसका रेडियो ला दो तो जल्दी से मान जाएंगे।
1: बताइए, उनके उनके साथ तो आपको बहुत ज्यादा स्वीट होने की जरूरत है भी नहीं, वो खुद ही इतने स्वीट हैं कि आपको मतलब समझने की बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए खुद तैयार रहते हैं ना। अब देखिए, एडवाइस भी कौन दे रहा है, कौन व्यक्ति एडवाइस दे रहा है आपको? तो सब कुछ समझदारी है, सब कुछ पता है पहले से ही, और मेरी दुआ है कि आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, आपके बच्चे, आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: थैंक यू।
1: आपकी पसंद का एक गाना जो है हम क्यू कर देते हैं, भेज देते हैं रेडियो सेट पे आपके, ठीक है?
0: नाम लेना चाहते हैं कुछ लोगों
1: जी
0: का
1: जी बिल्कुल।
0: मैम, सीमा रावत है राधेजीपुरम से, मैम हरकेत है बंथरा लखनऊ से, नवनीत भैया है
1: जी
0: और हरकेत भैया है
1: जी
0: और मैम और रिंकी पिंकी है मैम
1: अच्छा
0: और मैम अपने परिवार को पूरी फैमिली को
1: चलिए
0: सभी
1: ठीक
0: लोग
1: है।
0: सुनना है मैम।
1: अरे वाह, चलिए ठीक है ठीक है। सुषमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे, और
0: और मैम सभी सुनने वाले वो आपको साथ में भी
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सुषमा जी की पसंद का ये गाना हम सुनते हैं और तुरंत वापस आएंगे बिना देरी के आपकी फरमाइश लेकर के।

0: 7:50 हुए हैं और अब बात करते करते 7:51 हो चुके हैं और अगली कॉल किनकी है ये जानने के लिए हमें कॉल पैच करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कौन जुड़े अब अगले कॉलर हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो मैम को शाम की नमस्ते, कैसी हैं?
0: नमस्ते जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं और कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं बता दीजिए।
1: जी मैं राजेश बोल रहा हूँ, हरदोई कुरसर से। मैम कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, और आप कैसे हैं राजेश जी?
1: बस अच्छे हैं, अभी थोड़ा बाग की तरफ आए थे तो रेडियो सुन रहे थे
0: अच्छा
1: और फोन ट्राई किया, तो काफी अरसे के बाद में आज बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा। वो
0: अरे
1: भी
0: वाह
1: 100.7 FM रेमबो लखनऊ की फ्रिक्वेंसी पे, वो भी
0: जी,
1: न्यूज ऑन AI ऐप के माध्यम से सुन रहा था, तो बहुत अच्छा लगा।
0: अरे वाह, बड़ा मतलब अच्छा लगा। आप ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं, तो मतलब आप बताइए कि आपको रेडियो पे ज्यादा अच्छा लगता था, मतलब आपके हिसाब से क्या अच्छा लगता है आपको, रेडियो होता तो ज्यादा अच्छा होता है या फोन ज्यादा अच्छा है?
1: देखो जहाँ पे जैसी आवश्यकता हो वो चीज अच्छी रहती है। सच बताएं तो मेरे पिताजी का रेडियो ना रखा रहता है, ठीक है, तो उससे भी सुन लेते हैं कभी कभार,
0: जी
1: चाहे आपका ये अपना प्राइमरी चैनल हुआ आकाशवाणी लखनऊ और चाहे FM हुआ या विविध भारती हुआ, सब
0: जी
1: उस पे मिल जाता है फ्रिक्वेंसी पे। बट जो न्यूज ऑन AIR ऐप है उसके माध्यम से कहीं भी हो, अभी मान लो हम मेरठ में कभी कभी मतलब वहां रहते हैं तो वहां भी हम सुन लेते हैं एप्लीकेशन पे,
0: जी
1: कहीं भी कोई हो तो एप्लीकेशन

0: क्योंकि तो सुनने में बहुत आसानी रहती है, बस
1: जी
0: अच्छे से इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सुविधा है, मतलब पोर्टेबल है, रेडियो हर जगह हो सकता है, फ्रीक्वेंसी ना पकड़े।
0: बिल्कुल। और एक चीज ये रहती है कि आप अपने मोबाइल में क्रोम पे जाइए तो वहाँ पे 100.7 FM डालिए, वहाँ से भी आप सुन सकते हैं, बस लाइव में, बस इंटरनेट वहाँ भी कनेक्ट होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल
1: किसी भी सर्च इंजन पे आप बस सर्च कर लीजिए।
0: बिल्कुल, तो
1: चलिए
0: बहुत अच्छा, आसानी रहती है सुनने में और अच्छा भी लगता है और काम भी बाधित नहीं होता है,
1: जी
0: काम भी करते करते सुनने में और अच्छा भी लगता है ना।
1: बिल्कुल, चलिए राजेश जी, आपकी पसंद का गाना तो हमने निकाला है, बाकी कोई बात अपनी तरफ से आपको कहना हो?
0: बस यही है कि रेडियो का साथ बना रहे, आप लोगों का प्यार बना रहे और रेडियो के जितने हमारे मित्र हैं सुन रहे हैं सब यूं ही सुनते रहे 100.7 FM रेम्बो लखनऊ की फ्रिक्वेंसी और
1: क्या
0: सुनते
1: बात
0: रहे।
1: है राजेश जी, आपके यहाँ हरदोई आपने बताया ना,
0: जी,
1: मतलब कैसा एरिया है उस तरफ? हरियाली है और थोड़ा टेम्परेचर इस समय गिर गया है, 8 बजने को है।
0: बिल्कुल, टेम्परेचर तो लगभग क्या है कि अभी कहते हैं नौतपा चल रहे थे, लेकिन नौतपा पूरे ही नहीं हो पाए कि मौसम इतना ज्यादा पलट गया कि ठंडा हो गया बिल्कुल, नहीं नहीं उसके
1: इस
0: बाद में
1: समय 8 बजे की बात हम कर रहे हैं, शाम की
0: इस समय
1: बात।
0: मौसम लगे अभी मैम बाग के पास में है तो मौसम बहुत अच्छा है, सुहावना है और अच्छा भी लग रहा है।
1: अच्छा, वही हम पूछने वाले थे कि इस समय आप बाग की तरफ क्या कर रहे हैं,
0: मतलब आम का बाग है वही के पास में थे। हाँ
1: मतलब रात में आप क्यों उस तरफ गए हैं, यूं ही घूमने
0: है, नहीं
1: टहलने?
0: आम लगे हुए हैं, आम के बाग में रखा जाता ना तो अपना बाग है।
1: अच्छा, आप देखने गए हैं,
0: घूमने आए थे तभी रेडियो सुनते सुनते चले आए, अभी
1: चलिए
0: सुनते हैं ना।
1: ठीक है राजेश जी, फिर आपकी पसंद का गाना बजाया जाए, रेडियो सेट पे सबको भेजा जाए और फिर होती
0: बिल्कुल
1: आपसे
0: बिल्कुल
1: बात।
0: बिल्कुल, ओके मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, फिर बात होगी। और राजेश जी की पसंद की इस गाने के साथ हमें कहना होगा आपसे अलविदा आज के लिए, और हमें जाने की दीजिए आप अनुमति, फिर आपसे किसी और दिन मुलाकात होगी, किसी और प्रोग्राम में होगी, लेकिन तब तक के लिए जो है आपको ये गाना आपके रेडियो सेट पर भेज कर जा रहे हैं, और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भाई कहने का तो प्रोटोकॉल है, बाकी आप बहुत समझदार हैं, आप खुद अपना ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हैं। फिर मिलेंगे कभी, बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने की अनुमति दी है। कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और उद्यम के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT के 3,539 पदों के लिए आयोजित 2 दिवसीय लिखित परीक्षा का पहला दिन आज प्रदेश के 36 जनपदों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। परीक्षा का दूसरा चरण कल होगा। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग मुख्यालय में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की गई। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि पहले दिन आयोजित परीक्षा में कुल 2,21,489 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके लिए संस्कृति समूह के प्रतिनिधियों का आगमन आज से शुरू हो गया। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि

0: भाग ले रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार प्रतिनिधिमंडलों के स्वागत और सुरक्षा सहित सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैठक के दौरान प्रतिनिधियों को वाराणसी की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से भी परिचित कराया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned.
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आप शार 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन

तू कहीं भी रहे तेरे सर पर इल्जाम तो है, तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम तो है। और अगर मैं ये कहूं कि सुना है लोग उसे आंख भर कर देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर कर देखते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है, चलो आज बात करके देखते हैं। आबशार में जमशेद हूं आपके साथ, 100.7 FM रेनबो के साथ।

और जिंदगी का मजा वाकई बड़ा ही खूबसूरत होता है जहां पर एक बारगी फिर से जिंदगी का आगाज होता है, उन बातों का आगाज होता है और जो बिताए हुए पल होते हैं कितने खूबसूरत से लगते हैं, कितनी खूबसूरत होती है उनकी याद। एक बारगी फिर उसी लम्हे को जीने की चाह अपने आप दिल में आया हो जाती है और फिर उसके बाद शायद जिंदगी में किसी और चीज की ख्वाहिश नहीं होती। कुछ ऐसा ही होता है जब जिंदगी की शुरुआत खूबसूरत होती है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आप शार 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन।

0: और अब शायद उसके बिना जिंदगी का हर एक लम्हा सूना सूना सा है, बदरंग सा है। जिंदगी है तो बस उसके साथ ही है, और अगर वो नहीं तो शायद ही जिंदगी नहीं।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

ये माना कि महफिल जवा है, हंसी है, तू जो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तू मेरा नाम ना पूछा कर। क्यों? क्योंकि मैं तेरी सोच में शामिल हूं, मैं तेरी नींद का किस्सा हूं, मैं तेरे ख्वाब का हासिल हूं, और अगर तू नहीं तो ये जिंदगी कुछ भी नहीं।

कमी होगी। सब कुछ तो उसको ही सौंप दिया था, ये जिंदगी, ये खुशियां, खुशियों का हर पल, जिंदगी का हर लम्हा। 8:27 साथ में कुछ सेकेंड्स, प्रोग्राम आबशार में आज मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ, 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आप शार 100.7 FM रेनबो पर धड़कन

कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। मैं तेरी याद का भावार हूं, मैं तेरी

सांस का झोंका हूं तो मंजर है, मैं पस मंजर हूं, मैं लम्हा हूं, मैं जज्बा हूं।

आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं, और खुश नसीबी मेरी कि आपसे गाहे बगाहे मुलाकात जरूर हो जाती है आपके अपने चैनल 100.7 FM रेनबो पर। और बस प्रोग्राम आबशार का वक्त आज यहीं तक, और चलते चलते मजाज साहब की गजल का शेर मुझे याद आ गया कि हुस्न को बेहिजाब होना था, हुस्न को बेहिजाब होना था, शौक को कामयाब होना था, तेरे जलवों में घिर गया आखिर जर्रे को आफताब होना था। होती है मुलाकात कुछ देर के बाद, यानी समाचार संध्या के बाद। आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: सितारों से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने

0: का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
0: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
1: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वे कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमरीका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
3: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में

0: भारत और कंबोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrat Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
3: ATF price stabilization fund mein
4: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
3: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
2: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees, seeks to incentivize owners of trucks and buses registered in the Delhi NCR

बनता है, लेकिन मोहब्बत का आगाज कैसा होता है वैसा ही मोहब्बत का अंजाम होता है, यानी आगाज और अंजाम में बस थोड़ा सा फासला होता है, लेकिन अगर बेहतर आगाज हुआ है, बेहतर शुरुआत है, तो अंजाम भी बेहतर होता है। और जो अगला गीत है उसमें आगाज और अंजाम की कोई परवाह नहीं है।

और शरारत की बात यह है कि ढेर सारे मेल आपके पास हैं और उन मेल में है खूबसूरत सी बातें, तो क्यों ना आपके मेल आप तक पहुंचा दूं मैं। भैया मोनू से प्रोग्राम झमझमा हुआ, क्या बात है, और शुभकामना भी आपको भी। और मुनेश कुमार राज यानी एम के राज ने मेल किया है लखीमपुर खीरी से, पॉप टाइम एंजॉय कर रहे हैं और कहते हैं हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए

और शरारत की बात यह है कि ढेर सारे मेल आपके पास हैं और उन मेल में है खूबसूरत सी बातें, तो क्यों ना आपके मेल आप तक पहुंचा दूं मैं। भैया मोनू से प्रोग्राम झमझमा हुआ, क्या बात है, और शुभकामना भी आपको भी। और मुनेश कुमार राज यानी एम के राज ने मेल किया है लखीमपुर खीरी से, पॉप टाइम एंजॉय कर रहे हैं और कहते हैं हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल, और आरजे जी की शुभ रतियां, पूरी एफएम टीम को नमस्कार। ये दो लाइनें आपने जो लिखी हैं बहुत खूबसूरत सी हैं, और साथ साथ मेल है आकाश लोधी मलिहाबादी जी का, हेलो गुड इवनिंग, मैं बहुत अच्छा हूँ और घर पर बैठकर आप प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से, सारे गीत लाजवाब और लगातार। मेल के बाद मेल, जितेंद्र साहब आपने मेल कर दिया हमें, और आपने हमें कहाँ से मेल किया है, आपने शहडोल मध्य प्रदेश से मेल किया है। जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, आरोही नामदेव, खनक नामदेव, सौम्या नामदेव, ढेर सारे नाम आपने लिखे और कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आ रहा है। आनंद तिवारी जी आपका भी मेल आ चुका है हमारे पास, मल्लावा हरदोई से जबरदस्त प्रोग्राम। और ये जो शेर व शायरी आप करते हैं वाकई बड़ी खूबसूरत सी, एक लाइन पढ़ देता हूँ ऊपर की, पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं है, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता भी नहीं है, और इंसान को कभी बदलना भी नहीं चाहिए। गुलफशा सिद्दीकी आपका भी मेल आ चुका है संडीला से, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने आपको पसंद आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ आपको लगी गानों में। और रामराज का भी मेल आ चुका है, रामराज जी कैसे हैं, और आपने हमें नमस्कार भेजा सबको, और कहाँ से आपने मेल किया, पहाड़ीपुर से, रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से आपने मेल किया है। रामराज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, और हमको यानी जमशेद बच्चा को प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद पहुंचे, बिल्कुल आपका आशीर्वाद हम तक पहुंच गया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ वकील अहमद जी का भी मेल आ चुका है, और आप प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, वकील अहमद मंसूरी हैं कटका हतूरी जिला सीतापुर से, और प्रोग्राम को एंजॉय करते हुए रश्मि रावत ने भी, रोशनी रावत ने भी मेल कर दिया है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गुड इवनिंग। सफीपुर जिला उन्नाव से आपने मेल किया है और चंडीगढ़ से इस समय प्रोग्राम को एंजॉय कर रही हैं, और साथ साथ नाम लगातार आप उनके नाम लिख रहे हैं जो लगातार मेल भी कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, गाने आपको पसंद आ रहे हैं। राज किशोर का भी मेल आ चुका है हमारे पास लखीमपुर खीरी से, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, और साथ साथ अजीज अहमद का भी मेल आ चुका है हमारे पास सीतापुर से, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, पिछला प्रोग्राम भी अच्छा लगा, बेहतर लगा। शहनू नूर अंसारी का भी मेल आ चुका है, मैं भूलूंगा नहीं, सबके नाम पढ़ूंगा। आपने मटकली जिला बरेली से किया है मेल, और साथ साथ विजय पाल यादव जी का भी मेल आ चुका है, ललहुआ लखीमपुर खीरी से आपने किया है मेल, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त लाइन आपने लिख डाली भाई हैं। और साथ साथ मेल आ चुका है हमारे पास अशोक कुमार का, अशोक कुमार जी ने भी हमें कर दिया है मेल, कहाँ से मेल किया है, आपने भी लखीमपुर खीरी से मेल किया, लखीमपुर खीरी के ढेर सारे मेल है। और इंद्रपाल का भी मेल आ चुका है हमारे पास मोहली सीतापुर से, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। साथ साथ अनुष्का गुप्ता का भी मेल आ चुका है हमारे पास, मेल सारे मैं पढ़ रहा हूँ, तो चलिए मेल के साथ साथ प्रोग्राम को भी एंजॉय कीजिए, यानी इस गीत को भी एंजॉय कीजिए, और उसके बाद फिर जो आपके मेल है आप तक पहुंचाऊंगा मैं। जमशेद हूं आपके साथ, 9:28 7:07 आपको सेकंड्स।

0: और रविकांत जी का मेल आ चुका है। रविकांत जायसवाल हैं दिल्ली परिवहन विभाग DTC और दिल्ली से आप कर रहे हैं मेल और कह रहे हैं एकदम गर्दा उड़ा रखा है। और अगला मेल हमारे पास आया है कुमकुम शुक्ला जी का और आपने हमें कहां से मेल किया है, आपने गिलौला से मेल किया है, सही पढ़ा ना, श्रावस्ती से आपने किया है मेल और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से। साथ साथ हमारे पास मेल आ चुका है नवनीत सिंह साहब का पॉप टाइम, नमस्ते नमस्ते, आपने चौक कोतवाली लखनऊ से किया है मेल, प्रोग्राम को कर रहे हैं एंजॉय पूरी तरह से और मुझे आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और गाने पसंद आ रहे हैं और मुझे जितने भी गाने आपने बताए हैं बजाए हैं सारे गाने बेहतर लगे। और कुछ नाम आपने लिखे हैं वो भी मैं पढ़ देता हूँ, सीमा देवी और मंजय कुमार, कीर्ति वर्मा, राजवीर सिंह और गुड़िया, सही नाम पढ़ा। चले अगर कोई मेल में नाम छूट गया हो तो उसके लिए माजरत है। साथ साथ वैभव जी का मेल आ चुका है, वैभव प्रकाश हैं, आपने महाराष्ट्र से नागपुर महाराष्ट्र से हमें मेल किया है और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से। नमस्कार नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर से कोई मेल आता है और उसमें ढेर सारे आपको तारीफ लिखते हैं, आपने महाराष्ट्र से नागपुर से मेल किया है और पॉप टाइम को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, सारे गाने आपको पसंद आए, ये बहुत मुझे अच्छा लगा। साथ साथ मेल आया है जावेद अख्तर साहब का, गुड इवनिंग, और आपने हमें कहाँ से मेल किया है, आपने मुबारकपुर आजमगढ़ से मेल किया है और प्रोग्राम का आगाज़ अच्छा लगा और अंजाम भी अच्छा ही होगा और अंदाज आपको अच्छा लग रहा है, गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, सबसे बेहतर हमारे लिए।
1: जा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है, भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले, बस हमेशा इसी तरह से खुश रहिए, इसी तरह से जो मूड है, जो मौका है, जो मस्ती का नजारा है, जो आप पेश करना चाहते हैं डांस के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से, जो भी करना चाहते हैं बिल्कुल कर डालिए, दिल में जो बात है उसको निकाल दीजिए।

और मैंने सोचा चलते चलते ये धुन भी आप तक पहुंचा दूं, जसवीर जस्सी की आवाज को आप तक पहुंचा दूं। फिलहाल दो मेल हमारे पास आ चुके हैं, ब्रजेश सिंह दीपू इटावा कैसरगंज बहराइच से गुड इवनिंग कह रहे हैं हमें, और कई सारे गीतों को आपने सुना एकदम मस्त, वाकई आपको सारे गीत पसंद आए। साथ साथ मेल हमारे पास आया है बबीता राव का, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, और गजलों का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा, कतई जहर प्रस्तुति लगी और पॉप टाइम मस्त लग रहा है, और रजनीश बहन विनीता, दोस्त रोशनी रावत जी, अहमद नवाब जी, नीलू दी, सब एक साथ सुन रहे हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, और इस मेल को मैंने बिल्कुल शामिल कर लिया है। और आपने हमें मेल किया है गोसाईगंज लखनऊ से, तो ये आखिरी मेल था, और मैं भी यहाँ से आपसे इजाज़त लेने वाला हूँ इस वादे के साथ कि कुछ देर के बाद यानी न्यूज़ ब्रेक के बाद फिर होती है मेरी आपसे मुलाकात। आपसे यही कहूँगा कि आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ, जमशेद के साथ, आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रजनीगंधा के साथ, यानी न्यूज़ ब्रेक के बाद रजनीगंधा प्रोग्राम में फिर रहूँगा मैं आपके साथ।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि देश की बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने बताया है कि उसके ऑनलाइन पोर्टल पर अब तक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। बोर्ड के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन के लिए 4,900 से अधिक आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 39,000 से अधिक आवेदन स्वीकार किए गए हैं। CBSE ने कहा है कि वह पोर्टल की सुरक्षा, विश्वसनीयता और छात्रों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। वाराणसी में कल से आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि आज शाम से वहां पहुंचने लगे हैं। देश विदेश के वरिष्ठ राजनयिक, नीति निर्माता, सांस्कृतिक विशेषज्ञों का काशी की परंपरा के अनुसार गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से उनका स्वागत करते रहे। गौरतलब है कि भारत की अध्यक्षता में 4 और 5 जून को वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक में समूह के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल सेवाओं और अन्य आपातकालीन कर्मियों के समन्वित प्रयासों से 40 से अधिक लोगों को बचाया गया और उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: Stay tuned 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की.
4: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग.
5: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
6: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
5: है जगह,
4: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
6: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
8: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तराने हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

वाकई नजारा हो तो ऐसा हो, लेकिन हमेशा की तरह एक बात जरूर कहूंगा आपसे कि जिंदगी में कभी किसी से कोई वादा कीजिए तो उस वादे को पूरा जरूर कीजिए। यकीन जानिए जब वादे टूटते हैं ना तो उसकी तकलीफ का अंदाजा या उसकी तकलीफ का एहसास उस शख्स से पूछे जिससे वादा किया गया हो। फिलहाल कुछ देर पहले मैंने आपसे वादा किया था, होती है मुलाकात आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रजनीगंधा के साथ, और उस वादे को पूरा करते हुए एक बार फिर मैं यानी जमशेद जुड़ चुका हूं आपके साथ आपके अपने पसंदीदा चैनल 100.7 FM रेनबो के साथ। और मैं तो ये कहूंगा कि तुझे भूल कर भी ना भूल पाएंगे हम, तुझे भूल कर भी ना भूल पाएंगे हम, बस यही एक वादा निभा पाएंगे हम, मिटा देंगे खुद को भी जहां से लेकिन, मिटा देंगे खुद को भी जहां से लेकिन, तेरा नाम दिल से ना मिटा पाएंगे हम। और यकीन जानिए हर शख्स की जिंदगी के साथ कुछ ना कुछ यादें जरूर जुड़ी होती हैं, वो यादें जिनको देखकर वो हंसता है मुस्कुराता है कभी कभी गमगीन हो जाता है। यानी हम अगर कहें कि उन यादों के बिना जिंदगी का तसव्वुर क्या मुमकिन है, कतई नहीं मुमकिन है। वो यादें हैं तो जिंदगी है। तो बस कुछ ऐसी ही बातें, कुछ खूबसूरत से अशार आपके साथ रजनीगंधा में। और हमारा और आपका साथ बहुत पुराना है और वो साथ इसी तरह से रहेगा कायम। रहिए जमशेद के साथ अगले 2 घंटे 100.7 FM रेनबो के साथ।

हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। और मैंने माजी की बात की, मैंने पुरानी यादों की बात की, वो यादें जो कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, कभी कुछ ऐसे चेहरे पर भाव ले आते हैं जिनकी शायद कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि पुकारोगे प्यार से हमें अगर तुम, पुकारोगे प्यार से हमें अगर तुम, तो हम भी दौड़े चले आएंगे। आपका दिल ही तो है हमारा आशियाना, इसे छोड़कर हम भला कहां जाएंगे। वो चाहे पुरानी बातें हों, खतूत हों, खत हों, चाहे उनमें लिखे हुए अल्फाज हों, वो कहीं ना कहीं एक बार की चेहरे पर खुशी जरूर दे जाते हैं, हंसी जरूर दे जाते हैं।

सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। मैंने कहा ना, यही तो है जिंदगी, और जिंदगी के साथ जुड़ी हुई कुछ खूबसूरत सी बातें, कुछ खूबसूरत सी यादें। और अगर मैं ये कहूं कि मेरी जिंदगी की वो खुशी हो तुम, मेरी जिंदगी की वो खुशी हो तुम जिसे मैंने हमेशा साथ रखने की दुआ मांगी है, और ये दुआ कबूल भी होती है, यकीन जानिए। लेकिन हाँ, मैंने कहा ना, दिल में शिद्दत कितनी है, उस दुआ को मांगते वक्त कितनी सच्चाई है आपके दिल में, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये गीत भी बहुत कुछ कह जाता है, क्योंकि जब प्यार किसी से होता है तो एक दर्द सा दिल में होता है, होता है ना।

जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो, जिया ओ जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सच

अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भल पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो। अरे ओ

चले दिल का पर्दा खोल देते हैं। कभी ख्वाब देखे हैं आपने? और उन ख्वाबों की ताबीर, बहुत लोग कहते हैं कि बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके ख्वाब पूरे होते हैं, जिनके सपने पूरे होते हैं, और उसके बाद जिस चीज को वो ख्वाब में देखते हैं और उसे जिंदगी में पा लेते हैं, तो यकीन जानिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मैं तो कहूंगा बेइंतहा मोहब्बत का असर कहिए कि हर सू एहसास गजल होता है। तन्हा भी होते हैं तो बारत तरन्नुम में, तन्हा भी होते हैं तो बा तरन्नुम में जाने गजल महसूस होता है। जी, मैंने कहा ना ख्वाब और हकीकत, और ये हकीकत जब सामने होती है

और आज सामने पाया, हाय हाय कुर्बान जाऊं। 10:33 साथ में कुछ सेकंड्स प्रोग्राम रजनीगंधा में आज मैं यानी जमशेद हूं आपके साथ 100.7 FM रेनबो के साथ। और मैं ये कहूंगा कि तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, एक पल की जुदाई मुद्दत सी लगती है। पहले नहीं अब सोचने लगे हैं, पहले नहीं अब सोचने लगे हैं हम कि जिंदगी के हर लम्हे में तेरी जरूरत सी लगती है। और शायद इसी को छोटे अल्फाज में हम कहेंगे, मोहब्बत कहते हैं।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM।

मुझे घेर लेते हैं बाहों के सारे, सब कुछ तो उसे सौंप दिया है। यूं धीमे से मेरे हाथ को थाम लेने से सेहरन सी दौड़ जाती है। यकीन होता नहीं खुद पर, बस फलक को छूने का एहसास दिलाती है। और यकीन मत, अगर दिल मिल जाते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। मोहब्बत की शमा जला कर तो देखो जरा, दिल की दुनिया बसा कर तो देखो, कुछ ऐसा ही होता है। जमशेद हूं आपके साथ रजनीगंधा में 100.7 FM रेनबो के साथ।

ये पहले प्यार की खुशबू तेरी सांसों से शायद आ रही है। और मैंने कहा ना कि पहली मोहब्बत जो है उसको भूलना शायद ही मुमकिन हो, बड़ा मुश्किल होता है यकीन जानिए, क्योंकि उसके साथ कई तरह की बातें जुड़ जाती हैं, कई तरह की खुशियां शामिल होती हैं उन बातों में, वो रूठना मनाना शामिल होता है उन यादों में, तो भला कैसे भुलाया जा सकता है। और एक बात और कहूंगा कि दिन भर की मशक्कत की थकान, दिन भर की मशक्कत की थकान सिर्फ तुम्हें सोचने से ही मिट जाती है। मोहब्बत बेइंतहा इसे कहते हैं जो जिंदगी में एक जादू सा असर कर जाती है। और मैंने कहा ना कि वो तकरार, वो रूठना मनाना, वो जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। अहम कहूं या खूबसूरत कहूं, चलिए कहता हूं खूबसूरत सा हिस्सा बन जाते हैं, जो तन्हाई में आपको ये एहसास दिलाते हैं कि हां हां आज भी हूं मैं तुम्हारे साथ। और ये खूबसूरत सा गीत है पुराना, बिल्कुल अलग तरह का, नफी साहब, और साथ में किसकी आवाज है। दिल से मिला।

बिल्कुल, एक छोटा सा न्यूज़ ब्रेक और उसके बाद फिर मेरी यानी जमशेद की होगी मुलाकात, ये वादा ज़रूर करता हूँ आपसे। तो थोड़ा सा वक्फा और उसके बाद फिर मैं रहूँगा आपके साथ। आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।